0: Ascun Jedi.
1: Lunchbox with Ketan.
2: क्या रहा, नमस्ते, इज्जत श्रीकाल, सलाम अलैकुम, बुला, आपका स्वागत करते हैं आज के इस लंच बॉक्स शो में। खूबसूरत डेज, जी हाँ, दिन भी बहुत खूबसूरत है आज। वैसे थोड़ी बारिश होने की आज संभव है, संभावना, एक्चुअली असंभव नहीं, संभावना है। वेल यस, बने रहिए अभी से लेके 3 बजे तक मैं यहाँ पे हूँ। मेरा नाम केतन है और बहुत सारी बातें होने वाली है। थोड़ी देर में आपके लिए होम सिक रेमेडीज लेके आने वाला हूँ, यानी कि आप मुझे मैसेज भेजिए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप बहुत ज्यादा मिस करते हैं बीइंग फ्रॉम योर होम टाउन या फिर होम कंट्री या फिर होम सिटी। जी हाँ, 5599 इज द नंबर जहाँ पे आप मुझे भेज सकते हैं। आई विल बी वेटिंग, बट शुरुआत करते हैं बहुत ही खूबसूरत गाने से। एंजॉय करिए, मैं लेके आऊंगा होम सिक रेमेडीज थोड़ी देर में, बट आपके टेक्स्ट का इंतजार रहेगा मुझे बहुत।
1: बचाओ क्या,

0: Welcome back. You are listening to Lunchbox. My name is Ketan. Well, yes, lunchtime. Sorry. Homesick Remedies. Mein aapka swagat hai. Kuch messages aaye hain mujhe. Lata kehti hai, Epsom se, I missed temple visits with my family on Sunday morning. It wasn't just a prayer, it was about being together. Well, yahan pe bahut sare mandir hai. I know, ho sakta hai shayad aapka parivar yahan pe nahi ho us waqt. But aap definitely ja sakte hain apne doston ke saath aur unke saath baat cheet kar sakte. I mean, like, you can go and you can do all your prayers. Kaafi temples, kaafi, you know, alag alag aapke, you know, alag alag religion ke, you know, सारे मॉस्क हैं, टेम्पल्स हैं, गुरुद्वारा हैं, चर्च हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं. सो आई नो आई मीन परिवार हो सकता है मिस हो, बट यस, यू कैन स्टिल विजिट. उसके बाद न्यू लिन से अर्जुन कहते हैं, आई मिस द ट्रेन जर्नी अक्रॉस इंडिया, लॉन्ग ट्रिप्स, चाय वेंडर्स, मीटिंग रैंडम पीपल, इट वॉज एन एक्सपीरियंस एवरी डे. यार ये चीज़ तो मैं भी मिस करता हूँ. यहाँ पे आने के बाद मैंने सब चीज़ ट्राई कर ली सिवाय ट्रेन के. ट्रेन का है यहाँ पे सिस्टम, बट नॉट एज नॉर्मल एज इट इज़ इन इंडिया, राइट? आप मुझे बताइए अगर कोई विजिट किया है, ट्रेन का सफर किया है, तो बताइए मुझे 5599 पे. उसके बाद मीना कहती है मैंग्रे से, आई मिस द सेंस ऑफ कम्युनिटी बैक इन फीजी, एवरीवन न्यू एवरीवन एंड यू वर नेवर रियली अलोन. जासूसी. बट यस, ये चीज़ तो है, ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी कमी, क्योंकि सब अपने अपने लाइफ में इतना बिजी हैं, तो वो चीज़ तो नहीं है डेफिनेटली. संजय फ्रॉम फ्लैटबुश, आई मिस प्लेइंग क्रिकेट इन द नैरो स्ट्रीट बैक इन माय होम टाउन इन इंडिया. हियर समथिंग इज मोर ऑर्गेनाइज्ड बट दैट क्योस हैड इट्स ओन चार्म. मेरे को लगता है टाइम जो है वो बदल चुका है. इट्स नॉट दैट यू कैन नॉट प्ले हियर, नो वन हैज स्टॉप्ड यू, इट्स जस्ट क्योंकि हम ऑब्वियसली बड़े हो गए हैं और हमारा जो सर्कल है वो ऑफकोर्स अब बच्चों वाला वो चीज़ मिसिंग है. अनलेस इफ यू आर लिविंग विथ योर बैचलर्स और यू नो उनके साथ खेलो तो बात अलग है, बट आई डोंट थिंक सो इट दैट इज आजकल एक्चुअली सर्फ क्रिकेट और वो स्टर्फ क्रिकेट और ये सब शुरू हो गया ना, इंडोर क्रिकेट खेलो वो सब शुरू हो गया. बट ऑनेस्टली यार उसमें वो मज़ा नहीं जो हम स्ट्रीट में खेला करते थे गली कुछ में, और फिर वो डांट अड़ोस पड़ोस की डांट सुनना कि भाई तू कांच मत तोड़ दियो, मेरी गाड़ी मत फोड़ दियो, फिर नाली में जाती थी बॉल्स और उसको निकालना, पूछते भाई कौन निकालेगा, जो मारेगा वही निकालेगा, ऐसी चीज़ें डेफिनेटली यार वो मिस तो होती है. बट आई थिंक इट्स मोर अबाउट द टाइम, नॉट अबाउट द लोकेशन और द पीपल. लंच बॉक्स विद केतन. मुझे पसंद है लड़का. हम.
1: लेडीज एंड जेंटलमैन. अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे. क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के.
2: राजा मंत्री चोर सिपाही सब यहाँ थे.
1: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट.
3: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
4: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
5: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना.
6: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
7: An award goes to Indelible Homes.
6: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
8: Kahani of Indelible Homes.
9: It's easy for life admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunizations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider.
10: Did you know a simple clean of your heat pump filter could save you up to $50 a year on your energy bills? All it takes is a quick vacuum or a light wash every few months. Search EECA, that's EECA, get winter ready.
11: The InvestNow KiwiSaver scheme provides access to a wide range of investment opportunity options, including the Foundation Series Funds. The Foundation Series Funds invest across global markets, helping investors spread their investments across different regions and asset types. Some funds may include buy and sell fees and all carry risk. Returns aren't guaranteed. The issuer of the Invest Now KiwiSaver scheme and the Foundation Series funds is FundRock NZ Limited. To learn more and read the product disclosure statement, visit investnow.co.nz.
12: Manukau Charitable Club in association with Bhakti Satsang Boys la rahe hain Bhakti Kirtan Santhya Friday 8 May ko raat 7 baje se Vedic Center 32 Glasgow F Papa Toy Toy mein jisme kalakar rahenge Fiji ke Nitin Nilesh Prakash aur New Zealand ke Davin Nath do pahunche hue kalakaron ko ek saath dekhne ka anokha mauka tickets sirf $20 hain taiyar ho jaiye Bhakti Kirtan Santhya ke liye Friday 8 May ko raat 7 baje se Vedic Center Papa Toy Toy mein
13: Non-stop Bollywood.
14: जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं.
13: हम playing Bollywood's biggest hits.
15: Lunchbox with Ketan.
16: हीरा लड़का है. Telescope लेके ढूंढेगा तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
15: हम office shoutout.
0: वेल ऑफिस शाउट आउट में के सेगमेंट में आपका स्वागत है. यहाँ पे बात करेंगे हम ऐसे मैसेजेस की जो मुझे भेजे गए हैं, जहाँ पे आपको मैं शाउट आउट देने वाला हूँ उन लोगों की जो अभी लंच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम है या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस है, और उन्होंने मुझे शाउट आउट के लिए यहाँ पे मैसेजेस भेजे हैं. सबसे पहले देव हैंडरसन से मुझे भेजते हैं, ऑनेस्टली आज लंच नहीं किया अभी तक, मीटिंग पे मीटिंग चल रही है, मेरे साथ पूरी टीम भूखी बैठी है, होप जल्दी ब्रेक मिले. ये सही है, मतलब मीटिंग में मीटिंग हो रही है बट यू आर स्टिल लिसनिंग टू मी, दैट इज सो ग्रेट यार. आई नो, मतलब खाना स्किप कर सकते हो बट मुझे सुनना नहीं, ये सुन के बड़ा अच्छा लगा मुझे. वैसे यस, अंजलि सीबीडी से मुझे कहती हैं आज सुशी खा रही हैं और उनके साथ हैं राहुल. मैं कौन है? मैं ओके सॉरी, मैं खुद को मैं बोल रहे हैं या फिर नाम है किसी का? मैं MEI, आई थिंक नाम ही होगा. वेल राहुल फर्स्ट टाइम चॉपस्टिक यूज कर रहे हैं एंड स्ट्रगल इज रियल. मुझे भी नहीं आता ऑनेस्टली, मुझे भी नहीं आता है. वैसे आप मुझे बताइए हु इज वेरी वेरी गुड इन चॉपस्टिक ओवर हियर. करण कहते हैं मनुकाओं से आज हमने बर्गर कॉम्बो ऑर्डर किया है नियर बाय टेक अवे से. टीम में जॉश एंड नवीन साथ में है, सब अपने फोन साइड पे रख के प्रॉपर लंच ब्रेक एंजॉय कर रहे हैं टुगेदर विथ योर शो. थैंक यू सो मच यार. सो बिग शाउट आउट टू करण, जॉश एंड नवीन. रितु फ्रॉम माउंट वेलिंगटन, लंच टाइम पे हम लोग सिर्फ स्नैक्स पे चल रहे हैं आज, समोसा और चाय. मेरे साथ कविश एंड दीपा हैं, फुल गॉसिप सेशन चल रही है वाइल लिसनिंग टू योर शो. थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच. बट थैंक यू अगेन आप सभी के मैसेज के लिए, आप बने रहिए बिकॉज और भी खबरें मैं लेके आने वाला हूँ थोड़ी देर में.
13: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

वेलकम बैक, आपका स्वागत करते हैं आज के इस लंच बॉक्स शो में। वेल गेस्ट से आपको बताता हूँ, रो ऐप डाउनलोड कर लीजिए ROVA अपने प्ले स्टोर ऐप स्टोर से, बिकॉज उसके जरिए आप हिस्सा ले सकते हैं, सुन सकते हैं पॉडकास्ट प्ले लिस्ट कम्प्लीटली फ्री हमारी तरफ से। जी हाँ, वैसे यस, आपको ये तो पता ही है कि डेटा जो है बहुत ही कम यूज होता है, यानी कि आप एक घंटा जितना रोवा यूज करेंगे इज इक्वल टू वन स्टोरी यू अपलोड ऑनलाइन। आपका फेसबुक इंस्टाग्राम ज्यादा डेटा खाता है, लाइक 2 से 3 गुना ज्यादा डेटा खाता है कंपेयर टू हाउ लॉन्ग यू कैन लिसन टू अस ऑन रोवा के जरिए। वेल यस, आप $100 जीत सकते हैं एक चर्डल गेम से, कीवी वर्ड विजर्ड है ये। आप रोवा ऐप पे प्ले सेक्शन में जाके खेल सकते हैं, ये गेम बहुत ही बढ़िया है, और जितना कम गलतियों के साथ आप इसे फिल आउट करेंगे सही तो आप ड्रॉ में जाएंगे और $100 हर दिन जीत सकते हैं। हमारे काफी लिसनर यहाँ पे जीते हैं और आपका भी मौका है यहाँ पे जीतने का। तो जाइए अभी प्ले स्टोर ऐप स्टोर से डाउनलोड करिए, और अगर ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो स्टार्ट प्लेइंग इट फ्रॉम नाउ।

0: Daddy.
1: Welcome back. You are listening to Lunchbox. Well, yes, एक बहुत ही बढ़िया कॉमिक, India's boldest कॉमिक मुनावर फारूकी आ रहे हैं ऑकलैंड में परफॉर्म करने ढांडो शो लेके। जी हाँ, ये होने वाला है ब्रूस मेसन सेंटर ऑन 23rd of May। आप टिकट खरीद लीजिए ticketmaster.co.nz। काफी रॉ, रियल और अनफिल्टर्ड कॉमेडी लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए, जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए। सो यस, विटनेस हिम ऑन 23rd of May ब्रूस मेसन सेंटर में। और साथ में आपके पास मौका है जहां पे आप एक डबल पास भी जीत सकते हैं। कैसे? आप हमारे फेसबुक पेज पे जाइए 104.2 FM और वहां पे टैग करिए उस शख्स को जिसके साथ आप जैसे ही कोई रील देखते हैं और एक पहला नाम जो जहन में आता है उसे टैग कर दीजिए वहां पे। जी हाँ, 11th May को ये होने वाला है। सो यस, आई मीन जो ड्रॉ है वो 11th May को होगा, बट शो हो रहा है 23rd May को। सो अभी से ट्राई करना शुरू कर दीजिए। ticketmaster.co.nz इज द वेबसाइट जहां से आप टिकट खरीद सकते हैं।
2: लंच बॉक्स विद केतन।
3: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
2: इसके पीछे
4: हम।
2: Keep calm because Punjabi swag is on.

0: चटनी शॉट्स।
1: चटनी शॉट्स के सेगमेंट में आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ पे मैं फटाफट से आपके लिए न्यूज जो है, जो ताजा ताजा खबर है, उनको पढ़ूंगा मैं यहाँ पे। पहली खबर यह है कि ऑकलैंड में एक कपल ने हजारों बैंड वेपन्स जैसे बटरफ्लाई नाइव्स और नकल डस्टर्स इम्पोर्ट किए, पुलिस ने केस पकड़ लिया है। और दूसरी तरफ एक पुलिस ऑफिसर ने बताया कि कैसे एक गाड़ी की हेडलाइट सीधा उनकी तरफ आई और ऑफिसर को टक्कर लगी। दूसरी खबर यह है कि टेक वर्ल्ड में कंसर्न बढ़ता जा रहा है। AI की वजह से आइडेंटिटी फ्रॉड अब एक बड़ा बिजनेस रिस्क बन चुका है। न्यूजीलैंड में एक लॉगिंग ट्रक ड्राइवर की मौत को ट्रेजिक और प्रिवेंटेबल बताया गया है। हेल्थ साइड पे एक स्टडी कह रही है कि बच्चों को ज्यादा स्क्रीन यूज लॉन्ग टर्म अटेंशन और सेल्फ कंट्रोल इश्यू से लिंक हो सकता है और इससे उनकी ब्रेन ग्रोथ में भी दिक्कत हो सकती है। इंटरनेशनल न्यूज में ऑस्ट्रेलिया के बोंदाई अटैक के अक्यूज पर नए टेरर चार्जेस लगे हैं। चाइना में फायरवर्क्स प्लांट एक्सप्लोजन से कम 26 लोगों की मौत हुई है और काफी लोग इंजर्ड भी हुए हैं। एक कीवी क्रूज शिप पर सस्पेक्टेड हेंटा वायरस आउटब्रेक के बीच फंसा हुआ है। स्पोर्ट्स में ऑल व्हाइट्स हाइटी के अगेंस्ट प्री वर्ल्ड कप फ्रेंडली खेलने वाले हैं और सुपर रग्बी में कुछ स्टैंड आउट प्लेयर्स ऑल ब्लैक सेलेक्शन से बाहर रह गए हैं।

वेल, ये रहा अगला सवाल आप सभी के लिए। मेरा सवाल है कि इफ एनिमल कुड टॉक, हु वुड बी द रूडेस्ट? यानी कि कौन सा जानवर सबसे रूड होता अगर वो बोल सकते तो, या फिर आप उनकी भाषा अगर बोल तो ऑब्वियसली सकते हैं, लेकिन अगर आप उनकी भाषा समझ पाते तो कौन सा सबसे ज्यादा आपको रूडेस्ट लगता? 5599 इज द नंबर जहां पे आप मुझे टेक्स्ट भेजिए और बताइए कि क्या हो सकता है। आई मीन आप फनी तरीके से भी मुझे बता सकते हैं इसके जवाब।

सब मेरे दोस्त माय फ्रेंड्स, जब भी किसी फाइव स्टार होटल जाते हैं, या तो खाने के लिए या किसी से मिलने के लिए और या किसी और काम के लिए, तो आप ही बेहतर जानते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आज आपको अपना अनुभव सुनाता हूँ, जिसे सुनकर आप

शर्म में खदर था बुखार वन वन मुझे खाने की वन गोली मैंने बोला यो जोनी जोनी मैनेजर कुछ पूछा सुनते हैं आप मैंने मांगा नहीं खाना तुम चीनी मुझे लगते वो लंदन वो हैपनिंग मैन बोला सर सॉरी आई एम वेरी वेरी सॉरी मैं नया हूं एम्प्लॉई मुझे नौकरी ना भाई फिर भी मैं करूंगा बोलिए बोलिए क्या आपको चाहिए

कोल्ड ड्रिंक लाया, मेरा सर चकराया, मैंने बोला बैग ला लाया और घुराया, कॉल द प्रेसिडेंट साहब घबराया, जब प्रेसिडेंट आया मेरा मन मचा, देखा सोनी थोड़ी थोड़ी लाल साड़ी वाली आगे खड़ी है, मैडम क्या समस्या हुई है, बुलवाया मुझे क्या प्रॉब्लम है सर, कुछ नहीं कुछ नहीं वो चलता रहता है, बस नहीं नहीं सर, हम होटल की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं, कन्फेशन भी करते हैं, क्या आपको चाहिए।

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Resene is New Zealand's most trusted paint brand, made in New Zealand for our unique conditions. Resene's quality, innovative paints and wood stains, plus the huge variety of colors, are ideal for homeowners and professional painters. Always choose Resene for your decorating projects.
2: ब्यूटीफुल हाउस प्लांट से लेकर हर वो चीज जो माँ को घर और गार्डन के लिए पसंद है, सब मिलेगा माइटन मेगा वेस्टगेट और हेंडरसन में। एवरीथिंग टू मेक मम स्माइल एक्सेप्ट द होममेड कार्ड, बट यू कुड लेट मम डिसाइड विद अ माइटन गिफ्ट कार्ड एट माइटन मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन।
3: Global fuel prices are impacting Kiwis, so these easy tips could help you stretch up to 20% more from every tank and make your money go further. First, watch your speed so it doesn't creep up. Try to accelerate gently and avoid braking too hard. Check your tire pressure regularly and lighten the load, like roof racks or weight from your boot. These small changes all add up to make a real difference. Learn more at fuelsavingtips.govt.nz.
4: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ, अच्छा बताओ तुम्हारा फोकस? फोकस साडा कुछ नहीं।
5: मिसेस सिंह का
6: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
7: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
8: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा? स्विच टू लीप मोटर C10 और B10 अल्ट्रा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक, सिर्फ 44,990 प्लस ऑन रोड से शुरू। विजिट आर्मस्ट्रॉन्ग्स लीप मोटर ग्रीन लेन और बॉटनी। टीज एंड सीज अप्लाई।
9: हम टाइम चेक।
10: टाइम हो चुका है दिन के ठीक एक।
9: हम न्यूज ब्रॉट टू यू बाय लॉजिक फाइनेंस लिमिटेड, चेंजिंग लाइव्स विद लॉजिक।
11: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 1. An Auckland relief teacher has been deregistered for inappropriate touching at a preschool. Azrael Taylor reports.
12: It was found An Hui Gui kissed a three-year-old on the lips on at least two occasions, among other concerning behaviours at two learning centres. No sexual motivation was found, and he claimed there were cultural and language barriers. He was censured for serious misconduct by the teacher's disciplinary tribunal and ordered to pay costs of more than $35,000.
11: A senior doctors' union and Health New Zealand have settled a new collective agreement. More than 5,000 doctors will receive an average 5.9% pay increase. Tauranga's struggling CBD is back in the spotlight, with another iconic pub forced to close. The Crown and Badger on the Strand has shut its doors after 26 years, citing ongoing tough trading conditions. Tauranga Chamber of Commerce Chief Executive Matt Cowley says it's disappointing, but not surprising.
13: Ongoing parking situation, which many councils have tried to fix, as well as ongoing cost of living and just general tough operating environment.
11: A body has been found close to where a New Zealand monk went missing on a Scottish island. Justin Evans was last seen on the 11th of April. To rugby with Shift 4, Steve Lancaster is the new CEO of New Zealand Rugby. The former Crusaders forward has been elevated into the full-time job, having been interim CEO for the past 6 months. And to football with Hisense, win a FIFA World Cup experience at hisense.co.nz. The Football Ferns have locked in two international fixtures on the back of qualifying for next year's FIFA Women's World Cup. They'll play Haiti on June the 6th before a match against Morocco 4 days later. Both games will be played in Spain.
14: Sports News,
9: brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update, brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
10: वेदर का हाल चाल, आज है 21 डिग्रीज मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 16 डिग्रीज मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला, 20% चांस है बारिश के, लेकिन 5:31 PM पे होगा आज का सनसेट।

0: लंच के मंच पे
1: वेलकम बैक, आपका स्वागत करते हैं आज के इस लंच बॉक्स शो में। मेरा नाम केतन है, आप मुझे 12 बजे से सुन रहे हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर कीप लिसनिंग। एंड अगर आपने अभी भी ज्वाइन किया तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। 3 बजे तक बने रहिए, बहुत सारी बातें होगी इस लंच बॉक्स शो में। वेल यस, थोड़ी देर पहले मैंने एक सवाल पूछा था आप सभी से कि अगर आप जानवरों की भाषा समझ पाते तो कौन सा जानवर आपको सबसे ज़्यादा रूड लगता। कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग मैसेजेस आए हैं। राजेश कहते हैं पपेटोटे से, ब्रदर इट्स गोट 100%, दे ऑलरेडी स्टेयर एट यू लाइक दे आर जजिंग योर एंटायर फैमिली। ये सही है, इफ दे कुड टॉक फिनिश्ड, खत्म, टाटा, बाय बाय, दिस इज व्हाट यू आर वियरिंग आउटसाइड, नो रेस्पेक्ट। ये सही है। कविता कहती है यार पता, ये जो मैसेजेस आ रहे हैं मेरे को लगता है यार ऐसा कुछ इनोवेशन कराओ कि यार ये हमें ना वीडियो मैसेजेस भेज सके तो समझ में आएगी मतलब कैसे बात कर रहे हैं। उसके बाद कविता कहती है माउंट रस्कल से कि कैट्स, डेफिनेटली कैट्स, यू फीड देम, लव देम एंड स्टिल दे वुड से यू आर लेट, अनएक्सेप्टेबल, ऑनेस्टली दे वुड रन द हाउस लाइक स्ट्रिक्ट आंटीज। नो कमेंट्स ऑन दिस। संजय कहते हैं मनुरेवा से, मंकीज, यू हैव सीन देम ओवरसीज स्टीलिंग फूड, कॉजिंग ट्रबल्स, इफ दे कुड टॉक दे वुड बी द रोस्टिंग यू व्हाइल टेकिंग योर स्नैक्स, थैंक्स फॉर द चिप्स बॉस, यू आर गॉन। प्रिया कहती है हेंडरसन से, आई थिंक इट्स चिकन, होल डे गॉसिपिंग, डिड यू सी हर करी लास्ट नाइट, टू मच सॉल्ट, बैकयार्ड बिकम्स फुल ऑन फैमिली ड्रामा। ये सही है। और विजय भाई बोलते हैं उठाओ उसे, काउस वेरी काम बट वेरी रूड, दे वुड जस्ट लुक एट यू एंड से यू आर स्ट्रेस फॉर नो रीजन देन कंटिन्यू ईटिंग, दैट क्वाइट डिसरिस्पेक्ट हर्ट्स मोर। ये भी सही है, काफ़ी क्रिएटिव आंसर मिले मुझे। बट यस, ऐसे ही दिलचस्प बातों के लिए आप बस बने रहिए। बट एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ इस आर में आपको, वो फ्लाई फ्रेंजी वाला मैं मौका देने वाला हूँ, यानी कि आपको कोड बताऊंगा जिसे आप ज्वाइन करेंगे, यानी कि आप डालेंगे अपने रो ऐप पे जिसके थ्रू आप ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे ताकि आप एक विजेता बन सकें। रिटर्न टिकट का एयर के, रिटर्न एयर टिकट मिलेगा आपको फीजी के लिए। वाओ,
0: बचाओ क्या,

0: with Ketan.
1: Welcome back. Yeah, जी हाँ, मैं आ चुका हूँ. जी हाँ, वैसे yes, थोड़ी देर में आपके लिए एक लंच टाइम रेंट लाइन भी लेके आने वाला हूँ. यानी कि आप मुझे टेक्स्ट भेजेंगे रिगार्डिंग क्या ऐसी चीजें जो आपको सचमुच बहुत ज्यादा इरिटेट करती है. जैसे कि दो तीन बार मैसेज आए हैं रिगार्डिंग समवन इज लाइक कुकिंग अप और नॉट कुकिंग बट हीटिंग अप इन माइक्रोवेव ओपन डब्बे के साथ. एंड यार पता नहीं यार, टेक्निकली ओपन ही होना चाहिए मेरे ख्याल से, राइट? बट उसकी स्मेल, फॉर एग्जांपल फिश, उसको माइक्रोवेव में डाल के पूरा बढ़िया गर्म कर रहा है, लेकिन वो भाई पब्लिक वाला है, ये आपका पर्सनल नहीं है. सो जो वेजिटेरियन है या फिर जो जिनको स्मेल नहीं है पसंद है, उनको भी भाई सुंगारे कि हाँ भाई, एकदम हल्ला करके बोल रहे हैं कि आज मैं मच्छी लेके आया हूँ. ये थोड़ा एक एग्जांपल दिया मैंने, बट यस, इस तरह के भी आप मुझे भेज सकते हैं 5599 पे लंच टाइम रेंट लाइन के रिलेटेड. एंड इट कुड बी डिफरेंट फ्रॉम फूड एज वेल, डजंट नीड टू बी फूड वाली, कुछ और भी अगर आपके पास टॉपिक है तो वो भी हमारे साथ शेयर करें 5599 पे. थोड़ी देर में उसके बारे में बात होगी, बट साथ में ऑफकोर्स बॉलीवुड की भी अपडेट दूंगा और फ्लाई फ्रेंड फ्रेंजी, ये भी चीज आपके साथ लेके आने वाला है.
0: लंच बॉक्स विद केतन.
2: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं.
0: इसके पीछे
3: हम.
0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा.
4: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
5: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है. ये क्या क्या मतलब, क्या मैसेज कर रहा
6: है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन.
5: मेरे को समझ में नहीं, एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है. एक दिन और इन्होंने,
6: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा
7: है.
0: 6 to 10 AM.
8: एक सपना है, सपना कुछ अपना करने का, सपना एक अपने बिजनेस का.
9: हम है क्रू केयर. सिर्फ $15,000 ऑनवर्ड्स के इन्वेस्टमेंट में हम बनाएंगे आपके सपने को एक हकीकत.
10: Crew Care offers commercial cleaning franchise, which caters to after and before hours cleaning services for offices and schools. Crew Care also has tie-ups with many cleaning sites like offices, schools, gyms, medical centres and hospitality sites. Finance options available for approved purchases. Call Crew Care on 0800 800 209.
11: In this final hour, when the lives and well-being of your fellow country folk hang in the balance, is it you here that rise to answer NZ Blood's call?
12: Do they have parking?
11: There is some.
13: Are there biscuits?
11: Of course.
14: Can I do it during work hours?
11: Don't know. Talk to your manager. Probably.
15: Join forces and save lives. Plasma donations are powerful and help create up to 11 life-saving products. Book your plasma donation today at nzblood.co.nz.
16: Now's the time to send Mum something she'll love this Mother's Day. With over 560 stores across the country, it's easy to make Mum's Day with NZ Post. Find your local at nzpost.co.nz.
17: Get a $100 digital Visa card with AMI. Buy a new comprehensive car policy online before the end of September. Visit ami.co.nz. T's and C's apply. AMI. On your side.
18: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो,
19: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है. सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
20: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994939 और विजिट legalassociates.co.nz.
0: Lunchbox with Ketan.
21: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम. Lunchtime Rant Line.
1: Well, Lunchtime Rant Line के सेगमेंट में आपका स्वागत करता हूँ. यहाँ पे कुछ मैसेजेस आए हैं काफी इंटरेस्टिंग. अमित भाई कहते हैं, ड्राइवर हु डोंट इंडिकेट एट राउंडअबाउट्स, व्हाट आर यू डूइंग? आई एम सिटिंग देयर लाइक अ फूल वेटिंग, जस्ट फ्लिक द इंडिकेटर, इट्स नॉट अ बिग प्रोजेक्ट. एक्चुअली इंडिकेशन में मुझे ध्यान है, एक ट्रिक मुझे मिली है जो काफ़ी स्मार्ट वाला हुआ है. लाइक यू नो, फॉर एग्जांपल दो लेन है, वन लेन इज वेटिंग टू गो लेफ्ट एंड वन लेन इज वेटिंग फॉर टू टर्न द राइट बिफोर द राउंड अबाउट. तो ये बंदा पता है क्या करता है, इसको लेफ्ट जाना है बट ही डजंट वांट टू वेट इन द क्यू, राइट, वो क्यू बहुत ज्यादा लंबी थी, तो उसने क्या किया, राइट टर्न वाला जो रोड होता है, जो राइट लेन होती है, उसी में सीधा जाता रहा, सीधा जाता राइट इंडिकेशन दिया, उस राउंड अबाउट में पूरा घूम के लेफ्ट वाले तरफ निकल गया। मतलब देख रहे हो स्मार्ट, आप मुझे बताइए आप में से कितने लोगों को ये ट्रिक पता थी। मतलब मुझे तो यहाँ ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे को पता पड़ा तो मैंने अभी तक ट्राई तो नहीं किया, बट एक्चुअली आई वॉन्ट टू ट्राई, काफ़ी कूल कंसेप्ट लग रहा है, आई नो थोड़ा चिकी है बट यू नेवर नो यार कितना टाइम बचेगा, राइट। वैसे आप मुझे ये भी बताइए, अगर आपने ऑलरेडी ट्राई किया है तो कब किया और क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना। 5599 इज द नंबर। बट यस, लेट्स कंटिन्यू, कम बैक टू लंच टाइम रेंट लाइन। उसमें संदीप भाई कहते हैं, माई फ्लैटमेट यूजेज ऑल द हॉट वाटर एंड देन सेज, ओ आई थॉट यू ऑलरेडी शावर्ड ब्रो, आई एम स्टैंडिंग देयर विद शैम्पू इन माई हेयर, थिंक अगेन। ये सही है। पूजा कहती है, पीपल हु से आई एम फाइव मिनट्स अवे when they haven't even left home yet, just say you are late, we are adults, we can handle the truth. वैसे आप मुझे बताइए, हमारी टीम में रेडियो पे कौन सा ऐसा शख्स है जो ऐसी बातें बोल सकता है। डू लेट अस नो 5599। जी हाँ। और रमेश कहते हैं, सुपरमार्केट ट्रॉलीज लेफ्ट इन द मिडल ऑफ द कार पार्क्स, टेक्स 10 seconds टू रिटर्न इट एंड नाउ आई एम प्लेइंग बंपर कार जस्ट टू पार्क प्रॉपरली। थैंक यू टू एवरीवन जिन्होंने भी मैसेज भेजा है और इस सेगमेंट में हिस्सा लिया है। बट यस, डू लेट मी नो जो भी मैंने अभी इन बिटवीन सवाल किए हैं। 5599 इज द नंबर।
0: लंच के मंच पे टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: ला चुके हैं मौका जहां पे आप सुनेंगे वो कोड जिसे आपको डालना है रोवा ऐप पे। रोवा ऐप पे डालेंगे तो फट से आप ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे और ये ड्रॉ अगर आप जीतते हैं तो आपको मौका मिलेगा रिटर्न ए टिकट टू फिजी जीतने का। वेल इस बहुत ही बढ़िया मौका है आपके पास, अभी से लेके 60 मिनट तक का टाइम है। फट से रोवा ऐप पे जाइए, नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर ऐप स्टोर से। वेल यस, ये कैसे कर सकते हैं, सुबह 8 बजे के बाद, सुबह 11 बजे के बाद, दिन के 1 बजे के बाद और शाम को 5 बजे के बाद आपको ये कोड कभी भी सुनाई देंगे। तो अभी ये कोड जो मैं बता रहा हूँ आपको, ऑफकोर्स टर्म्स एंड कंडीशन डू अप्लाई, बट अभी का जो कोड है वो मैं आपको बता देता हूँ। वेल आज का जो कोड है, होपफुली मैं प्रोनाउंस इसको सही कर रहा हूँ, टेबू टेबू, जी हाँ, TEVU टेबू टेबू है कोड आज का, जो आप अपने रो ऐप पे डाल लीजिए फट से ताकि ड्रॉ में आप शामिल हो सके। मेक श्योर आप स्पेलिंग गलत ना लिखे, बिकॉज अगर स्पेलिंग गलत हुई तो शायद आप ड्रॉ में शामिल नहीं हो पाएंगे। सो टेबू टेबू TEVU कोड है आज का।
3: एक हो

0: Well, पता है आपको ये गाना किसका है? Of course, पता है, ये पहला गाना है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आने लगा और मैं बन गया था बहुत ही बड़ा फैन इस शख्स का. जी हाँ, ये लेजेंडरी सिंगर हैं जो कल परफॉर्म करने आ रहे हैं. एनी गेसेस? वेल यस, यू नो व्हाट द आंसर इज. जावेद अली. जी हाँ, वो आ चुके हैं ऑकलैंड में. आपने कल सुना ही था उन्हें हमारे यहाँ शो पे. बट यस, अभी के लिए एक्चुअली वो कल की तैयारी में लगे हुए हैं. एंड प्रिविलेज था कि मैं उनसे कल ही मिल पाया. और यस, रफी और मैं, स्टार अलायंस एंटरटेनमेंट आप सभी के लिए लेके आए हैं रफी और मैं, टाइमलेस क्लासिक्स ऑफ मोहम्मद रफी बाय जावेद अली, प्रेजेंटेड बाय पैसिफिक इलेक्ट्रिकल सर्विसेज. जी हाँ, ये शो होने जा रहा है कल के दिन. टिकट बहुत ही कम है, अभी जल्दी से जाइए और टिकट खरीद लीजिए. $59 का ही है, $59 से शुरू हो रहे हैं. StarAllianceEntertainment.com पर जाके आप ये टिकट खरीद सकते हैं. जी हाँ, whether you are a die-hard fan of मोहम्मद रफी, मोहम्मद साहब मोहम्मद रफी, या फिर जावेद अली के खुद के मेलोडियस प्लेबैक सिंगिंग के, ये मौका आपको नहीं मिस करना चाहिए.
1: Lunchbox with Ketan. हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
2: May month is NZ Music Month. ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, ये है इमोशन, पैशन और थोड़ा सा देसी स्वैग. Presenting Back Your Backyard Beats, जहाँ हर गली हर कॉर्नर से निकलता है एक नया सुपरस्टार. आज का लोकल आर्टिस्ट कल का ग्लोबल सेंसेशन, तो क्यों ना आज से ही उनका साथ दे. ट्यून इन करो और अपने Backyard Beats को दो फुल सपोर्ट. Back Your Backyard Beats, brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. And Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love.
3: Danny didn't think he needed a DVS system.
4: Our whole house was damp, so I got a dehumidifier to sort it.
3: But it didn't sort the whole house, did it, Danny?
4: Nah, only one room. It was just too noisy.
3: So Danny got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making his whole home drier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it. The

0: How many deals can you get in a day? Hurry into Briscoe's today and find out with one day store-wide savings for, you guessed it, one day only. So hurry in and bag the savings. Stores open till 9 today only at Briscoe's. See online for T's and C's.
1: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सबडिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz
4: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा स्विच टू लीप मोटर C10 और B10 अल्ट्रा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सिर्फ 44,990 प्लस ऑन रोड से शुरू विजिट आर्मस्ट्रॉन्ग्स लीप मोटर ग्रीन लेन और बॉटनी टीज एंड सीज अप्लाई
5: लंच बॉक्स विद केतन
6: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं
5: इसके पीछे
4: हम
5: लंच के मंच पे
7: Well, yes, और भी बातें करते हैं बट सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड की बॉलीवुड से खबर ये लेके आया हूँ कि फिल्म धुरंधर द रिवेंज पे कॉन्ट्रोवर्सी तब स्टार्ट हुई थी जब फिल्म मेकर संतोष कुमार ने अक्यूज किया कि स्टोरी उनकी स्क्रिप्ट डी साहब से कॉपी की गई है पर इसके बाद डायरेक्टर आदित्य धर ने उनके अगेंस्ट डिफेमेशन केस फाइल किया था और केस बॉम्बे हाईकोर्ट तक चला गया था जहां संतोष कुमार ने अपने स्टेटमेंट के लिए ऑफिशियली माफी भी मांग ली है वैसे आदित्य धर ने अपोलॉजी एक्सेप्ट कर ली और डैमेजेस परस्यू नहीं किए इसीलिए कोर्ट ने केस को रफा दफा किया बट यस ये तो चलो बड़प्पन था उनका आदित्य धर का बाकी ऐसे केसेस में तो सचमुच कोई भी ईगो पे ले सकता है बट यस ये चीज़ तो आम बात है बॉलीवुड में कभी लगता है एक कोई शख्स था जिसका मैं ना रील देख रहा था और वो शायद किसी कॉम्पिटिशन का भी हिस्सा था शायद एक्स फैक्टर हुआ था तो उसमें उसने ये बोला कि उसने एक 2019 को ऑलरेडी एक वीडियो सॉन्ग बना दिया जिसकी स्टोरी जो है वो सेम टू सेम सैयारा जैसी है एज एन अदर वे राउंड सैयारा की जो स्टोरी है वो सेम टू सेम उसके अपने म्यूजिक वीडियो जैसी है जो 2019 में आया था बट ये ऑफकोर्स केस वेस वाली बात तो नहीं है बट वो उन्होंने ऐसा बताया और मैंने देखा था कि हाँ यार 2019 में उन्होंने वीडियो बना रखा है जो ऐसा है और सैयारा की एंडिंग भी काफ़ी ऐसी ही है तो यस ये भी बात आई थी बट अभी ऑब्वियसली कंक्लूजन क्या है उस चीज़ का उस टॉपिक का वो तो पता नहीं बट ये तो चलो धुरंधर जो है वो तो सॉर्टेड हो गई है विच इज़ गुड थिंग बट आप मुझे बताइए हैव यू वॉच द फिल्म धुरंधर द रिवेंज और देखी है तो कैसी लगी मुझे बहुत पसंद आई
5: दिल से

0: ascund Jackie.
1: Well, अभी की लेटेस्ट खबर यह है कि न्यूजीलैंड पुलिस के अकॉर्डिंग एक अपॉर्चुनिस्टिक चोर ने पहले कार से हाउस की चुरा ली जो अनलॉक थी और कीज के साथ एड्रेस इन्फो भी मिला, जिसकी वजह से वो सेम हाउस पे वापस गया और बर्गलरी कर दी। क्या बात है यार भाई, क्या ही चल रहा है देश दुनिया में। मतलब सिंपल अपॉर्चुनिटी देख के क्राइम की, प्लान नहीं था बट ईजी टारगेट मिल गया चोर को। पहले तो उसे चाबी मिली, चाबी पे एड्रेस मिला और एड्रेस के साथ ही वो पहुंच गया वहां पे चोरी करने। मतलब पहले ही ऐसा लग रहा था कि शायद उसको मौका मिला, बोल रहा होगा भाई मुझे तो आगे बढ़ के अपॉर्चुनिटी मिली है तो व्हाई टू लूज, वही चीज हुई। भाई साहब जो भी मुझे सुन रहे हैं, ध्यान रखें ऐसी चीज ना करें, अपने जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर अपने इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उसको संभाल के रखें, कहीं खो ना दें, और खोए तो यू नेवर नो यार, कि हर इंसान अच्छा हो जरूर नहीं है, तो सोच समझ के चीजों का सही जगह रखें ताकि आप मिस आउट ना करें।

0: किरण नमस्ते, सत श्री अकाल, आपका फिर से स्वागत करते हैं आज के इस लंच बॉक्स शो में। वेल यस, बहुत ही बढ़िया जा रहा है शो, और आपके मैसेजेस से वो चीज डेफिनेटली पता पड़ती है जिस तरह से आप मुझे मैसेजेस करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, जो भी सवाल जवाब करता हूँ। बड़े सार में भी काफी कुछ चीजें लेके आने वाला हूँ, जैसे कि कुछ ऐसी चीज जैसे कि टेक की बातें होगी, एंड साथ में कुछ ऐसे सवाल जवाब भी करूंगा मैं, और प्लस ऑफ कोर्स काफी शोज हो रहे हैं, तो कौन कौन से और भी सेलिब्रिटीज हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं, और लेटेस्ट खबर भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो कहीं मत जाइए और सुनते रहिए लंच बॉक्स शो। इट इज जी हाँ,
1: बचाओ क्या

0: say, Mary, oof.
1: Celebrating NZ Music Month.
2: Back your backyard beats.
3: Well, चलिए बात करते हैं बैक योर बैकयार्ड बीट्स, यानी कि मई का जो महीना है काफी स्पेशल है, स्पेशली मेरे लिए भी, बिकॉज यहाँ पे लोकल आर्टिस्ट को हम सपोर्ट करते हैं, तो काइंड ऑफ मेरा जॉनर है, यानी कि आई लव समवन हु यू नो हु इज अ पार्ट ऑफ सिंगिंग या फिर हु इज अ पार्ट ऑफ कोई भी म्यूजिक के रिलेटेड हो. मुझे बहुत लगाव है ऐसे लोगों से और काफी इंटरेस्ट भी आता है. सो यस, अगर आप किसी सिंगर को जानते हैं या फिर किसी म्यूजिशियन को जानते हैं जो गाने बनाना जानता है या बनाता है या फिर ट्रैक ऑलरेडी बने हुए हैं, तो वो हमें भेज सकते हैं buzz@hamfm.com पर अपने बायो के साथ. जी हाँ, जैसे भेजेंगे और जो शॉर्टलिस्टेड आर्टिस्ट होंगे वो उनको मौका मिलेगा यहाँ पे उनके गाने चलाने का. जी हाँ, और प्लस उनको सारे वोट्स जितने भी मिलेंगे, शेयर्स हो गए, वोटिंग हो गई, वो सब मिला के टॉप 3 जो आर्टिस्ट होंगे उनको मौका मिलेगा फीचर्ड होने का. ऑफ कोर्स कहाँ पे? यहाँ पे रोवा ऐप पे. जी हाँ, सो यस, अगर आप जानते किसी को तो जल्दी से स्प्रेड आउट करिए सो दैट दे कैन बिकम समथिंग टुमारो. बट शुरुआत जो है आप ही करेंगे आज बैक करने का. वैसे आज के जो सिंगर हैं, आज के जो आर्टिस्ट है लोकल, वो है योगी. वो उनके बायो के हिसाब से मैं बता देता हूँ, वो इंडिया के पंजाब स्टेट के फागवाड़ा हाँ, वहाँ पे पैदा हुए हैं, जो कि अब न्यूजीलैंड रहते हैं. योगी इज अ मल्टी टैलेंटेड सिंगर, सॉन्ग राइटर एंड कंपोजर. जी हाँ, और काफ़ी जो यू नो हार्टफेल लिरिक्स है वो काफ़ी अच्छे से लिखते हैं, काफ़ी बढ़िया कंपोज भी करते हैं, कैप्चरिंग अ रिच नरेटिव ऑफ कल्चरल फैशन. जी हाँ, ये काफ़ी कुछ एक मल्टी टैलेंटेड है कह सकते हैं आप. बट इनका एक 2-3 गाने भी लॉन्च हो चुके हैं यूट्यूब पे, आप सर्च भी कर सकते हैं योगी के नाम से. बट यस, आज का जो गाना है उनके नाम है, तो एंजॉय करिए एंड देन यस ऑफ कोर्स सुनते रहिए.

0: कि जावेद अली साहब यहाँ आ चुके हैं और आपको कल मिलने वाले हैं परफॉर्म करते हुए। जी हाँ, स्टार अलायंस एंटरटेनमेंट आप सभी के लिए लेके आए हैं रफी और मैं, टाइमलेस क्लासिक ऑफ मोहम्मद रफी बाय जावेद अली साहब, पैसिफिक इलेक्ट्रिकल सर्विसेज की तरफ से प्रेजेंटेड भी है। वेल, ये शो जो है वो कल होने वाला है 8 मई को विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर। $59 से टिकट जो है वो शुरू हो रही है। तो यस, फूड स्टॉल एंड इजी ऑन साइट पार्किंग भी अवेलेबल है वहाँ पे। तो चाहे आप खुद मोहम्मद रफ़ी साहब के बहुत बड़े फ़ैन हो और या फिर जावेद अली की मेलोडियस आवाज़ के दीवाने हो, ये शो आपके नाम पे है, होने हो सकता है। जी हाँ, स्टार अलायंस एंटरटेनमेंट.com वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके इस शो को एंजॉय कर सकते हैं। बट यस, अभी के लिए फटाफट जाइए इस वेबसाइट पे, उस वेबसाइट पे जाके टिकट लेके फिर एंजॉय करिएगा लोकेशन में जाके, नॉट वेबसाइट पे। आपको कुछ नहीं मिला, वेबसाइट सिर्फ आपको टिकट खरीदना पड़ेगा। सो यस, $59 इट इज जहाँ से टिकट शुरू हो रही है और ये वेबसाइट है जहाँ पे आप बुक करिए टिकट जाके।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
3: बेटा, मेरा फोन किधर है?
4: अभी बताया तो फ्लाइट चप्पल कंफर्म है।
5: इस मदर्स डे क्या आप जानते हैं अपनी मम्मी का रियल रिएक्शन? From broken flower vases to Rocky ki sabzi experiments, guess kijiye mummy ka mood aur jeetiye dher sara cash. Hum pesh karenge quirky scenarios on air aur aapko batana hoga mummy chill karegi ya kill karegi. Guess and enter the lucky draw to win big cash prizes. To taiyar ho jaiye for the ultimate game show, Mom's Mood Swings on Hum. Brought to you by Indelible Homes, PFSL, Amma's Food and Malabar Gold and Diamonds.
6: Arey Babita, thank you so much for giving me Guru's number, yaar.
7: Kyun? Kya hua?
6: Mujhe urgent kaam se Fiji jana tha. $20,000 chahiye the. Bank gayi to itne documents maange ki bas poochho hi mat. Ek hafta ho gaya, no response. Phir tumne Guru ka number diya aur bas agle din paise mere account mein. Guru to ho ja shuru wala kaam hai.
8: Guru Kandola of Logic Finance, a household name in finance and insurance industry. Call 0800 Logic G. That's 0800 564 424.
9: गाड़ी चलती रहे, टेंशन

0: 28 plus 24-hour mobile service. For bulk orders, call Ron on 022-175-3941 or visit rpstires.co.nz or their Facebook page. RPS Tires. Drive safe, drive smart.
1: Welcome to Kebab's Kitchen. I am Chef Alex and this is my guest, Sarah.
2: What do you make in kebab ko special, Chef Alex?
1: Perfect blend of spices, tender meat and fresh vegetables. Har kebab banta hai with love and passion.
2: Wow, these kebabs are amazing. Spices ekdam right and meat is so juicy.
1: Ye hai Amma's Kebab's promise, delivering happiness bite by bite. Amma's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
2: 100% authentic and pure as mother's love.
3: Trade Depot brings you Midea, the world's number one air conditioning company. Introducing the Midea Inverter Heat Pump. It looks elegant and sophisticated, features innovative smart technology, and superb energy efficiency. Shop now for your Midea Inverter Heat Pump, including installation anywhere in New Zealand, from only $1,299 with Trade Depot. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
4: How many deals can you get in a day? Hurry into Briscoe's today and find out with one day store-wide savings for, you guessed it, one day only. So hurry in and bag the savings. Stores open till 9 today only at Briscoe's. See online for T's and C's.
5: The Red Hot Sale is on now at Mazda, with great deals across a range of SUVs. But hurry, these prices are too hot to last. Don't miss out. Head to Mazda.co.nz and book a test drive today. Mazda.
6: Lunchbox with Ketan.
7: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
6: इसके पीछे हम। Skip your replay.
8: मदर्स डे के लिए आपके लिए एक और बहुत ही बढ़िया मौके हैं यहाँ पे, एक नहीं एक्चुअली दो मौके हैं, जहाँ पे पहला मौका तो ये कि आपको अनाउंसर्स हम में से कोई भी मौका देगा सिनेरियो क्रिएट करके, ताकि आप उस मौके को अवेल कर सकें. आपको कॉल करना है हमें 0800-004-866 पे और सिनेरियो रिक्रिएट करना है कि आपकी मॉम अगर उस सिचुएशन में क्या कैसे रिएक्ट करेगी, तो वही चीज़ आपको बताना है. और जैसे आप बताएंगे हमें, ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे और आप तीन में से एक तो हो सकता है चांस जीत सकते हैं, और हो सकता है आपके परिवार में ही तीनों कोई जीत जाए. सो यस, आस्क योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू टेक पार्ट इन इट. एंड पार्ट कैसे लेंगे, हम जैसे बोलेंगे आपको कॉल करना पड़ेगा. सो यस, पहला प्राइज है $300, दूसरा है $200 और तीसरा है $100. जी हाँ, सो यस, गेट रेडी टू टेस्ट हाउ वेल यू रियली नो योर मॉम. जी हाँ, और दूसरा जो मौका है वो है आपको एक पर्सनलाइज वाउचर बनाना है अपनी मॉम के लिए, चाहे वो ऑनलाइन बनाओ या फिर खुद अपने हाथों से. और उसे हमारे फेसबुक पेज पे जाइए 104.2 FM हम, और वहाँ पे अपलोड कर दीजिए, शेयर करिए हमारे साथ और टैग भी करिए फैमिली मेंबर्स को आपके अपने. जी हाँ, और उसके साथ आप ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे, जहाँ आप जीत सकते हैं $200. क्या बात है, जिसका डिस्क्लोजर होगा 8 मई को, यानी कि कल के दिन. जी हाँ,
6: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

वेलकम बैक। यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। वेल, अभी के लेटेस्ट खबर ये है स्पोर्ट्स की तरफ से। न्यूजीलैंड की नेशनल फुटबॉल टीम, जिसे ऑल व्हाइट्स कहा जाता है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 की प्रिपरेशन के लिए हाइती के अगेंस्ट एक वार्म अप मैच खेलेगी। यह मैच 3 जून को फ्लोरिडा यूएसए में होने वाला है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों टीम्स का पहला ओवर इंटरनेशनल क्लैश होने वाला है, सॉरी पहला एवर, लाइक फर्स्ट एवर इंटरनेशनल क्लैश होगा ये। हाइती वर्ल्ड रैंकिंग में थोड़े इससे ऊपर है, यानी कि 83 पे है, जबकि न्यूजीलैंड जो है वो 85th पे है, यानी कि दो पड़ाव का है। तो आई मीन ठीक है, इतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैच जो है एक बैलेंस्ड और यूजफुल टेस्ट माना जा रहा है। इसके सिर्फ 4 दिन बाद ऑल वाइट्स इंग्लैंड के अगेंस्ट भी एक वार्म अप गेम खेलेगी, ताकि टीम वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैचेस के लिए अच्छी तरह प्रिपेयर्ड हो सके। लुकिंग वेरी एक्साइटिंग यार, वर्ल्ड कप आने वाला है।

राहत फतेह अली खान साहब, जी हाँ वो आ रहे हैं ऑकलैंड। वेट इज फाइनली ओवर। 25th of July, द ट्रस्ट एरिना इज द लोकेशन जहां पे ये आप विटनेस करेंगे राहत फतेह अली खान को लाइव परफॉर्म करते हुए। जी हाँ, जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस एंड शहजादा प्रोडक्शन आप सभी के लिए लेके आए हैं एक बहुत ही बढ़िया पावरफुल वोकल्स एंड सोल स्टेरिंग कवाली के साथ आने वाले हैं राहत फतेह अली खान। जी हाँ, आप एक डबल पास भी जीत सकते हैं ऑन एयर। कैसे? आपको सिंपल शब्दों में एक मैं गाना बताने वाला हूँ, यहाँ पे चलाने वाला हूँ। आपको बस गेस करना है कि वो गाने की चार लाइन क्या है। मैं गाना चलाऊं उससे पहले आप सभी के लिए ये गाना तो पहले बंद करूं। हाँ, ये गाना नहीं चलना चाहिए क्योंकि अगर ये चलेगा तो आप ऑब्वियसली कैसे गेस कर पाओगे। बट यस, लेट मी प्ले द सॉन्ग एंड डू लेट मी नो। जल्दी से 5599 पे आप भेज देना RFK राहत फतेह अली खान के इनिशियल्स हैं ये RFK, और 5599 पे गाने का सही जो लिरिक्स है वो मुझे भेज देना 5599 पे।

0: Well, गाना चल चुका है और आप मुझे जल्दी से 5599 पे RFK लिख के भेज दीजिए और बता दीजिए कि ये गाने के लिरिक्स क्या हैं स्टार्टिंग के दो लाइन भी वो चलेगा, बट 5599 नंबर जहां पे RFK लिख के सही लिरिक्स के साथ आप एंट्री में जाओगे जहां पे आप जीत सकते हैं डबल पास।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: मुझे पसंद है लड़का। हाँ।
1: ब्रो, लुक एट यू, ब्लू लाइट स्क्रीन को इतना घूर रहा है जैसे वो तुझे प्रमोशन दे देगा। और ये कॉफी ल्यूक वार्म, टेस्ट बिल्कुल हार्ट ब्रेक जैसा। प्लीज सर, तू क्यूबिकल के लिए नहीं बनाए, तू बीच के लिए बनाए, तू लाइफ को एंजॉय करने के लिए बनाए।
3: Listen to Hum on Rova every weekday at 8 a.m., 11 a.m., 1 p.m. and 5 p.m. Hum denge ek special code word. You've got 60 minutes to enter it in the Rova app and go in the draw to win a trip to Fiji. So what are you waiting for? Download the Rova app now. Win a trip to Fiji. Only on Hum on Rova. T's and C's apply.
4: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
5: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
4: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-4626-26 today.
5: Available at selected branches. T's and C's apply.
6: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Fly to Fiji from just $309 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations like Samoa from $305 one way, Tonga from $319, Tokyo from $635, Singapore from $699, and Hong Kong from $669 one way. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
7: This Mother's Day, Michael Hill is celebrating all kinds of mums. From the new mums, the stepmums, and even the pet mums. Celebrate Mother's Day with pieces she'll love forever. Make sure to visit Michael Hill online or in-store today.
8: Before you turn up the heating this winter, it's worth checking your home is set up well. By cleaning your heat pump filter, sealing drafts, and reducing dampness, you can keep the heat in and your energy bill down. Search Eka. That's EECA. Get winter ready.
1: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
9: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं.
1: इसके पीछे.
3: Hum.
1: Tech Talk.
0: सबसे पहले तो बता देता हूँ कि जावेद अली साहब यहाँ आ चुके हैं और आपको कल मिलने वाले हैं परफॉर्म करते हुए। जी हाँ, स्टार अलायंस एंटरटेनमेंट आप सभी के लिए लेके आए हैं रफी और मैं, टाइमलेस क्लासिक ऑफ मोहम्मद रफी बाय जावेद अली सर। पैसिफिक इलेक्ट्रिकल सर्विसेज की तरफ से प्रेजेंटेड भी है। वेल, ये शो जो है वो कल होने वाला है 8 मई को विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर। $59 है टिकट जो है वो शुरू हो रही है। तो यस, फूड स्टॉल एंड ईजी ऑन साइट पार्किंग भी अवेलेबल है वहाँ पे। तो चाहे आप खुद मोहम्मद रफ़ी साहब के बहुत बड़े फ़ैन हो और या फिर जावेद अली की मेलोडियस आवाज़ के दीवाने हो, ये शो आपके नाम पे है, होने हो सकता है। जी हाँ, स्टार अलायंस एंटरटेनमेंट.com वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके इस शो को एंजॉय कर सकते हैं। बट यह सभी के लिए फटाफट जाइए इस वेबसाइट पे, सॉरी उस वेबसाइट पे जाके टिकट लेके फिर एंजॉय करिएगा लोकेशन में जाके, नॉट वेबसाइट पे। आपको कुछ नहीं मिला, वेबसाइट पे सिर्फ आपको टिकट खरीदना पड़ेगा। सो यस, $59 इट इज जहां से टिकट शुरू हो रही है और ये वेबसाइट है जहां पे आप बुक करिए टिकट जाके।
10: ओके, हाय दोस्तों, मैं हूं जावेद अली और ड्राइव शो पर आप शाम 6 बजे से लेके 7 बजे तक मेरे गाने आप एंजॉय कर सकते हैं।

वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बहुत ही बढ़िया मजेदार आज की बातें और आज के यू नो जो भी आपने हिस्से लिए हैं, जो भी आपने मैसेजेस भेजे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बट आई विल सी यू गाइस टुमारो सेम टाइम 12 से 3, तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए, खुश रहिए, एआई को अपने लिए एक फ्रेंडली नॉलेज के हिसाब से सीखिए, डोंट पैनिक, एक सिर्फ सीखने वाली चीज़ है ये, और साथ में ऑफ कोर्स अपना ध्यान रखिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करिए। बट मैं निकलता हूँ, आई विल सी यू गाइस टुमारो।

0: Greasy Mess. Powers through Mess with Morning Fresh.
1: Farmers has the best gifts for mum. Surprise her with a new fragrance or beauty gift. Keep her cosy with a new robe and sleepwear. Treat her with some new styling tools or a gorgeous diffuser or candle. Celebrate mum this Mother's Day. Farmers, your department store.
2: The Vibe Mix Events presents
3: the Grand Musty Night in conjunction with Freight and Cargo Brokers, Lowfinity in Wicked Chicken Botany Downs on 23rd May at Manurewa Netboat from 6 p.m. Show featuring comedy, dance and giveaways with stars Satya Anand, Jay Bhiyaji, Rowdy Naman Chapar alongside Money, Moto, Aku and Ketan. Tickets available at Get Fresh Mingri, Jay's Fresh Mart, The Agenda, Hunter's Food Town, Guest Manurewa and Wicked Chicken Botany.
2: Don't miss out.
4: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
5: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
4: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
6: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
2: हम टाइम चेक। To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
7: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 3. An investigation has been completed into the Kaitaki Cook Strait ferry stranding back in 2023. A final report outlines issues with part maintenance, finding an ageing rubber expansion joint should have been replaced years earlier. David Clark from the Transport Accident Investigation Commission says the outcome could have been much different.
8: It lost propulsion and all but emergency power in one of the roughest stretches of ocean in the world. The events ended safely, but time was critical.
7: Chris Bishop has announced a review of Auckland's City Rail Link project, including the cost. It comes after the ex-CEO said it could have been done for much less. The Minister of Infrastructure says he's unhappy with the final price tag and the review needs to look at the project's history, business case and costings. Three complaints against a TVNZ story relating to the death of Charlie Kirk are being upheld. The Broadcasting Standards Authority says the item breached accuracy standards by using a quote from Donald Trump out of context that could have seriously misled the public. Emirates is reporting good progress as it navigates the situation in Iran. The airline is operating at 75% of its pre-disruption capacity after restoring 96% of its global network. To rugby with Shift 4, two big announcements from New Zealand Rugby today. They have appointed Steve Lancaster as their new CEO and confirmed an operating profit of $700,000 and a net loss of $7.5 million in 2025. And New York has grabbed a 2-0 lead in their NBA Conference semi-final series with Philadelphia. The Knicks have won Game 2, 108-102, led by 26 points from All-Star guard Jalen Brunson.
2: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
9: मौसम के हालचाल, इस समय बाहर का टेम्परेचर 20 डिग्रीज है और आज को बनाए 16 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है। सनसेट आज का 5:31 पर।
2: The beat of Bollywood.
10: World's best हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
2: Coffee break with Sandy.
9: 3:02 हो चुके हैं। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। कॉफी ब्रेक आपके लिए शुरू हो चुका है। यू हमिंग अलोंग विद सैंडी राइट नाउ एंड अभी से लेके 4 बजे तक मेरा और आपका साथ रहेगा कॉफी ब्रेक में, और 4 बजे के बाद मेरा साथ यहाँ पे रुजबे के साथ हो जाएगा ड्राइव शो में। सो कैसे हैं आप और आपका डे आज का कैसा जा रहा है? इट्स क्वाइट ह्यूमिड टुडे, राइट? मतलब आज का वेदर देख के ऐसा लगा नहीं था कि लास्ट फ्यू डेज में हमने यू नो 7 degrees, 6 degrees, रात को 5 degrees तक देखा था। तो आज तो वैसे बाहर का लाइक इट्स क्वाइट नाइस, टेम्परेचर इज़ लाइक 21 degrees, 20 degrees के आसपास। सो ओवरनाइट भी काफ़ी ह्यूमिडिटी, काफ़ी वार्म टेम्परेचर आज वैसे रहने वाला है। बट दिस इज़ स्टिल संडे ओनली, संडे तक बारिश के चांसेस है, तब तक ही ऐसा ह्यूमिडिटी का वेदर रहेगा। उसके बाद अगले हफ्ते फुल ठंडी पड़ने वाली है। सो जितनी देर तक अगर आपको वार्म वेदर पसंद है तो इन्जॉय कर लीजिए।

0: बजकर 19 मिनट हो चुके हैं। कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं। हाय आरजू, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द शो।
1: हेलो, गुड आफ्टरनून, थैंक यू।
0: हाउ आर यू?
1: आई एम गुड, आप कैसे हो?
0: बढ़िया बढ़िया।
1: सो
0: या क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में? व्हाट इज हैपनिंग?
1: कुछ भी नहीं।
0: हैपनिंग क्यों हो रहा है?
1: हैपनिंग हैपनिंग एक होने वाला है।
0: ओ क्या क्या होने वाला है?
1: एक आई टोल्ड यू अबाउट इट कुछ महीने पहले, लाइक अ लेजेंडरी नेपाली बैंड नेपथे इज कमिंग टू ऑकलैंड दिस संडे। सो माय सिस्टर इज आल्सो फ्लाइंग फ्रॉम वेलिंगटन टू अटेंड दिस इवेंट कॉन्सर्ट।
0: क्या बात है, मदर्स डे वाले दिन।
1: मदर्स डे में, यस, हां, मदर्स डे में।
0: मदर्स डे वाले दिन मदरलैंड का बैंड एंजॉय करने वाले।
1: यस, yeah, nice. Oh, okay, yeah. Oh, so good. I'm excited for that. But yeah, or else everything is normal. Kuch bhi happening to nahi ho raha. Aapka?
0: बढ़िया है। यू नो लास्ट वीक व्हेन यू केम हियर तो वो हाइक के बारे में बोला था।
1: yes.
0: कि हाइक पे जाना।
1: I saw that you went on a hike.
0: Yeah, I did.
1: Yeah.
0: So we were supposed to do small hike, लेकिन eventually हमने थोड़ी बड़ी हाइक कर ली। मतलब हमने सोचा कि ये तो ट्रेल बड़ा छोटा था, दूसरे वाले में जाते हैं और वापस आ जाएंगे थोड़ा करके। लेकिन देन जब वो हम गए दूसरे ट्रेल में, इट वॉज मी एंड नुशीन, हम जब गए वहाँ पे एंड वो सीढ़ियाँ थोड़ी थी, नीचे उतरे, जब आधे में पहुंच गए तो डिसीजन लेना था कि अब वापस रस्ते में जाएं या फिर आगे बढ़ के कंटिन्यू करके खत्म करें। बिकॉज वापस जाओ तो 40 मिनट्स लगने थे, आगे जाते तो तकरीबन 1.5 आवर लगना था, थोड़ा सा ज्यादा। तो फिर हमने टॉस किया
1: कॉइन में
0: या फिर 1.5 आवर आगे गए।
1: इट
0: वाज नाइस, चैलेंजिंग। या इट वाज चैलेंजिंग बिकॉज ये पाइपलाइन रोड, स्लिप रोड, अतराखी ट्रेल जो है, सो जो स्लिप रोड है वो एक्चुअली स्लिपी है बिकॉज उसके ऊपर पत्थर है और वो डाउन है ऐसे हिल। जब उसके ऊपर आप वॉक करते हो तो डंडा उठाना पड़ा था साइड से ऐसे हेल्प लेने के लिए। मतलब प्रॉपर नेचर वाली चीजें वहां पे यूज कर रहे थे हम। तो अच्छा था, बट गुड शूज होने चाहिए अगर आप वहां पे जा रहे हो। हम दोनों के गुड शूज नहीं थे।
1: आपने स्नीकर्स लगाए थे? इट्स ओके, यू आर लाइक वी विल जस्ट गो फॉर इजी वॉक।
0: बट या एग्जैक्टली, वी इवेंचुअली डिड लाइक 15 किलोमीटर। ओह माय गॉड,
1: स्पॉन्टेनियस ट्रेक।
0: यस यस, सो इट वाज नाइस।
1: या
0: सो
1: गुड मेमोरीज। नाउ
0: देखो, डाउन हिल जाना, माउंटेन के नीचे जाना तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन माउंटेन चढ़ना बड़ा डिफिकल्ट लगता है।
1: मुझे भी
0: वापस जाना ट्रैक पे, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है।
1: या
0: so that was challenging.
1: Are you gonna go another trek ye weekend?
0: Yeah, so what about you? Are you planning koi aane wale dino mein someday
1: treks?
0: Haan,
1: mujhe Mount Taranaki karni hai.
0: Mount Taranaki? Haan. Okay,
1: New Plymouth, is it New Plymouth? So yeah, last time I went there 2 years ago, my birthday mein, but unfortunately the weather was very bad. It was like very cloudy. It's called Pukaki like trains or something, terrain or something.
0: Okay.
1: And then basically up, you go up, like it's really steep, like you climb, do a lot of steps, and uske baad you walk, and then obviously you have to walk a few hours. And uske baad you can see, I'm sure you've seen that iconic photo jahan pe you can see Mount Taranaki reflecting the lake.
0: Yeah,
1: mein.
0: Yeah.
1: Yeah, so apparently you should go only when the weather is clear. Like,
0: oh, acha.
1: Yeah, cloudy mein you can't see anything. No reflection. The mountain is covered.
0: Matlab summer mein jana chahiye.
1: Yeah, summer mein. But the funny thing is, like, I was closer to summer kyunki my birthday is in November. So main gayi thi, but then I booked it. I mean, I didn't know that it has to be clear. I thought it'll be fine. I'm sure even if we do, it was raining. February we went up, but everything was like foggy. So yeah, it was fail. We just walked for nothing, and also it was so many steps. No view.
0: Yeah. More disappointing. So no view is disappointment.
1: Exactly. Yeah. So this year, when the weather is clear, I want to do that and Tongariro crossing.
0: Oh
1: yeah, have you done that?
0: No. So वो मेरा goal है. So I'm doing before this. ये छोटी-छोटी hikes कर रही हूँ ताकि वहाँ तक क्या ऐसे caliber हो कि हम वो कर सकते हैं. Because उसके लिए थोड़ा ज़्यादा चाहिए ना, थोड़ा ज़्यादा experience चाहिए उसके लिए. एंड वो समर में अच्छा लगेगा।
1: या बहुत लाइक
0: और मेबी गुड वेदर में, सर्दी में वो थोड़ा डिफिकल्ट है।
1: या आई हर्ड लाइक इट्स बिट स्लिपरी, सो यू नीड टू हैव लाइक गुड जूते एंड लाइक गुड लाइक इवन लाइक क्या बोलते हैं,
0: स्टिक्स,
1: वॉकिंग स्टिक्स, सो गेट्स अ लिटिल आइसी, सो But it looks beautiful
0: sticks
1: though.
0: Sticks ki meko lagta hai zarurat padti hai anyway.
1: No, yeah, I don't have. I need to invest in that. I realized kyunki last time when I did that trick, my knees were hurting. Or downhill mein, my legs were hurting, and then I saw people walking with their walking sticks and like they were supporting, and I was like, oh, I need to buy them. Yeah.
0: So this is one thing, guys. Agar aap ye hiking trails wagera kafi karte hain, to agar aap invest karna chahte hain, to I will say two things: shoes and stick.
1: Yeah, I agree.
0: ये दोनों चीजें बहुत काम आती है. Shoes अच्छे अगर आपने अच्छे sole वाले अगर shoes खरीदे होंगे, it's gonna really help.
1: Yeah.
0: नहीं तो थोड़ा फंसोगे.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: 80s के रेट्रो गाने

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं. फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है. इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम. परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV. जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स. आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले. फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल.
2: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले. जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट. squirrel.co.nz.
3: Right now at Woolworths, collect double bonus points on every $50 shop. Plus, boost your budget and collect 10 times points on some of your favorite brands. Boost in the app, shop in store or online, and scan your everyday rewards card at checkout before Sunday 10th of May.
4: Pacific Electrical Services presents Javed Ali live in Auckland performing his blockbuster hits and a special tribute to the legendary Mohammed Rafi Saab in Rafi Aur Main, promoted by Star Alliance Entertainment at Victory Convention Center, 8 May, 7 p.m. onwards. Proudly supported by Key Contractors. For tickets, visit staralliance.com or call Edwin on 0211-382184.
5: Kick off the winter season with these winning deals from Rebel. Like 20% off all women's Puma, New Balance and Under Armour clothing and running shoes. And 20% off football, rugby and netball equipment. These deals and so much more are now at Rebel Sport. See online for T's and C's.
6: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
7: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है. सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
8: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 0927994399 और विजिट लीगल एसोसिएट्स.co.nz.

3:36 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं फिलहाल. कॉफी ब्रेक वैसे आप यहाँ पे सुन रहे हैं. सुपर सिटी में क्या क्या हो रहा है ये भी वैसे आपके साथ हम यहाँ पे शेयर करते रहते हैं. बिगेस्ट क्लाइमेट रिस्क जो है ये न्यूजीलैंड जो है ये इस समय पर फेस कर रहा है. क्लाइमेट चेंज कमीशन जो है इन्होंने बोला है कि काफ़ी एक्शंस जो है ये लेने पड़ेंगे ताकि जो मेजर रिस्क है क्लाइमेट को लेकर यहाँ पे न्यूजीलैंड में ये थोड़ा कम हो जाए. एंड सम एक्सट्रीम शॉर्टफॉल्स हुए हैं इन पॉलिसी जो एड्रेस करते हैं बिगेस्ट रिस्क को. सो जिसकी वजह से इसके ऊपर जो यू नो कुछ फैक्टर्स हैं इनके ऊपर काम किया जाएगा बहुत ही जल्दी. आपके सुपर सिटी में वैसे जावेद अली कल परफॉर्म करने वाले हैं, लाइव परफॉर्म करने वाले हैं. एंड जावेद अली का एक स्पेशल सेगमेंट आज हम आपके लिए लेके आने वाले हैं बिटवीन 6 to 7 PM. सो 6 to 7 PM जो कि ट्रेंड मेकर्स का आवर रहता है जहाँ पे हम डेडिकेट करते हैं किसी आर्टिस्ट को वो आवर. और आज का जो आवर है हम जावेद अली को डेडिकेट करने वाले हैं जहाँ पे जावेद अली से हमें बात करने का मौका मिला. वो यहाँ पर आए थे, हमने उनके साथ बातें की, उनके साथ इंटरव्यू किया. वो फुल इंटरव्यू आप सुनेंगे. यू नो अभी वो फीजी से डायरेक्ट यहाँ पर आए हैं एंड फीजी में जैसा उनका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में उन्होंने बातें की है. उन्होंने क्या फील किया फीजी में सबसे पहले तो उन्होंने उसके बारे में शेयर किया है जो सुनना ज़रूर बनता है. एंड उसके बाद शो में क्या होने वाला है और उनके दिल के करीब कौन सा गाना है ये सब कुछ आप सुनने वाले हैं बिटवीन 6 to 7 PM. और ये वो गाने हमने प्लेलिस्ट में रखे हैं जो जावेद अली के दिल के बहुत करीब है. सो ये सारे के सारे गाने बिटवीन 6 to 7 PM आज आप यहाँ पे सुनने वाले हैं ट्रेंड मेकर्स में. शो इनका कल होने वाला है बिकॉज आज आपको थोड़ा सा टीजर मिल जाएगा बिटवीन 6 to 7 कि कल का जो शो है ये कैसा होने वाला है, ये आपको आइडिया मिल जाएगा. सो इसीलिए अपनी टिकट आप बुक करवा पाएंगे. अगर बची है तो यू कैन चेक द वेबसाइट starallianceentertainment.com.

0: बस हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
1: Ladies and gentlemen,
2: let me tell you the story of Mr. Sutro.
1: Sutro.
2: One, two, three, stop.

0: Bro, look at you. Blue light screen को इतना घूर रहा है जैसे वो तुझे प्रमोशन दे देगा. और ये कॉफी lukewarm. और टेस्ट बिल्कुल हार्टब्रेक जैसा. प्लीज सर, तू क्यूबिकल के लिए नहीं बनाए, तो बीच के लिए बनाए, तो लाइफ को एंजॉय करने के लिए बनाए.
1: Listen to Hum on Rover every weekday at 8 a.m., 11 a.m., 1 p.m. and 5 p.m. Hum denge ek special code word. You've got 60 minutes to enter it in the Rover app and go in the draw to win a trip to Fiji. So what are you waiting for? Download the Rover app now. Win a trip to Fiji. Only on Hum on Rover. T's and C's apply.
2: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस होता है।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: गुड आफ्टरनून, 4:01 वेदर का हाल आज काफी कमाल। आइसोलेटेड शावर्स हो सकते हैं कुछ कुछ जगहों पे, पार्टली क्लाउडी रहेगा, नॉर्थ ईस्टर्लीज का साथ रहेगा। ओवरनाइट टेम्परेचर्स गोइंग टू बी एज लो एज 16 डिग्रीज, फील्स लाइक 19 डिग्रीज राइट नाउ। 5:31 को आज होगा सनसेट।
0: द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रिस्पी,
2: हमेशा साथ देने वाले दोस्त,
3: ब्रॉट टू यू बाय बेड्स आर अस मनको एंड पुकेकोई विद स्लीपी हेड क्वीन मैट्रेस फ्रेम्स स्टार्टिंग फ्रॉम 449 एंड जिमी टेलर एंड टीम फ्रॉम वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप, द होम ऑफ GWM हैवल एंड ओमुडा जेकू।
0: सुपर से ऊपर ब्रॉट टू यू बाय रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स लिमिटेड। द ड्राइव शो विद सैंडी,
4: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा फाड़ देंगे।
1: ड्राइव शो शुरू हो चुका है आपके लिए। गुड आफ्टरनून साथ में। हाय सैंडी, हाउज इट गोइंग?
5: अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून रुज़बे। यस, 7th मई है आज एंड ड्राइव शो आपके लिए शुरू हो चुका है। कैसे हैं आप और तुम्हारा डे आज का कैसा गया है?
1: मेरा डे बहुत बढ़िया गया सैंडी। या क्वाइट लवली डे एक्चुअली। कल बारिश की फिर से संभावना है। कल शाम को वीकेंड आते आते पता नहीं क्यों ऐसे बारिश का माहौल हो जाता है। एंड संडे को तेज हवाएं भी है। आप संडे को जाने वाले थे ना हाइक वाइक पे?
5: या संडे को जा रही हूँ।
1: नो लॉन्गर है।
5: क्यों?
1: तेज हवा है संडे,
5: वो बदल जाता है मौसम रुज़बे।
1: चलो
5: ये पल भर में बदल जाएगा, सैटरडे को देखना। It will be very different.
1: All right, okay, let's see. Anyway, it's going to be a very eventful weekend this time. Friday ko Javed Ali perform karne wale hai live.
5: Aur aaj hum Javed Ali special leke aane wale aapke liye between 6 to 7 p.m. jahan pe Javed Ali khud unke saath jo humne interview ki hai unke kuch bits aapko hum sunane wale hain, because Javed Ali ne apne favorite gaane ke bare mein bhi baat ki hai, apne kuch struggle ke bare mein bhi unhone baatein ki hai.
1: So yeah, tonight's show jo hum aapke liye lekar aayenge trend makers mein, it's going to be a Javed Ali special with not just Javed Ali songs but also some snippets from Javed Ali's interview jo humne ki kal. होप आपको वो मजा है क्योंकि हमने तो बहुत मेहनत की है।
5: बहुत स्पेशल मैसेजेस उन्होंने दिए हैं, बिकॉज वो अभी फीजी से होके आए हैं, तो फीजी में उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है वो उन्होंने बहुत अच्छे से शेयर किया है। अभी आगे क्या होगा, न्यूजीलैंड से क्या एक्सपेक्टेशंस है, वो सब चीजें, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग।
1: हमने हमारे इंटरव्यू में पहले 10 मिनट तो फीजी के बारे में ही बात की है
5: एक्चुअली में।
1: यू नो सच लवली, लाइक सच लवली पीपल एंड सो मच लव, so much love for Bollywood and Hindi cinema just in general.
5: So ये सब कुछ आप सुनेंगे 6 बजे के बाद between 6 to 7 p.m. जावेद अली की इंटरव्यू along with his songs, उनकी प्लेलिस्ट के गाने एक्चुअली में आप सुनने वाले हैं उस आवर में।
1: आज थर्सडे है, थर्सडे मतलब आज हम 5 बजे के बाद आपके लिए ये लेके आने वाले
2: हैं।
1: ड्राइव थ्रू कन्फेशंस में होता यह है कि आपको मौका देते हैं हम यहाँ पे अनोनिमस होके, आपके अगर कोई कन्फेशन है वो कन्फेशन आप करें,
5: वो मैसेज आप कर सकते हैं यहाँ पे 5599 पर, या फिर कॉल करके ऑफ एयर भी हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं।
1: या अगर आपको फुल अनोनिमस रहना है तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पे अनोनिमस पोस्ट कर सकते हैं।
5: या सो अनफिल्टर्ड क्रू हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है, ज्वाइन कीजिए एंड वहाँ पे अनोनिमस ऑप्शन होती है कि आपका नाम वहाँ पे नहीं जाएगा, वैसे आप मैसेज टाइप कर सकते हैं। यू कैन शेयर एनीथिंग यू वॉन्ट वहाँ पे। No judgments.
1: Let's see what confessions we have for today. But abhi ke liye shuruaat karte is ghante ki with this very beautiful track.

0: सलीम मर्चेंट की आवाज सुन रहे थे आप, ये बहुत ही बढ़िया सा गाना। यू आर लिसनिंग टू द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रिज़बे। आज 4:13 हो गए हैं अभी, और मदर्स डे कॉम्पिटिशन भी चल रहा है अभी भी।
1: Yes, मदर्स डे कॉम्पिटिशन भी चल रहा है,
0: जिसमें आपको 100, 200 या $300 जीतने का मौका मिल सकता है बाय पार्टिसिपेटिंग ऑन एयर। करना क्या है आपको, यहाँ पे कॉल करना है 0800-004-866 इस नंबर पे। जब हम आपको बताएंगे, मतलब एक सिनारियो देंगे आपके मॉम के पर्टेनिंग, और आपको यहाँ पे कॉल करके बताना है हमें कि आपकी मॉम ऐसे सिनारियो में कैसे रिएक्ट करेगी। बस ये करने के लिए आपका नाम ड्रॉ में शामिल हो जाएगा। एंड हमारे सोशल मीडिया पे भी आप पार्ट ले सकते हैं। सोशल मीडिया फेसबुक पे हमने कॉम्पिटिशन रखा है मदर्स डे का, जिसमें $200 का वाउचर आपके नाम हो सकता है फॉर योर मॉम।
1: सो आपको एक वाउचर बनाना है। आपको क्या लगता है कि आपकी मम्मी को आप कैसे पैम्पर करना चाहते हैं? अगर एक आप वाउचर बनाएंगे जहाँ पे ढेर सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल नेल आर्ट उनको अगर पसंद है करवाना, उनको मसाज पसंद है करवाना, स्पा उनको पसंद है, या फिर कोई रेस्टोरेंट का खाना उनको पसंद है, कोई कपड़े उनको पसंद है, ये वैरायटी ऑफ थिंग्स एक्चुअली में, या फिर यू नो कुछ क्लीनिंग वाउचर हो सकता है, वो क्लीनिंग किसी कंपनी का वो हो सकता है, एनीथिंग। सो वो अगर आपको बनाना है एंड तो हमारे फेसबुक पेज पे जाइएगा। दिस इज़ द लास्ट, आज और कल भी एक्चुअली में चांस मिलने वाला है ना, सो इसके बाद आपको चांस नहीं मिलने वाला है। तो जाइएगा वहाँ पे, अपना वाउचर पोस्ट कीजिएगा, लिस्ट लिख दीजिएगा वहाँ पे, एंड फॉर आर आइडिया कि कैसे वाउचर पोस्ट करना है, जाइए वहाँ पे फेसबुक पर, तो आपको आइडिया मिल जाएगा बाकियों के वाउचर्स देख के। सो इट्स अ पिन पोस्ट ओवर देयर,
0: फटाफट कर लीजिए, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं अभी आपके पास,
1: ज्यादा टाइम नहीं रह चुका है।
0: वेल, आज शाम को 6 से 7 के बीच क्या होने वाला है ये अब सुनेंगे अब।
2: ओके, हाय दोस्तों, मैं हूँ जावेद अली, और ड्राइव शो पर आप शाम 6 बजे से लेके 7 बजे तक मेरे गाने आप एंजॉय कर सकते हैं। तो प्लीज़

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
2: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक,
1: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
2: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T's and C's, lending and credit criteria apply.
3: At Woolworths, whether it's a Sunday roast or midweek wraps, we've got chicken for every occasion. Now you can grab our fresh chicken thighs, bone-in, skin-on, on special for just $5.90 a kg. That's the fresh food feeling at Woolworths. T's and C's apply.
4: Introducing Pizza Hut's new Tikka and Paneer range. Rich tikka base, creamy paneer, bold flavor. Get the first taste from $10.99 pickup at Pizza Hut. Limited time only. T's and C's apply.
5: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
6: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
5: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
6: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
5: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
7: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
8: In this final hour, when the lives and well-being of your fellow country folk hang in the balance, is it you here that rise to answer NZ Blood's call?
9: Do they have parking?
8: There is some.
10: Are there biscuits?
8: Of course.
11: Can I do it during work hours?
8: Don't know. Talk to your manager. Probably.
12: Join forces and save lives. Plasma donations are powerful and help create up to 11 life-saving products. Book your plasma donation today at nzblood.co.nz.
13: Trade Depot brings you Midea, the world's number one air conditioning company. Introducing the Midea Inverter Heat Pump. It looks elegant and sophisticated, features innovative smart technology, and superb energy efficiency. Shop now for your Midea Inverter Heat Pump, including installation anywhere in New Zealand, from only $1,299 with Trade Depot. T's and C's apply.
14: TradeDepot.co.nz.
15: The Drive Show with Sandy and Rusby.
16: Hamesha saath dene wale dost.
17: Brought to you by Beds R Us, Manuko and Pukekohe. With Sleepy Head Queen Mattress Frames starting from $449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
15: Super Se Upar. Brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. Bollywood's most wanted.
18: Kundi khadao. सीधा अंदर आऊं
19: मैं लाऊं अपना ए गेम।
15: Brought to you by Indelible Homes, build your dreams.

0: यो हनी सिंह, आप सुन रहे थे ओनली ऑन हम्पलिंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स। आज अगर आप आपका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, एनिवर्सरी या कोई खास दिन, आपको ढेर सारी बधाइयां आज के दिन की। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। 7th of May आज आप सेलिब्रेट कीजिए आपका दिन भरपूर। अभी टाइम आ गया है, हम यहाँ पे आपके लिए मदर्स डे कॉम्पिटिशन लेकर आए। एंड टूडेज मदर्स डे सिनारियो
1: Is what?
0: मैं बताता हूँ। तो बेसिकली आप दिस इज ओनली रेलेवेंट फॉर दोस्त जो सिबलिंग्स के साथ पले बड़े हैं। तो अगर आपने आपके सिबलिंग को छेड़ा, तंग किया, परेशान किया, रुलाया, तो आपकी मॉम कैसे रिएक्ट करती है?
1: ओके,
0: सो दिस इज द सिनेरियो फॉर टुडे। 0800
1: आपके सिबलिंग के बीच में जब झगड़ा हो जाता है तो उस समय पर आपकी मम्मी का रिएक्शन क्या होता है?
0: आपने झगड़ा किया है, यू आर द वन। सैंडी, आपका कोई ऐसा, ये तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होगा इसके ऊपर।
1: हाँ,
0: क्योंकि आपने तो बहुत झगड़े किए।
1: तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि मेरे घर में मैं ही हूँ जो झगड़े करती है?
0: क्योंकि झगड़ालू आप ही लगते हो ना।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? मैं आपको भाई से मिलाऊं, आपकी बहन से भी मिलाऊं?
1: हाँ
0: भाई, तो आपका मेरे को नहीं लगता कभी।
1: डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ऐसा नहीं होता है।
0: या
1: बट झगड़े मैंने काफी स्टार्ट किए हैं वैसे। आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने काफी स्टार्ट किए हैं। तो मुझे एक्चुअली में डांट पड़ती थी ज्यादा नहीं, मेरे भाई को ज्यादा कई बार पड़ जाती थी।
0: अच्छा।
1: मेरे चक्कर में, क्योंकि वो उसको एक्सप्लेन करना नहीं आता था कई बार, छोटा था ना वो बहुत ज्यादा, तो उसको एक्सप्लेन करना नहीं आता था कि क्या हुआ है, तो मैं उसमें थोड़ा बेनिफिट ले लेती थी।
0: एंड इट्स आल्सो अ बॉय थिंग, आई थिंक बॉयज ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाते
1: तो थोड़ा हो जाता था कि भाई हाँ वो यही फंसेगा अभी।
0: तो आपने से बहुत फंसा है?
1: मैंने बहुत फंसा है, इनफैक्ट इतना ज़्यादा फंसाया हुआ है कि यू नो, जब हम छोटे होते हैं तो कुछ चीज़ें होती है कि आपको होती है कि ये ज़्यादा नहीं खानी है, ये गेस्ट के लिए है। जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, यू नो, ड्राई फ्रूट एक जगह पे होते हैं, जब गेस्ट आते हैं तभी ड्राई फ्रूट्स निकलते हैं। तो वो मैंने चोरी चोरी कुछ खाए थे एंड सबको लगा कि मेरे भाई ने खाए हैं, ब्लेम उसके ऊपर गया। मैंने कभी वो रिवील नहीं किया, बहुत देर बाद रिवील किया था कि वो मैं थी।
0: वाओ,
1: बट आई डिड रिवील दो।
0: क्या ये सब अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत।
1: इसीलिए
0: यार, क्या सैंडी, वेरी बैड यार, वेरी मीन।
1: तो होता है,
0: मॉम ने कैसे रिएक्ट किया था फिर वो टाइम पे?
1: She used to be very chill, बहुत calm, very chill person.
0: अच्छा।
1: Yeah, ज़्यादा ऐसा डांटना वाटना नहीं, थोड़ा हंस के निकाल देना, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा घूर देना, आँखों से ही काम, बातें ज़्यादा नहीं, आँखों से ज़्यादा।
0: Wow.
1: Yeah.
0: ओके, आप भी यहाँ पे शेयर कीजिए कॉल करके 0800-004-866।
1: सो तुम्हें पूछने लगी थी मैं,
0: मेरे को कैसे पूछोगे यार, नॉट रेलेवेंट।
1: नहीं, मेरे साथ कजन्स तो आते हैं ना घर पे।
0: कजन्स नहीं, मैं एक्चुअली क्रश में रहता था ना, क्रश में मेरा राड़ा होता था।
1: या
0: तो तभी मेरे को झाप पड़ती थी कि हाँ यू कांट डू दिस दिस एंड दैट, बट वो डैड यूजुअली मेरे को झापते थे वो सब बातों में,
1: नॉट मम्मी।
0: नहीं, मॉम सीधा मारती थी। हाय
2: हाय, कैसे?
0: बहुत ही बढ़िया भाई, बताओ कैसे हो आप?
2: बस ठीक हूं। मेरे यहां पे ऐसा होता था कि मैं, टू बी ऑनेस्ट, मैं बदमाश काफी था बचपन में।
0: क्या था?
2: तो ज्यादा बदमाश था, बदमाशी ज्यादा करता था। तो छोटा भाई है मेरा, वो बहुत एकदम शरीफ,
0: राइट।
2: तो मैं ज्यादातर उसको पीट देता था अगर वो मेरी कोई चीज ले लेता था या कुछ भी, तो या और उसकी भी चीज मुझे चाहिए होती तो मैं ले लेता था, फिर अगर वो रोता था तो मैं उसके लिए उसको पीट देता था।
0: उसको पीट देता था, बाप रे।
2: तो यार ऐसी जो मस्त, जैसे भाई बहन एक दूसरे को पीटते, वो काइंड ऑफ पीटना। तो फिर मेरी मॉम पहले तो ट्राई करती थी कि मैं यानी ये सॉरी फील करूं, और फिर अगर नहीं करता था तो फिर वो पापा को बताती थी, फिर पापा मुझे लगाते थे चमेट,
0: फिर तेरे को सॉरी फील होता था।
2: तभी भी नहीं होता था तो मैं यानी, पर मम्मी ऐसे, मुझे मम्मी ने कभी मारा नहीं है, बट ऐसे थोड़ा सा गुस्सा करती थी और फिर जाके वो पापा को बोल देती थी कि देखो इसने ऐसे किया है, और फिर मुझे थोड़ा समझाती थी कि बेटा वो तेरा छोटा भाई है, अगर उसने गलती की तो भी तुझे ऐसे नहीं करना चाहिए अगर उसकी गलती है। और वो फिर उसमें ऐसा हो जाता था कि कभी कभी एक आधी दो बार अगर वो गलती भी कर देता है तो फिर मुझे ही पड़ती थी।
1: क्योंकि छोटा भाई है,
2: बन गया था,
0: क्योंकि ये
2: ऐसा नहीं, क्योंकि बुली था ना, ऐसा बन गया था ना,
1: बुली था।
0: हाँ
2: हाँ, तो काइंड ऑफ, या
0: नाइस, थैंक्स यार, फर्स्ट थैंक्स शेयर करने के लिए भाई। कल गाना सुना क्या तुमने? तुम्हारा गाना प्ले किया हमने। चला गया वो भी, छोड़ो।
1: हाँ उसके बाद भी हुई सुबह ना,
3: बाद भी हुई सुबह।
0: अच्छा बोलो शिवराज भाई।
4: हाय रुस्ते, हाय संदीप।
1: हाय शिवराज।
4: हाय, मैं अपने बताता हूँ, जैसे हम तीन भाई हैं तो मैं बीच का हूँ। तो जब मैं और मेरे भाई की लड़ाई होती थी बड़े भाई की, तो मुझे फेवर ज्यादा मिलता था माँ बाप से, और जब छोटा वाला हो गया तो फिर उसको फेवर ज्यादा होने लगा, तो मुझे एहसास हुआ कि हाँ छोटे होने का कुछ तो बेनिफिट होता है। तो मेरी सिस्टर सबसे बड़ी थी, तो वो क्या करती थी, जैसे मैं खेल रहा होता था फ्रेंड्स के साथ, जैसे घर के पीछे कहीं खेल रहा होता था, तो मुझे शाम को दूध देती थी, मतलब मम्मी ना शाम को दूध देती थी, तो क्या करती थी, लास्ट में ना दूध के गिलास में वो सर्फ घोल के ना उसको व्हाइट व्हाइट करके बिल्कुल, और वो ले आती थी एकदम से मेरे लिए, और मैं खेलते खेलते एकदम से जल्दी से खेल, मतलब खेल में थकावट ना हो तो जल्दी से पी के उसको
0: सर्फ
4: करता था, तो
0: एकदम से
4: सही बात में खड़ा जो होता था कि सर्फ मेरे मुंह में चला जाता था, तो दूध समझ के उसको एकदम से झटके से पीता था, तो एकदम से झटके से चला जाता था।
0: बाप रे, वो आपको साबुन का पानी पिलाती थी?
4: हाँ मतलब एकदम से वो, मतलब मजाक के तौर पे वो व्हाइट व्हाइट करके ना उसको झाग बना के उसमें वो गिलास में लाती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि दूध ही है वो, तो मैं एकदम से जैसे ही सिप लेता था तो वो अंदर तो जाएगा नहीं ऑब्वियसली वो सर पे, तो मजाक के तौर पे वो मेरे साथ ऐसे करती थी मेरी।
0: बापरे क्रेजी यार। क्या उम्र थी आपकी ये टाइम पे?
4: क्या चीज,
0: क्या उम्र क्या थी आपकी जब ये मजाक होता था? इमेजिन करो अगर आपको पता ही नहीं कि वो सर्फ का टेस्ट है और आप वही पी रहे हो दूध समझ के। ऐसा होता है अगर बचपन में से, बचपन से सर्फ पिला रहे तो हो सकता है यार।
4: बचपन से कुछ भी नहीं है तो माँ का दूध तो पिएगा ही ना।
0: हाँ नहीं वो तो है, लेकिन वो याद किसको रहता है ना टेस्ट वो बचपन का।
4: अब वही मेरे बच्चों के साथ ऐसे हो रहा है, जैसे मेरा छोटे बेटे में तो बहुत डिफरेंस है, मतलब दोनों बच्चों में मेरे, मेरी बेटी 16 साल की है और मेरा बेटा 4 साल का, तो बोल नहीं पाता अभी, तो वो सारी जो अपनी गलतियां है ना सारी वो मेरे बेटे छोटे बेटे में डाल देती है, क्योंकि वो बता नहीं पाता है छोटा है वो, तो वो आब करता रहता है बस,
0: हमेशा साथ देने वाले दोस्त, ब्रॉट टू यू बाय बेड्स आर अस मनको एंड पुकेकोई विद स्लीपी हेड क्वीन मैट्रेस फ्रेम्स स्टार्टिंग फ्रॉम 449 एंड जिमी टेलर एंड टीम फ्रॉम वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप द होम ऑफ GWM हैवल एंड ओमुडा जेकू। You get money, get cash. New Zealand's meanest word game is here. Think you're a Kiwi word wizard? Put it to the test with Chortle and be in to win $100 a day. Each day, guess a Kiwi word, saying or phrase. Every game equals one entry, and if you answer fast and avoid the hints, you'll score a bonus entry. With $7,000 up for grabs, the more days you play, the better your odds. So what are you waiting for? Jump in and have a crack. Only on Rover. Accurate traffic.
5: Auckland Airport, park and ride.
6: Fine spells tonight, a low of 17 degrees. We did have an emergency services incident on the southern heading away from town. That was around Newmarket. It's being resolved though. Traffic's starting to move again a little, but it's getting heavy as well past that through to Highbrook Drive. 50 minutes out to Manukau from the city. On the northwestern, 40 to get to Massey. Heavy St. Luke's to Te Atatū.
5: Park and ride for more affordable parking. Free bus transfers right to the terminal door.
7: Get mum a gift, she'll love the money.
8: We've got plants, the hanging baskets, the seedlings. We've got a really good range of coloured pots as well. This year, give a Mother's Day gift that keeps on growing.
9: 14-centimetre Calathea prayer plant, only $26.87. Fisker's Ruby Bypass Pruners, $36.95. Northcote Pottery 20-centimetre Paloma Egg Pot, just $19.98.
8: Pop into Bunnings and find something she'll love. Bunnings Warehouse. Lowest prices are just the beginning.
10: Time out. Bring it in.
11: Listen, let's give him the new Dunked McSpicy.
10: Because no one dunks like the Harlem Globetrotters, and no one does sauce like Macca's. Available between 11 a.m. and 11 p.m. T's and C's apply.
11: Attention New Zealand, it's Lotto NZ's biggest ever Mother's Day. Treat your mum to a triple dip and she could win one of 100 extra prizes of $30,000. Get Mother's Day sorted at your local Lotto NZ store. Prizes drawn May 16th, T's and C's apply.
12: For the one who's always been there, celebrate her with Pandora. Buy two full price pieces and receive a third one free just in time for Mother's Day. Offer ends 10th May in store or online at pandora.net. Conditions and exclusions apply.
13: Wo indelible homes wali kahani sunao na.
14: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year Master Builder Guarantee, awards pour in.
15: And award goes to Indelible Homes.
14: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite Master Builder.
16: Kahani of Indelible Homes.
17: How many deals can you get in a day? Hurry into Briscoe's today and find out with one day store-wide savings for, you guessed it, one day only. So hurry in and bag the savings. Stores open till 9 today only at Briscoe's. See online for T's and C's.
18: एक सपना है सपना कुछ अपना करने का सपना एक अपने बिजनेस का
19: हम है क्रू केयर सिर्फ $15,000 ऑनवर्ड्स के इन्वेस्टमेंट में हम बनाएंगे आपके सपने को एक हकीकत
20: क्रू केयर ऑफर्स कमर्शियल क्लीनिंग फ्रेंचाइज व्हिच केटर्स टू आफ्टर एंड बिफोर आवर्स क्लीनिंग सर्विसेज फॉर ऑफिसेज एंड स्कूल्स क्रू केयर आल्सो हैज टाई अप्स विद मेनी क्लीनिंग साइट्स लाइक ऑफिसेज स्कूल्स जिम्स मेडिकल सेंटर्स एंड हॉस्पिटैलिटी साइट्स फाइनेंस ऑप्शंस अवेलेबल फॉर अप्रूव्ड परचेसेस कॉल क्रू केयर ऑन 0800 800 209

0: brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: सुपर से ऊपर ये शो आपके लिए जारी है अभी और काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है, जैसे कि अभी एक अर्जेंट डिसाइसिव एक्शन लेने की ज़रूरत हो रही है। क्लाइमेट चेंज कमीशन ने रिपोर्ट किया है कि एक डिसाइसिव एक्शन लेना है, नहीं तो एक मेजर रिस्क जो है वो हमारे सर पे आ खड़ा आ बैठने वाला है। एंड दिस इज़ अराउंड सम हैज़र्ड्स फॉर बाई 2050 जिसको हम एक्सपोज होने वाले हैं। एंड ये जो सिवियर वेदर इवेंट्स है ये ऑलरेडी एक लॉन्ग लास्टिंग हर्ट, ग्रीफ एंड फियर क्रिएट कर रहे हैं अमंग टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो इसके ऊपर एक इमीडिएट एक एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो और डिटेल्स इसके जो है इसको शेयर करेंगे, लेकिन जो डिग्रेडेड वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है ये एक एक्सट्रीम रिस्क हो सकता है बाय 2050। और ये वाटर का जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है अराउंड इवन वेस्ट वाटर, ये एक मेजर कंसर्न रहा है काफ़ी पार्ट्स ऑफ ऑकलैंड में भी, जहाँ पे प्रॉपरली सिस्टम है नहीं फॉर वेस्ट वाटर। सो या इट्स गोइंग टू बी क्वाइट अ ट्रिकी थिंग। अलोंग विद दैट वेस्ट डिस्पोजल को लेकर भी काफ़ी सारी बातें हो रही है, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इसकी भी जगह कम पड़ रही है या कम पड़ने वाली है। वेल, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशंस हो रहे हैं, बट होपफुली कोई डिसीजंस भी आए एंड इलेक्शन सीजन डजंट अफेक्ट दोज डिसीजंस होपफुली। आपके लिए थोड़ी और बातें लेकर आएंगे, लेकिन आज 5 बजे के बाद फ्लाई अवे फ्रेंजी का कोड भी देंगे आपको, जिसमें यू विल बी एबल टू पुट दैट कोड एंड बी इन अ ड्रॉ टू विन अ रिटर्न टिकट फॉर फीजी। तो बहुत सारी चीज़ें आपके, और बस सुनते रहिए हम ब्लिंक बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।

0: begin.
1: Don't put up with a damp, cold bathroom this winter. With a Shower Dome shower top, your bathroom will be warmer, drier, healthier. And now every Shower Dome comes with a lifetime guarantee. That'll give you the warm fuzzies. Showerdome.co.nz.
2: With a Gem Personal Loan, you can give your old kitchen a makeover. Combine multiple debt repayments into one. Or get from A to B in a new CAR. And for a limited time, pay zero establishment fee, saving $240. Search Gem Personal Loans and check your personalised rate in under 2 minutes with no impact to your credit score. Establishment fee waived till May 19th, 2026. Lending criteria, TCs, fees and other charges apply.
3: Auckland, taiyar ho jao ek Sufi raat ke liye. Once upon a time with the legendary Rahat Fateh Ali Khan live in concert. Along with Shah Zaman Ali Khan. Saturday, 25th July at the Trust Arena. Book your tickets on drytickets.co.nz. For sponsorships, call Karam Hundal on 027-514-6477.
4: How many deals can you get in a day? Hurry into Briscoe's today and find out with one day store-wide savings for, you guessed it, one day only. So hurry in and bag the savings. Stores open till 9 today only at Briscoe's. See online for T's and C's.
5: Purani gaadi aur mehenga fuel kab tak chalega? Switch to Leap Motor C10 or B10 Ultra Hybrid or Electric. Sirf 44,990 plus on road se shuru. Visit Armstrong's Leap Motor Green Lane or Botany. T's and C's apply.
6: Real South Indian taste ka craving hai? Try karo Kashish Foods Dosa Batter. Freshly made in New Zealand, stone ground for that authentic texture. Soft, fluffy idlis or perfectly crispy dosas. Har bar. Classic ho ya ragi. Multigrain ya medu vada batter. Sab milega. Aur haan, buy any Kashish Dosa Batter, any size or pao 250 grams ginger garlic paste bilkul free. Limited time offer 31st May tak. Kashish Foods. Eat better, live better.
7: Time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
8: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 5. Concerns are being raised over a lack of salvage and towing capabilities in the Cook Strait. A final report on the Kaitaki ferry stranding in 2023 identifies the mechanical and maintenance issues at fault. David Clark from the Transport Accident Investigation Commission says there are gaps in how agencies can respond.
9: That increases the risk that a disabled vessel becomes a major casualty with the potential for fatalities, injuries and environmental damage.
8: The conservation system is in for its biggest overhaul in decades. A government bill aims to boost economic growth and regional jobs and would also see international visitors charged access to some sites. The Green Party is furious, saying more than half of New Zealand's conservation land will be eligible for land exchange and disposal. Auckland's City Rail Link won't escape review after concerns about its final price tag. Infrastructure Minister Chris Bishop has announced a probe after the ex-CEO said the project could have been done for much less. The closure of iconic Tauranga pub, The Crown and Badger, is another blow for the struggling city centre. Chamber of Commerce's Matt Cowley says it's a difficult time for downtown businesses.
10: The CBD is still a 9-to-5 weekday destination. Until we get more people living there, it will continue to go through its transition.
8: To rugby with Shift 4, Hurricanes coach Clark Laidlaw has provided more detail around the injury to All Black halfback Cam Roygaard. Laidlaw says Roygaard is dealing with a calf strain.
11: It's not the major part of his muscle, it's in between, it's not tendons, it's not a train wreck, but as announced it's 3 to 4 weeks.
8: And an emphatic victory by San Antonio in Game 2 of their NBA Western Conference semi-final against Minnesota. The Spurs have demolished the Timberwolves 133-95 to level the best of seven series at 1-1.
7: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
12: World's best, hamari koi branch nahi hai.
7: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
13: वेदर का हाल आज बहुत ही कमाल, पार्टली क्लाउडी विद आइसोलेटेड शावर्स होंगे कुछ कुछ जगहों पे, नॉर्थ ईस्टर्लीज का साथ रहेगा. फील्स लाइक 19 डिग्रीज, ओवरनाइट टेम्परेचर इज गोइंग टू बी एज लो एज 16, एंड 5:31 पीएम पे आज होगा सनसेट.
7: The Drive Show with Sandy and Rusby.
14: A
0: हमेशा साथ देने वाले दोस्त.
14: Brought to you by Bedzaras, Manuko and Pukekohe with Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from 449 and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
15: Power Drive at 5.
16: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. The Drive Show with Sandy and Rizbe.
17: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
13: 5:03 and Drive Show aapke liye jaari hai abhi. Hi Sandy, good evening.
18: A very very good evening to you. Aur aaj Drive Through Confessions mein aapko agar kuch confession karna hai. आज अगर किसी को अपने कुलिए सॉरी
13: हमको आदत हो गई अभी यार अभी क्या सॉरी हो रही डोंट बी सो फॉर्मल
18: या फाइन
13: दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू
18: खांसी में नो सॉरी नो थैंक यू
13: नहीं दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू खांसी की अभी आदत हो गई हमें
18: या सो आपको अगर आज कन्फेशन करना है स्पेशली अगर आपको किसी को वर्कर के बारे में कन्फेशन करना है
13: को वर्कर के बारे में कन्फेशन
18: यस
13: अच्छा
18: यू कैन डू दिस
13: ओके
18: कोवर्कर के बारे में कुछ कन्फेशन हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ किया उनके बारे में जो उनको नहीं पता है
13: अच्छा ऐसा क्या किया
18: ऐसा कन्फेशन भी हो सकता है
13: क्या किया
18: मैंने तो नहीं किया लेकिन किसी ने तो किया होगा ना
13: अच्छा किसने किया
18: किसी ने तो किया होगा
13: हाँ यार अगर आपने आपके कोवर्कर की बैंड बजाई है बॉस को लेकर या फिर बॉस को बोला कि अरे आपको पता है उसने सिक लीव लिया था ना वो एक्चुअली बीमार नहीं था वो मैच देख रहा था रात को
18: कुछ भी ऐसे एनीथिंग एंड कुछ ना कुछ तो रहेगा कोवर्कर्स को लेके ना
13: या मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था मैंने जानबूझ के नहीं किया था बट ऐसे ही टॉपिक में बॉस के साथ बात हो रही थी और मेरे निकल गया कि हाँ कि कुछ बड़ा ही मैच था यार इंडिया वर्ल्ड कप का मैच था या कुछ तो भी ऐसा बिग मैच था अभी रिसेंटली तो मैंने बोला हाँ कि बहुत इम्पोर्टेंट मैच था और मंडे की सुबह थी ना और मैं बोला कि हाँ मैं तो देख नहीं पाया क्योंकि ऑब्वियसली काम पे आना था लेकिन आज सुबह ही 6-7 बजे मैच ख़त्म हुआ बहुत एक्साइटिंग मैच था तो उसने बोला कब मैच चालू हुआ तो मैंने बोला रात को 2:30 बजे तो बोलता है अच्छा इसलिए ये आया नहीं आज काम पे मैं बोला मेरे को नहीं मालूम
18: नो आइडिया मेरे को लगता है मैच को लेके तो काफी लोगों ने ऐसे
13: किया होगा काफी लोगों ने किया मैच को लेके
18: क्लेम किया होगा बिकॉज़ वो यूजली यहाँ पे मैच लाइक 2:30
13: क्रिकेट मैच की बात कर रहे हैं
18: इस टाइम पे कई बार शुरू होते हैं मतलब ओवरसीज के जो मैच है सो अगर आपको कुछ कन्फेशन करना है तो आप भी यहाँ पे कन्फेस कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारे ग्रुप में जाइए अनफिल्टर्ड क्रू कितने मेंबर्स हो गए हमारे ग्रुप में रुज़बे एनी आईडिया
13: नहीं आईडिया नहीं मुझे सैंडी
18: सो अनफिल्टर्ड क्रू में जाके
13: मेरा लाइफ में मोटो है
18: क्या
13: नेकी कर दरिया में डाल
18: अच्छा
13: गिन मत फिर उसके बाद कितनी नेकी की है तूने
18: वो सब नहीं गिनना चाहिए
13: या
18: ट्रू ट्रू ट्रू वो कभी नहीं करना चाहिए बट अनफिल्टर्ड क्रू हमारा फेसबुक ग्रुप है अगर आप सर्च करते हैं वहाँ पे एनोनिमस होकर भी अपना कन्फेशन आप टाइप कर सकते हैं अदरवाइज यहाँ पे मैसेज कीजिए 5599 पर
13: 62 मेंबर्स टुनाइट
18: 62 या तो एंड प्लीज यार अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं ना तो एक ही रूल है उस ग्रुप को ज्वाइन करने का कोई और रूल नहीं है एक ही रूल है कि आपकी आईडी फेक नहीं होनी चाहिए
13: हाँ क्योंकि एक कोई फेक आईडी कब से आपको तंग कर रहा है ना
18: सो फेक आईडी एक्सेप्टेड नहीं है वहाँ पे आप अपनी रियल आईडी से वहाँ पे रिक्वेस्ट भेजिए तो आप एक्सेप्टेड है
13: फटाफट आप वहाँ पे जाके कन्फेशन लिखिए या फिर हमें बताइए अगर आप कन्फेशन नहीं करते हो ठीक है हम थोड़ा टाइम देंगे अगर कन्फेशन नहीं करते हो तो सैंडी आज हम ये करने वाले
16: सिचुएशनशिप
13: अगर कन्फेशन नहीं आते तो सिचुएशनशिप करेंगे
18: बिकॉज़ कल का सिचुएशन रह गया था और हमारे पास बहुत ही बढ़िया सिचुएशनशिप है एंड याद आया वैसे आज 6-7 के बीच में हम आपके लिए एक स्पेशल सेगमेंट लेके आ रहे हैं जावेद अली का सो जावेद अली से हमारी मुलाकात हुई उनसे हमारी बातें हुई इंटरव्यू हुई जावेद अली ने अपनी कहानियां बताई अभी वो फिजी से होके आए हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पे एंड कल के शो में क्या क्या होने वाला है उनके फेवरेट गाने की कहानी क्या है ये सब आप 6-7 के बीच में सुनने वाले हैं
19: ओके हाय दोस्तों मैं हूँ जावेद अली और ड्राइव शो पर आप शाम 6 बजे से लेके 7 बजे तक मेरे गाने आप एंजॉय कर सकते हैं तो प्लीज़
13: सुनिएगा ज़रूर ठीक है
18: ज़रूर जाके सुनिएगा
13: थोड़ी देर में आज हमारे जो लोकल आर्टिस्ट है इनके बारे में भी बात करेंगे एंड बैक योर बीट्स में आज के हमारे आर्टिस्ट के गाने आपने यहाँ पे काफी बार सुने होंगे
18: yeah.
13: और आज उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे

0: न्यूजीलैंड म्यूजिक मंथ ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ मे, और इसमें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बैक योर बैकयार्ड बीट्स. इसका मतलब ये है कि जो हमारे लोकल आर्टिस्ट है उनके गाने हम यहाँ पे प्ले करेंगे ऑल थ्रू आउट द डे, और आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सपोर्ट कीजिए हमारे ये लोकल आर्टिस्ट को,
1: इनको वोट भी कीजिएगा.
0: वोट कीजिए क्योंकि जो टॉप वोटेड रहेंगे उनके गाने हम प्ले करेंगे, फीचर करेंगे रोवा पे.
1: यस, सो आज के जो हमारे लोकल आर्टिस्ट है इनका नाम योगी है. योगी से वैसे हम पहले बातें कर चुके हैं रुजबे,
0: एंड इनके काफी गाने लॉन्च किए हमने यहाँ पे.
1: काफी ज्यादा मल्टी टैलेंटेड सिंगर सॉन्ग राइटर कंपोजर हैं, एंड इनके जो म्यूजिक है ये ब्लेंड करते हैं हार्टफेल्ट लिरिक्स को. इनकी कॉम्पोजिशंस बहुत ही रिच नरेटिव भी बताती है. सो योगी से हमने वैसे उनके गाने के बारे में काफ़ी इंटरव्यू की है, एंड उनकी ही शुरुआत यहाँ पे न्यूजीलैंड म्यूजिक मंथ में ही हुई थी उनके सिंगिंग करियर की. एज इनकी प्रॉपर उनके स्टूडियो सॉन्ग्स की शुरुआत यहाँ से हुई थी, बिकॉज जब हमने उनका गाना यहाँ पे प्ले किया पिछली बार उन्होंने बोला था कि उसके बाद वो ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए कि मुझे और भी गाने बनाने चाहिए.
0: ये तो 2 साल पहले की बात कर रहे हो आप.
1: पिछले साल की बात है.
0: नहीं, पिछले साल हुआ
1: था. पिछले साल की बात है जब उन्होंने रिव्यू बनाई थी.
0: और उन्होंने एक न्यूजीलैंड ऑन एयर उनको उस फंडिंग मिली थी न्यूजीलैंड ऑन एयर
1: उसी गाने के लिए.
0: राइट, वाओ.
1: जिसके बारे में हमने पिछले साल एक्चुअली में बात की थी.
0: बिल्ली आँखियां.
1: या सो
0: लेकिन आज जो गाना भी हम प्ले करने वाले ये एक बहुत रोमांटिक इमोशनल गाना है. एंड मुझको याद है ये गाना उन्होंने गाड़ी में पूरा लिखा है, मतलब पूरा पूरा गाड़ी में ही बनाया है. सो ही वाज अपसेट वन टाइम एंड साउथ ऑकलैंड से नॉर्थ ऑकलैंड गाड़ी चला रहे थे और वो गाड़ी चलाते चलाते ये पूरा गाना उन्होंने बनाया था.
1: क्या गाड़ी में
0: हार्ट ब्रेक वाला गाना है.
1: हार्ट ब्रेक वाला. ओके, तभी गाड़ी कई बार ड्राइविंग करते करते आपको बहुत डीप थॉट्स आते हैं ना.
0: यस,
1: तो शायद इसीलिए.
0: सो योगी का ये गाना आपके लिए अभी ऑन. हम प्लीज़ यहाँ पे मैसेज कीजिए और हमें ज़रूर बताइए आपको ये गाना कैसा लगा. थोड़ा इमोशनल है, थोड़ा क्या बोलते हैं, इमोशनल एंड नॉट सैड बट या लिटिल बिट ऑन एन इंस्पायरिंग साइड. तो सुनिए इस गाने को और बताइए आपको कैसा लगा ये गाना.

0: मेरा फोन किधर है?
1: अभी बताया तो स्लाइड चप्पल कंफर्म है।
2: इस मदर्स डे क्या आप जानते हैं अपनी मम्मी का रियल रिएक्शन? From broken flower vases to लौकी की सब्जी experiments, guess कीजिए मम्मी का मूड और जीतिए ढेर सारा कैश। हम पेश करेंगे quirky scenarios on air और आपको बताना होगा मम्मी चिल करेगी या किल करेगी। Guess and enter the lucky draw to win big cash prizes. तो तैयार हो जाइए for the ultimate game show, Mom's Mood Swings on Hum. Brought to you by Indelible Homes, PFSL, Amma's Food and Malabar Gold and Diamonds.
3: Hum. Accurate traffic.
4: Kitchenmania.co.nz.
5: Fine spells this evening with a low of 17 tonight. Pretty heavy across the board leaving town at the moment. The southern motorway is slow, basically all the way out to Drury, just over an hour to get there. And on the southwestern, it's heavy south from Walmsley Road. On the northwestern, 40 minutes out to Massey, heavy to Taratatu. And the northern, it looks slow out to about Esmond Road. You're looking at 40 minutes to Constellation.
6: Order your new Kitchen Mania kitchen and be in the draw for an island holiday. T's and C's apply.
0: There's the mum who raised you, the grandma who spoiled you, and the auntie who knows all your secrets. Buying gifts for all of them? Stressful. Buying a Prezi card? Easy. The Mother's Day gift that always lands. Shop prezicard.co.nz.
7: Pacific Electrical Services presents Javed Ali, live in Auckland performing his blockbuster hits and a special tribute to the legendary Mohammed Rafi Saab in Rafi Aur Main, promoted by Star Alliance Entertainment at Victory Convention Center, 8 May, 7 p.m. onwards. Proudly supported by Key Contractors. For tickets, visit staralliancentertainment.com or call Edwin on 0211-382184.
8: Ek din tera ho jaunga.
9: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
10: Indelible Homes, your building expert.
11: बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
12: क्यों, क्या हुआ?
11: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
13: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800-564-424.
14: The Drive Show with Sandy and Rusby.
15: Hamesha saath dene wale dost.
16: Brought to you by Beds R Us, Manuko and Pukekohe. With Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from 449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
17: Power Drive at 5.
18: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
19: You're listening to Hump Link, Bollywood's biggest hits. आपके लिए Flyaway Frenzy का कोड देने का टाइम अभी आ गया है, तो आपको हम देंगे अभी कोड Flyaway Frenzy का. आपके पास बहुत कम टाइम है.
20: आज का कोड है तोतोलाओ, तोतोलो.
19: क्या?
20: TOTOLO. अब किसी की हमें कॉल चाहिए यहाँ, तोतोलो. देखो, अब हमें किसी की कॉल चाहिए यहाँ पे टू लेट अस नो कि ये क्या है. मेरे पास एक है आंसर इसका.
19: विजय ने हमको बताया है कि फिजियन में ट नहीं होता,
20: तो होता है तो लो
19: है. ये इसका मतलब क्या है ये आप हमें बताइए. टी ओ टी ओ एल ओ, ये है ना स्पेलिंग.
20: टी हमें तो बोले नहीं थी.
19: टी ओ एल ओ.
20: तो लो क्या होता है फिजियन में? अगर किसी को पता है कॉल करके बताओ.
19: प्लीज कॉल करके ये मत बताओ तोता लो का मतलब क्या है. हमको मालूम है तोता लो का मतलब क्या है, ठीक है ना. तोता लो क्या जानते हैं यार.
20: लेकिन तोतोलो क्या है ये आज आपको बताना है.
19: आगे आंसर देखते. हाय, आपका स्वागत है.
21: हाय
20: जी.
21: यू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ तोतोलो इज?
19: नहीं, इसने तो पूछा
20: ना. बताइए.
21: तोतोलो मींस हरी अप.
19: हरी अप, राइट.
20: मेरे पास स्पीड ही था इसका जो तुम्हें.
19: तोतोलो जाके कोड डालो.
20: सही है. क्या नाम है आपका?
21: क्रिस प्रसाद.
20: क्रिस प्रसाद, थैंक यू सो मच. नहीं, ये हमारे कृष्णील प्रसाद नहीं
4: है. नहीं नहीं, हाँ
20: क्रिस, ये अलग है.
4: क्रिस, थैंक यू सो मच. रोनल्ड का भी यहाँ पे मैसेज आया, फास्ट हरी अप फास्ट.
20: सो क्विक फास्ट स्पीडी बेसिकली.
4: सो आज तोतोलो जाके रुआ ऐप पे जाके आप डाल दो,
20: कोड एंटर करो. और अगर आपको लिंक चाहिए कहाँ पे जाके आपको कोड एंटर करना है सो दैट फीजी के लिए रिटर्न एयर टिकट आपके नाम हो सके, इस ड्रॉ में आपका नाम शामिल हो सके, तो एफ एफ लिख के भेजिए 5599 पर. आपको लिंक तोतोलो मिल जाएगा जैसे आप भेजेंगे.
4: हरी अप मिल जाएगा क्या,
20: मतलब जल्दी ऐसा मिल जाएगा ना, तो उसको इसमें से भी यूज कर सकते हैं ना.
4: गुड पॉइंट.
20: तो nice. लो
12: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
22: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ,
23: मैं लाऊं अपना ए गेम.
12: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: मेगा सिंह अजीज कौर की आवाज। You're listening to Humbling Bollywood's biggest hits. आपके लिए एक से गाने यहाँ पे हम लेकर आते हैं, लेकिन अभी मौका है आपके लिए, हम यहाँ पे एक गेम लेकर आए हैं जहाँ पे यू नीड टू गिव अस अ कॉल।
1: सिचुएशनशिप,
0: एक सिचुएशन आपके साथ शेयर करेंगे और आपको यहाँ पे कॉल करके बताना है ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे। आज की जो सिचुएशन है, मुझे लग रहा है इट्स वैलिड फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, बोथ,
2: दोनों के लिए 100%।
0: बॉयज के लिए मेरे को लग रहा है थोड़ा ज्यादा,
2: नहीं गर्ल्स के लिए भी,
0: होता
2: है क्या? गिव यू द रीजन।
0: सो बेसिकली इमेजिन यू हैव गॉन टू अ हेयर सैलून और यू हैव गॉन टू अ बार्बर और आपने हेयर कट करवाया आपका, और आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए लेकिन वो कुछ भलता ही हो गया है, कट
2: अलग ही कट हो गया जो आपकी ड्रीम डायरी में भी नहीं था।
0: ड्रीम डायरी होती है भाई साहब, हम तो मजबूरी में जाते हैं बाल काटने। बहुत ही
2: मतलब आपकी लिस्ट, ड्रीम डायरी छोड़ो, आपके स्क्रीनशॉट्स में नहीं था।
0: स्क्रीनशॉट्स भी रखते हो आप ऐसा दिखाते हो?
2: हेयर कट का हाँ, स्क्रीनशॉट होते हैं ना,
0: क्या आप दिखाते हो ऐसे बाल काटने में,
2: ऐसे वाले थोड़ा आइडिया देते हैं कि थोड़ा इस हिसाब से होने चाहिए।
0: अच्छा भाई साहब, तुम तो तुम्हारा तो बनता है फिर अपसेट होना। मैं तो जाके बैठ जाता हूँ और बोलता हूँ कि हाँ भाई कर दे तेरे हिसाब से, थोड़ा ट्रिम विम कर ले, कम कर ले।
2: लेकिन आप क्या करोगे, आपके हिसाब से नहीं है, डू यू कन्फ्रंट द पर्सन और डू यू लाइक जस्ट वॉक अवे, पे द बिल एंड जस्ट गो,
0: कि नेवर अगेन,
2: या मन में सोच लेते हो कि
0: आपका क्या सीन होता है,
2: किसी और जगह पे चले जाते हो बाद में?
0: हाँ, आपका क्या होता है?
2: So, अभी जहाँ पे मैं रिसेंट जाती हूँ, क्वाइट हैप्पी ओवर देयर।
0: हाँ, क्योंकि वो सुनती है ना रेडियो।
2: अरे नहीं, इसीलिए मैं वहाँ पे कंसिस्टेंटली जा रही हूँ ना।
0: अच्छा,
2: ओके, अदरवाइज मैं कंसिस्टेंट नहीं होती अगर मैं खुश नहीं हूँ तो।
0: अच्छा, ओके।
2: नहीं, अभी नहीं सुनती है, वो 702 सुनती थी। तो या तो जहाँ पे मैं पहले जाती थी, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं इतनी डिसअपॉइंट हुई थी कि मतलब रोना जैसे आ जाता है ना,
0: रोना आ जाता है सीधा।
2: ऑब्वियसली यार, बाल तुम्हारे गलत कट गए, मतलब अगर मैंने बोला है कि इतने से काटना और इतने से काट दिए।
0: हाँ, तुम्हारे सीन में ये होता है ना, तुम्हारा 6-6 महीने का कट होता है ना एक।
2: या एग्जैक्टली, तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ था और मैंने उसको बड़े अच्छे लेयर्स बोले थे, कोई फोटो दिखाई थी, लेकिन उसने पता नहीं माइंड में कौन सी फोटो बनाई थी, क्या ही काट दिया उसने। फिर दूसरे दिन ही मैं कहीं और गई थी उसको ठीक करवाने के लिए, क्योंकि बाकी सारे लेयर्स नीचे से कटवा दी और एकदम वो कर लिए थे, इक्वल कर लिए थे।
0: मुझे याद है ये रिसेंटली, मतलब 2-3 साल पहले की बात है शायद कुछ। और मतलब डबल खर्चा किया आपने, पहले एक तो खर्चा किया
2: करेक्ट करने के लिए बाद में,
0: और फिर बाद में वापस से खर्चा किया,
2: लेकिन उसको कुछ नहीं बोला मैंने, आई वाज लाइक ऑल गुड।
0: वाओ, इनसे भी जानते हैं ये क्या करते हैं। हाय
3: हाय, कैसे हो?
0: अरे मस्त, अब भी तो बात की भाई।
3: अरे हाँ, नहीं पर पूछना पड़ता है ना, अभी एक घंटे में कोई सिचुएशन बदल गई होगी क्योंकि सिचुएशनशिप पे बात कर रहे थे।
0: अरे क्या बात है, बताओ, बोलो बोलो।
3: या तो मेरे साथ ऐसा हुआ है, एंड मल्टीपल ओकेजन पे हुआ है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल, एक बार ऐसे हुआ था कि जैसे पीछे के साइड के हेयर होते हैं ना, तो बंदे ने पीछे साइड के लंबे रख दिए और आगे के काट दिए थे, तो पूरा ऐसे दिख रहा था जैसे कि कुछ पीछे ना टंगा हुआ है या कुछ ऐसे पीछे से उग रहा है।
0: वो एक स्टाइल होता था एक ऐसा के पीछे। हाँ, से लंबे तो, ऐसा?
3: हाँ, तो मैंने एक टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मैंने बोला यार चल कुछ होगा, इसने किया होगा, क्योंकि नॉर्मली मैं भी वही करता हूँ कि आगे वाला पूछता है क्या करना है, भाई भाई बस कर दे यार।
0: हाँ, वही तो क्या इतना दिमाग लगाने, स्क्रीनशॉट विनशॉट हो रहा है यहाँ पे।
3: हाँ, या इतना क्या ही कर लेंगे, शादी हो गई, बोला आप कौन देखने वाला है।
0: वही तो।
3: और दूसरी एक बार ऐसे हुआ था कि एक साइड बंदे ने ना ऐसे ज्यादा काट दिए थे, तो वो लिटरली पहले नहीं समझ में आया जब उसने हेयर कट किया, बट बाद में जब शावर लेने के बाद वो समझ में आ रहा था।
0: ये बहुत इरिटेटिंग होता है।
3: हाँ, ये बहुत इरिटेटिंग था। तो मैंने उसको बताया, फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं वहां से गुजर रहा था, मैं रुका था भाजू के शॉप में, तो उसने ऐसे नहीं बोला मुझे कि भाई आओ मैं एडजस्ट कर देता हूँ, बोलता कोई नहीं भाई अगली बार बढ़ जाएंगे ना तो एडजस्ट कर लेंगे। राइट, तो मैंने बोला चलो ठीक है ये भी
0: ठीक है, और गया अगली बार फिर से उधर ही।
3: हाँ, फिर उधर ही, और क्या है, क्या ही कर लेंगे। फिर उसके बाद अब एक सैलून में 5 बंदे काम कर रहे हैं,
0: तो दूसरे के पास
3: स्पेशल वो बंदे के पास मेरा टर्न आता तो नहीं जाता, फिर मैं बोलता नहीं मुझे वो नेक्स्ट वाले।
0: हाँ, ये भी बहुत ऑकवर्ड होता है ये। थैंक्स यार एफएस, थैंक्स फॉर शेयरिंग मैन, थैंक यू।
3: और एक बात और,
0: हाँ,
3: आप सभी एक्चुअली कुछ बोल रहे थे और मैं कॉल कट कर गया।
0: कोई बात नहीं, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे अकेले में,
3: ठीक है? ओके,
0: हाय, आपका स्वागत है।
4: हेलो,
0: हाय,
2: ये साय
4: गीत
0: बोलिए। गीत
2: या गीत बताइए। तो आपके साथ ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ है?
1: यस.
2: हाँ बताइए एक्सपीरियंस के बारे में.
0: इंग्लिश में बात करेंगे हिंदी में बात करेंगे?
1: इंग्लिश
0: ओनली. ओके,
2: उसको हिंदी समझ में आती है. बट
0: सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस?
1: सो आई आस्क फॉर लाइक अ सिंपल हेयर कट, टेक अ लिटिल बिट ऑफ द साइड एंड देन दे कट सो मच एंड आई स्टार्ट क्राइंग बिकॉज़ आई मिस माय प्रेशियस हेयर.
2: Yeah, I totally agree
0: with you. So you started crying at the salon only?
1: Yeah.
0: Oh wow, and then what? How did that person respond?
1: Oh, he gave me a lollipop and said you'll be fine.
2: How old are you, Gay?
0: Oh my god, lollipop. Abhi mujhe samajh mein aaya ki kuch salons mein lollipop kyun rakhte hain wo log.
2: Isliye rakhe hote hain.
0: Ki agar humne hug diya to ye le lollipop.
2: Sorry, how old are you?
1: 12.
0: अरे यार 12 साल में क्या ही फर्क पड़ रहा है यार. हम लोग को यू नो यू शुड बी वेरी फॉर्चुनेट.
2: सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है इसी यंग एज में.
0: हम लोग को मालूम है 12 साल की उम्र में हम लोग को टोपली कट देते थे. ऐसे हमारे सर पे टोपली रखते थे और साइड में से ऐसा पूरा निकाल लेते थे.
2: ओह
0: टोपली कट बोलते हैं उसको. तो फिर हम क्या है, हम भाई हमने बहुत एम्बैरेसमेंट सहन किया है. एनीवे
2: बड़े यंग एज होते हैं ना, अटैचमेंट अलग ही होती है हेयर के साथ.
0: हाँ हाँ वो तो है. बट ब्रो टेक केयर ऑफ यू, मतलब यू टेक केयर ऑफ योर हेयर या बाद में बहुत पछतावा होता है.
2: थैंक यू.
0: बाय. हाय.
5: हेलो.
0: सी टॉकिंग टू द एक्सपर्ट नाउ.
2: या ओह यस.
5: आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मैं तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं.
2: नहीं मुझे ना, लेकिन मेरे को तेरा से एक सवाल पूछना है. यू आर द परफेक्ट पर्सन.
0: हाँ बोलो.
2: मेरा सवाल ये है, ऐसा क्यों होता है कि जब हम बोलते हैं कि इतने से काटना और वो इतने सारे काट देते हैं बाल?
5: बेसिकली अगर डिपेंड करता है, अगर उन्होंने ड्राई काटे हैं तो श्रिंक नहीं होने चाहिए. बट अगर इफ इट इज कट आफ्टर वॉशिंग और वेट है तो इट इज नॉर्मल फॉर द हेयर टू श्रिंक अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा.
0: आपके गीले के बाल काटे थे उसने शायद से,
5: क्योंकि ये स्ट्रेच होते हैं गीले बाल. जब आप वॉश करके काटते हो तो बाल थोड़े स्ट्रेच होते हैं एंड देन कटने के बाद श्रिंक हो जाते हैं बाल ना ड्राई होने के बाद.
2: हेयर कट के ऊपर आपका क्या टेक है?
0: नहीं नहीं नहीं, मेरे को ये पूछना है
5: हेयर कट के ऊपर. हाँ बोल.
0: मेरे को ये पूछना है कि टेल मी अबाउट योर लाइक वियर्ड कस्टमर एक्सपीरियंस. मतलब ना लाइक आपने बहुत सही ऐसे काटा है आपके साइड से, लेकिन आपको मालूम है स्टार्ट करने से पहले कि ये भाई रोने वाला है या रोने वाली है. मैं कुछ
5: हाँ,
0: भी
5: शक्ल से पता चलता है. हाँ, हाँ, हाँ. सारे वो बोलते हैं ना, जब बाल तो किसी कौन है वो टकला कौन है अपने मूवी में.
0: ऐसे मत बोलो यार, ये बहुत ऐसा बुरा लगता है यार. ऐसा टकला अकला डायरेक्ट
5: बाल अमरीश पुरी वाले होते हैं और वो सपना तो श्रीदेवी वाले लेके आते ना फोटो.
0: बाल अमरीश पुरी वाले
5: तो दिखाते है की हमें ऐसे श्रीदेवी वाले जो विग वाले फोटो लेके आते बोलते ऐसे काट दो. जब आपके सर पे बाल है ही नहीं तो हम कहाँ से काटेंगे यार.
0: इसलिए आपको पता चला मैं क्यों.
5: It happens with me so many times. ऐसे हुआ है कि लोग पिक्चर्स लेके आते हैं एंड बोलते कि हमें ऐसी हेयर स्टाइल करके दो. बट भाई तुम्हारे बाल उसके 10% भी नहीं है तो हम एग्जैक्ट वैसे हेयर कट कैसे देंगे तुम्हें ना.
2: क्रिस्बे तुम कभी गए हो?
0: नहीं मैं इसलिए तो कभी लेके नहीं जाता हूँ ना फोटो. मेरे को मालूम है अपनी औकात मालूम है अपने.
2: okay,
0: मैं बोलता हूँ भाई जितने दिख रहे उतने काट, जितना जहाँ नहीं दिख रहे है वो कम दिखा
2: वो थोड़े दे नहीं दे.
5: वो बात है. और तुझे अगर लाइक आई सेड नो, इफ यू आर लाइक अमरीश पुरी एंड यू वांट टू लुक लाइक कमल हसन, ऐसे नहीं हो सकता ना.
2: अमरीश पुरी और कमल हसन अमरीश पुरी से ऋतिक रोशन.
0: ये मेरे को देख कर काई को लेकिन ये सब बोल रहे हो यार.
5: मैं एग्जांपल दे रही हूँ लेकिन सैंडी आई फील फॉर यू बिकॉज मैं मेरे साथ मैं बीइंग अ हेयर ड्रेसर मेरे साथ ऐसे बहुत बार न्यूजीलैंड में हुआ है कि मैं हेयर कट के लिए गई हूँ तो उन्होंने या तो मैं उनको बोली ऐसे नहीं काटो ऐसे काटो तो बोलते मैं हेयर ड्रेसर की तू है.
2: हाँ ना
5: मतलब कि उनको ऑकवर्ड लगता है बोलने के लिए कि मैं हेयर ड्रेसर हूँ, आई एम अ सीनियर स्टाइलिस्ट. बट बोलने के लिए ऑकवर्ड लगता है तो मैं चुपचाप बैठ जाती हूँ. फिर मेरे बाल की जो वाट लगती है घर आके फिर मैं खुद ही बैठ के काटने
2: तो तभी तेराज ने सोचा मैं अब खुद से ही सब कुछ करूंगी.
0: तो आप पहले खुद से
5: नहीं, टू बी ऑनेस्ट मैंने पिछले 10 साल से बाल नहीं कटवाए न्यूजीलैंड में. मैं खुद ही काटती हूँ, ट्रिम करती हूँ और जब इंडिया जाती हूँ तो कटवा के आती हूँ. फिर
0: वाओ. लेकिन अगर कोई आपका आपने किसी के बाल काटे और वो खुश नहीं रहे उनके हेयर कट से, तो आप फिर क्या करते हो, मतलब व्हाट डू यू, हाउ डू यू लाइक गेट देम टू बी लाइक के नहीं.
5: We try to explain to them, dekh bhai, we show them the difference and explain to them the condition of their hair. Agar fir bhi nahi samajhte to fir voucher dete hain ya fir kuch, you know, deke fir bol dete ki, you know, next time we'll try better. Aur kya kar sakte na?
2: Makes sense.
0: Yeah. Hey, buddy, yeah. Thanks so much for sharing.
2: Thank you, Senaz, for calling.
5: Thank you. Bye.
0: Thanks, bye.

0: The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: हमेशा साथ देने वाले दोस्त.
2: Brought to you by Beds R Us, Manuko and Pukekohe. With Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from 449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
0: May month is NZ Music Month. Ye sirf music nahi, ye hai emotion, passion aur thoda sa desi swag. Presenting Back Your Backyard Beats. Jahan har gali, har corner se nikalta hai ek naya superstar. Aaj ka local artist, kal ka global sensation. To kyun na aaj se hi unka saath de? Tune in karo aur apne Backyard Beats ko do full support. Back Your Backyard Beats. Brought to you by PFSL. Providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. And Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love.
3: Hum, accurate traffic.
4: Trust the experts at Alloy Wheel Repair.
5: Fine spells across Auckland, down to a low of 17 degrees tonight. Out of the city on the southern motorway, it's about a 45-minute drive to get to Manukau. Traffic queuing to Highbrook Drive, and it's also slow through Papakura. The southwestern is heavy south from Massey Road, 40 minutes to the airport. The northwestern, pretty slow Bond Street to Te Atatū, and the northern congested out to Esmond Road.
4: Curbed your wheel? Restore it to factory finish today. Search Alloy Wheel Repair.
6: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है. जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है. हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है. We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
7: Beautiful houseplant se lekar har wo cheez jo maa ko ghar aur garden ke liye pasand hai. Sab milega Mitre & Mega Westgate aur Henderson mein. Everything to make mom smile except the homemade card. But you could let mom decide with a Mitre & gift card at Mitre & Mega Westgate & Henderson.
8: Introducing Pizza Hut's new Tikka and Paneer range. Rich tikka base, creamy paneer, bold flavour. Get the first taste from $10.99 pickup at Pizza Hut. Limited time only, T's and C's apply.
9: Reliance Ventilation System.
10: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
9: Moisture और ventilation का problem लगता है.
10: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
9: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
11: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
12: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
13: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try. Aapke nazdeeki store mein uplabdh hai. Swad bhi, sehat bhi.
14: It's the final days of Big Save's massive whiteware washout. Do you need a new washing machine, dryer, fridge or dishwasher? Then come and see us today. We've got New Zealand's best value whiteware deals, like get a Panasonic 6kg washing machine, only $5.49. Or a Samsung 236-litre fridge, now only $7.99. Plus, we have stock. Take them home today, only at Big Save.
0: The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: Hamesha saath dene wale dost.
2: Brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe. With Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from 449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
3: Power Drive at 5.
0: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
15: You're listening to The Drive Show with Sandy and Rusby. Power Drive at 5 आपके लिए जारी है और अभी आपको हम मौका दे रहे हैं
16: यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए टू बी इन द ड्रॉ टू विन डबल पास फॉर राहत फतेह अली खान शो.
15: जी राहत फतेह अली खान यहाँ पे आने वाले हैं जुलाई में ना कभी
16: 26 जुलाई
15: और उसके डबल पास अगर आपको जीतने हैं तो बहुत सिंपल है, हम आपको उनका एक गाना सुनाएंगे, थोड़ा सा बिट सुनाएंगे एंड आपको उसको आगे कंप्लीट करना है और ये आपको मैसेज करना है यहाँ पे RFK कीवर्ड के साथ आपको मैसेज भेजना है।
16: RFK स्पेस इस गाने के आगे क्या है, अगली लाइन क्या है, ये आपको लिख के भेजनी है। तो सुनाओ थोड़ा सा रुजबे,
15: थोड़ा सा सुनाओ मैं।
16: दिल खो गया, हो गया, किसी का।
15: इसके आगे क्या है बोलो?
16: राहत ने क्या गाया इसके आगे? यू मीन ओके
15: अरे बट उनका ही गाना है ना ये, राहत फतेह अली खान का। यार आप ना यार ये क्या यार
16: रुजबे प्लीज सर
15: सैंडी यार सीरियसली मैन अभी सुनो पूरा गाना सुनो फिर इतना टाइम नहीं मेरे पास पूरा गाना सुनाने का लेकिन अभी
16: लेकिन तुमने क्या किया ना
15: अभी जो लगा है हुक वही प्ले होगा ना यार एनीवे तो राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल ने गाने को गाया है।
16: ये म्यूजिक सुनिए, इस म्यूजिक में राहत फतेह अली खान कहाँ से सिंगिंग शुरू करते हैं वो आप लिख के भेजिए।
15: हाँ ये तो अभी स्टार्ट है सब गाने का।
16: तो राहत फतेह अली खान की लाइन आपको लिख के भेजनी है 5599।
15: उन्होंने कौन से लाइन से शुरू किया गाना
16: RFK कीवर्ड के साथ? This is the question.
15: Wow, very nice, Sandy. Very good improvisation.
16: Thank you.
15: But ये basically श्रेया घोषाल अब तक गाएगी और फिर उसके बाद राहत फतेह अली खान बहुत सॉलिड स्टार्ट करेंगे।
16: बस बस करो
15: ठीक है ना?
17: दिल छू रहा है, खींचे मुझे कोई डोर तेरी हो।
15: अच्छा
16: अभी राहत फतेह अली खान ने इसके बाद क्या बोला है आपको बताना है 5599 पर।
15: नेक्स्ट स्टैंजा चालू किया है
16: या जब भी शुरू किया है क्या शुरू किया है
15: चलो ठीक है बताइए आप हमें यहाँ पे फटाफट।

0: Simply easy.
1: ओकलेन तैयार हो जाओ एक सूफी रात के लिए. Once upon a time with the legendary Rahat Fateh Ali Khan live in concert along with Shahzaman Ali Khan Saturday 25th July at the Trust Arena. Book your tickets on drytickets.co.nz. For sponsorships, call Karam Hundal on 027-514-6477.
2: Macca's weekly deals are back. That means more of your favourites for less every week. Jump on the Macca's app and check out this week's offer. Macca's weekly deals, only on the app. T's and C's apply. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Farmers has the best gifts for mum. Surprise her with a new fragrance or beauty gift. Keep her cosy with a new robe and sleepwear. Treat her with some new styling tools or a gorgeous diffuser or candle. Celebrate mum this Mother's Day. Farmers, your department store.
4: Pacific Electrical Services presents Javed Ali live in Auckland performing his blockbuster hits and a special tribute to the legendary Mohammed Rafi Saab in Rafi Aur Main, promoted by Star Alliance Entertainment at Victory Convention Center, 8th May, 7 PM onwards. Proudly supported by Key Contractors. For tickets, visit staralliance.com or call Edwin on 0211 382184.
5: Ek din tera ho jaunga.
6: Scammers want you to go fast, because when you rush, you can make mistakes. Like signing up for work email with a, love you. Jumping into a stranger's car, thinking it's your Uber.
7: Oh, wrong one.
6: Choosing a tattoo.
8: I think it's a dragon.
6: Or transferring funds to a new bank account you've just received in a text. Mm-hmm. Security features in the BNZ app help to slow you down when scammers want you to speed up. Bank of New Zealand. Let's find a way.
9: Time check. Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
10: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 6. Emergency responders are urged to coordinate and practice in case another ferry incident arises. An investigation into the Kaitaki's Cook Strait stranding in 2023 found an ageing part ruptured and engines could not be restarted. David Clark from the Transport Accident Investigation Commission believes the response could have been better.
11: Responders did not have a consistent picture of events or roles, and coordination was not as effective as it could have been.
10: The future risk of extreme weather has been laid bare across 10 areas. The Climate Change Commission report highlights water infrastructure and biodiversity as needing investment now. Chief Executive Joe Hendy says horticulture and agriculture are on a watch list.
12: They're not as high priority or as high at risk right now, but they're going to get there really quickly.
10: Meanwhile, Met Service is warning of severe gales across parts of the Canterbury High Country and southeast Marlborough tomorrow. Spokesperson Lewis Ferris says it doesn't mean heavy rain is over.
13: That west coast area is probably going to be extended. We are seeing 250 to maybe even 400 millimetres of rain in the north.
10: And an abatement notice issued to Christchurch City Council over the Bromley stench has been lifted. Environment Canterbury says the council has taken meaningful steps to reduce odour. To rugby with Shift 4, coach Clark Laidlaw is confident Hurricanes halfback Cam Roygaard will be back for the Super Rugby playoffs. Roygaard will miss up to 4 weeks with a calf injury. Clark Laidlaw says he trusts his staff and the player to do the right things.
14: We've got outstanding physios and Cam's a good rehabber. As I say, it's not a train wreck with his calf, so 3 or 4 weeks feels, you know, doable.
10: And round 5 of the National Basketball League begins in just on an hour's time in New Plymouth when the Taranaki Airs host the Southland Sharks.
9: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
15: Hum par shok suchnaye aap tak late hai. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
16: Suchit kiya jata hai. Tawua Fiji ke swargya, Mun Sami ke putra, Auckland ke Sharda Mani ke pati, Runil Krishna Pujari aur Melbourne ke Shalini Krishna ke pita, Manirewa ke Shri Krishna of Heri ki mrityu ho gai. Antim sanskar. फ्राइडे को 1 बजे मैनखाव मेमोरियल गार्डन्स में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप कॉल कर सकते हैं ऑन 0210-292-6578 पर। सूचित किया जाता है, तावुआ फिजी के स्वर्गीय मुन सामी के पुत्र, ऑकलैंड की शरदा मणि के पति, रोनेल कृष्णा पुजारी और मेलबर्न की शालिनी कृष्णा के पिता मैनिरीवा के श्री कृष्णा उर्फ हेरी की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार फ्राइडे को एक बजे मैनकाउ मेमोरियल गार्डन्स में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप कॉल कर सकते हैं ऑन 0210-292-6578 पर। सूचित किया जाता है, सनीवेल खीस ने लता सोमेश्वर तथा स्वर्गीय डॉक्टर नीरज सोमेश्वर के पुत्र ऋषि सोमेश्वर यादव की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार सैटरडे को 11 बजे एंड्स फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइन क्रीमेशंस में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप कॉल कर सकते हैं ऑन 0210-817-1497 पर। सूचित किया जाता है, सनीवेल की स्नेह लता सोमेश्वर तथा स्वर्गीय डॉक्टर नीरज सोमेश्वर के पुत्र ऋषि सोमेश्वर यादव की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार शनिवार को 11 बजे एंड्स फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइन क्रीमेशंस में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए कॉल कीजिए ऑन 0210-817-1497 पर। सूचित किया जाता है, बा फीजी के भूतपूर्व निवासी स्वर्गीय गोपाल की पत्नी ऑकलैंड के मास्टर अशोक, विनेश कुमार, शलेशनी देवी, अंजिला देवी तथा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया की विजयंती देवी की मां ग्लेंडिन ऑकलैंड के गंगा माता की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार रविवार को 1 बजे एंड्स फ्यूनरल होम में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप कॉल कर सकते हैं ऑन 0211-795459 पर। सूचित किया जाता है, बा फीजी के भूतपूर्व निवासी स्वर्गीय गोपाल की पत्नी ऑकलैंड की मास्टर अशोक, विनेश कुमार, शलेशनी देवी, अंजला देवी तथा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया की विजयंती देवी की मां ग्लेंडिन ऑकलैंड की गंगा माता की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार रविवार को 1 बजे एंड्स फ्यूनरल होम में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप कॉल कर सकते हैं ऑन 0211-795459 पर। सूचित किया जाता है, लंबासा फीजी के स्वर्गीय देवी प्रसाद की पत्नी ऑकलैंड के डोनर वर्क्स के कर्मचारी हेमंत कुमार और रवीन कुमार उफ बॉबी, सिडनी ऑस्ट्रेलिया के नरेन कुमार और कुसुम देवी तथा फीजी की अनीता देवी और सविता देवी की मां, लंबासा फीजी के भूतपूर्व निवासी ऑकलैंड न्यूजीलैंड की चित्रवती की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार की सूचना बाद में दी जाएगी। सूचित किया जाता है, लंबासा फीजी के स्वर्गीय देवी प्रसाद की पत्नी ऑकलैंड के डोनर वर्क्स के कर्मचारी हेमंत कुमार और रवीन कुमार उफ बॉबी, ऑस्ट्रेलिया के नरेन कुमार और कुसुम देवी तथा फीजी के अनीता देवी और सविता देवी की मां, लंबासा फीजी के भूतपूर्व निवासी ऑकलैंड की चित्रवती की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार की सूचना बाद में दी जाएगी।
0: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
9: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
7: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
9: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स The Drive Show with Sandy and Rizvi.
8: हमेशा साथ देने वाले दोस्त.
17: Brought to you by Beds R Us, Manuko and Pukekohe. With Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from 449 and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
18: Let's go! 3, 2, 1.
9: Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rizvi.
19: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
20: 6 बज चुके हैं, ट्रेंड मेकर्स में आपका स्वागत है। आज ट्रेंड मेकर्स में एक स्पेशल शो आपके लिए हमने क्यूरेट किया है।
16: दिस इज अबाउट जावेद अली। जावेद अली के साथ हमने इंटरव्यू किया कल, कुछ बातें की, उसी के कुछ बिट्स हम यहाँ पे प्ले कर रहे हैं अलॉन्ग विद हिज सॉन्ग्स। तो शुरुआत करते हैं, जावेद अली ने जो एक्सपीरियंस बताया, बिकॉज वो फीजी से यहाँ पे आए हैं, जो फीजी का एक्सपीरियंस उन्होंने हमारे साथ शेयर किया, क्या वाज इट परफॉर्मिंग ओवर देयर।
20: एंड जावेद अली का शो यहाँ पे हो रहा है कल शाम को एट विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर। बहुत ही कम टिकट्स बाकी है अभी भी, अगर आपको लेनी है तो फटाफट ले लीजिए एंड आई एम श्योर यू विल हैव अ फैबुलस टाइम। उन्होंने अपना फीजी का एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया, 3 hours 20 minutes के लिए उन्होंने परफॉर्म किया। एंड लिसन टू हिम ऑन हाउ ही फेल्ट द क्राउड crowd in Fiji was, how did they enjoy, सुनिए इसके बारे में and enjoy कीजिए आज का ये show जहाँ पे आप जावेद अली की आवाज़ और जावेद अली की बातें सुनने वाले हैं along with his lovely songs.
1: मैंने मुझे ऐसा लगा जैसे हम इंडिया में हम concerts करते हैं college के तो youngsters के साथ में हमारे concerts होते हैं तो youngsters सारे गाने जानते हैं हमारे तो word to word गाते हैं कल wow. मुझे फिजी में ऐसा महसूस
20: हुआ
16: wow.
1: सीरियसली मैं बोल रहा हूँ
16: अभी मैं बोलूँगी ऑकलैंड वालों एक्सपेक्टेशंस बढ़ चुकी है
20: yeah, we'll have to
1: नहीं मैं हाइप क्रिएट नहीं कर रहा हूँ इट्स ट्रू
20: नो वी कंप्लीटली एग्री विद इट बिकॉज वी हैव सीन दैट वी हैव नोटिस दैट एज वेल कि जो उनके भी नॉलेज ऑफ बॉलीवुड नॉलेज ऑफ सॉन्ग्स जो है उनके पास एंड द वे दे आर कनेक्टेड आई थिंक दैट्स नेक्स्ट लेवल
16: दे आर कनेक्टेड टू रूट्स वेरी वेल
1: मैं आया और तो मुझ बिकॉज हमारे शो का जो टाइटल है वो रफ़ी और मैं
16: जी
1: ये टाइटल है तो जब ये तो आपको थोड़ा बैलेंस करना होता है मेरे भी मेरे जो गाने हैं वो भी आपको परफॉर्म करने हैं ऑफ कोर्स अगर रफ़ी साहब का एक आप ये टाइटल लेके आए तो उसको भी जस्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है बट मुझे लगा कि शायद उनको मैं गा रहा हूँ सौदेबाजी तो सौदेबाजी गा रहे हैं मेरे साथ में कुन फैकुन गा रहा हूँ तो कुन फैकुन गा रहे हैं मेरे साथ में एक दिन में गा रहा हूँ तो एक दिन मेरे साथ में गा रहे हैं लोग नगाड़ा नगाड़ा गा रहा हूँ तो नगाड़ा मेरे साथ में गा रहे हैं जश्न बहारा तो जश्न बहारा वो गा रहे हैं देन ऑफकोर्स रफ़ी साहब के गाने और वो गाने सब लोग फरमाइश कर रहे थे कि जो गाने यूट्यूब पर बहुत फेमस हैं मेरे गाए हुए रफ़ी साहब के जो गाने हैं तो बहुत मज़ा आया और ऐसी जगह परफॉर्म करने का ना ऑफकोर्स मैं पहली बार यहाँ पे जैसे फिजी में पहली बार गया उसी तरह मैं न्यूजीलैंड ऑकलैंड भी पहली बार आ रहा हूँ काफ़ी सालों से मेरी तमन्ना थी कि मैं यहाँ पे आऊँ परफॉर्म करूँ और अपने फैंस को मिलूँ तो ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है मेरे लिए भी और हमारे फैंस के लिए भी दोनों को एक दूसरे को मिलने का मौका मिलेगा तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ये कॉन्सर्ट आप मिस ना करें क्योंकि सभी के लिए कुछ ना कुछ है और काफ़ी वैरायटी हमने रखी है अपने शो में कॉन्सर्ट में कि उसमें हमने रोमांस भी रखा है रोमांटिक गाने ऑफ कोर्स मेरे
16: Because it's your signature style, right? अभी signature style में हम सूफी बोले रोमांटिक बोले
1: एंड ऑफ कोर्स कुछ अप टेम्पो सॉन्ग्स
16: भी नगाड़ा
1: यस नगाड़ा कजरारे बहुत सारे गाने
21: हेलो ऑकलैंड मैं हूं आपका अपना जावेद अली दिस इज माय फर्स्ट टाइम टू ऑकलैंड और मैं आ रहा हूं 8 मई को विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में जहां हम सब याद करेंगे रफी साहब के गोल्डन सॉन्ग्स

0: आपको ये पूछना था, हाउ डिड यू कम अप विद दिस कॉन्सेप्ट कि रफी और मैं, लाइक ये कॉन्सेप्ट कैसे आपके ज़हन में आया?
1: नहीं, बिकॉज़ है ना, लोग मुझे रफ़ी साहब के उसमें बहुत पसंद, लाइक करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो लोगों का जो टेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हमने है ना अपना ये टाइटल रखा, क्योंकि एक सेगमेंट तो रखना ही था रफ़ी साहब का. तो ये टाइटल बड़ा अच्छा लगा हमें, मतलब बहुत अट्रैक्टिव लगा, रफ़ी और मैं. तो मतलब वो लोगों को भी बहुत पसंद आया. पहले हमने रखने से पहले काफ़ी लोगों से पूछा भी था वो, बट है ना लोग बहुत लाइक करते हैं वो, और कनेक्ट करते हैं लोग कहीं ना कहीं. तो बहुत बहुत मज़ा आने वाला है.
0: हमें मालूम है कि अभी बहुत ही कम टिकट्स बाकी है, सो आई थिंक बाई द टाइम पीपल विल लिसन टू दिस, हु नोज़, मे बी दे विल नॉट फाइंड मेनी टिकट्स.
1: मुझे कल कॉम्प्लीमेंट मिला फीजी में कि आप यूजुअली क्या होता है टूवर्ड्स एंड शो में ना लोग जाना शुरू हो जाते हैं, बट मैंने 3 hours 15-20 minutes परफॉर्म किया, लोग उसके बाद में भी सोच रहे थे कुछ और परफॉर्म करेंगे.
2: वाओ.
1: तो मतलब कोई हिला ही नहीं.
0: बिकॉज आई थिंक,
1: एंड सीरियसली, मैं यहाँ बैठा हूँ इसलिए नहीं बात बोल रहा हूँ, बट सीरियसली लोग हिले नहीं. एंड क्राउड का जो इन्वॉल्वमेंट था मेरे गानों के साथ, मेरे म्यूजिक के साथ में, इतना ज़बरदस्त था. मुझे भी बहुत मज़ा आया था. मुझे पता ही नहीं चला कि मैं 3 hours 15 minutes कब हो गए, कुछ समझ ही नहीं आया. नहीं, हमको पता चला ओ इतना परफॉर्म किया. ओ
0: वाओ.

0: Trend Makers.
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800-564-424.
4: वेलकम टू कबाब्स किचन. आई एम शेफ एलेक्स और ये है मेरी गेस्ट सेरा.
5: क्या बनाते हैं इन कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स?
4: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स. हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन.
5: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग. स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो ज्यूसी.
4: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट. अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स.
6: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव.
7: If you're serious about solar energy, switch on to Trade Depot. They stock the world's leading solar panels, inverters and batteries. Trade Depot specializes in powerful full house solar systems ranging from $10,000 to $20,000. Shop solar at Trade Depot for high quality solar systems with installation available nationwide. TradeDepot.co.nz.
8: बिग बॉस देखा है ना? अब घर से बाहर निकलो और विनर को लाइव देखो. मुन्नावर फारूकी आ रहे हैं ऑकलैंड विद हिज स्टैंड अप कॉमेडी शो धंदो.
9: छोटा तो मेरे को नहीं समझ में आता, तो मैंने अपने चाचा से पूछा कुबुले कुबुले कुबुले क्यों होता है ऐसा तीन बार. तो मेरा चाचा बोलता है औरतों को एक बार में समझ में कहा आता है.
8: सैटरडे 23rd में ब्रूस मेसन सेंटर ताकापुना, 7 PM onwards. बुक योर टिकट्स नाउ ऑन ticketmaster.co.nz.
10: कुकिंग का असली फ्लेवर चाहिए? स्विच टू कशिश फूड्स जिंजर गार्लिक पेस्ट, फ्रेशली ग्राउंड इन न्यूजीलैंड, बिना एडेड केमिकल्स, बिना प्रेजर्वेटिव्स एंड विनेगर फ्री. सिर्फ क्लीन नेचुरल टेस्ट, बिल्कुल घर जैसा. जिंजर हो, गार्लिक हो या परफेक्ट कॉम्बो, हर डिश बनेगी फुल ऑफ फ्लेवर. और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 grams जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री. लिमिटेड टाइम ऑफर 31st May तक. कशिश फूड्स, ईट बेटर लिव बेटर.
0: The Drive Show with Sandy and Rusby.
11: हमेशा साथ देने वाले दोस्त.
12: Brought to you by Beds R Us, Manuko and Pukekohe. With Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from 449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
13: So I want to ask you one thing. अब आपने इनिशियल इयर्स में, मतलब जो हमने थोड़ा बहुत रिसर्च किया है, आपने इनिशियल इयर्स में काफी स्ट्रगल किया. आपको अराउंड 7 years लगे आपके पहले ब्रेक.
14: गाने मिल रहे थे लेकिन ना क्या होता है ना, एक क्लिक चाहिए होता है.
15: ये एक यहां से अब
14: एक स्टार्ट चाहिए होता है कि ये यहां से कि एक सिग्नेचर गाना चाहिए होता है आपको कि भाई ये जावेद अली का ये गाना इतना बड़ा हिट है. तो वो 2007 में मुझे मिला. हाँ, तो वो गाना था एक दिन तेरी राहों में बाहों में पनाहों में. हालांकि फिल्म उतना चली नहीं थी,
13: गाना बहुत ज्यादा चला,
14: लेकिन एक ही गाना चला. हाँ, था और भी गाने थे बहुत सारे, लेकिन ये गाने को लोगों ने, यार ये कौन है, ये कौन है, जावेद अली कौन आया, तो ऐसा हो गया था. लेकिन उसके बाद में लोगों तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है. और एक बार ऐसा होता है कि आप कहीं परफॉर्म करते हो, जब आप आपको परफॉर्मेंस देखते हैं ऑडियंस, तो फिर वो माउथ पब्लिसिटी होती है. अरे वो जावेद अली का परफॉर्मेंस देखा आपने, कैसा. तो वो एक मेरी लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ा है. मेरा जब परफॉर्मेंस टचवुड लोग देखते हैं तो वो रिलेट करते हैं उन चीज़ों से और कहते हैं कि माय गॉड क्या बात है.
13: आपने कभी लाइक व्हाट आई वाज ट्राइंग टू गेट टू इज कि आपने कभी ऐसे कोई कॉन्सर्ट्स अटेंड किए एंड व्हाट व्हिच वाज योर फेवरेट कॉन्सर्ट लाइक
15: और कोई इंस्पिरेशन अगर आपका कुछ ऐसे रहा है कि वन डे लाइक कब आपने वो सपना देखना शुरू किया कि यू नो एक दिन मैं भी एक ऐसा कॉन्सर्ट करूंगा.
14: अच्छा, सी आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ आई वाज अ ह्यूज फैन ऑफ गुलाम अली खान साहब.
15: अरे वाह,
14: फ्रॉम पाकिस्तान. और मेरे गुरुजी भी हैं.
13: आपने ट्रेन किया है ना उनके अंडर?
14: हाँ मैं उनके साथ रहा हूँ.
13: अच्छा.
14: ऑफ कोर्स मैं ऐसा नहीं, मुझे वक्त तो उनको भी नहीं मिला, उनको भी था नहीं कि ना मेरे साथ, मैं उनके साथ रहता, लेकिन जितना भी रहा मैं बहुत ही इंस्पायर हुआ. और जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था कि मैं ओ माय गॉड कैसा वो कितना कमाल परफॉर्म करते हैं, कभी मैं भी ऐसा करूँगा. तो ये छोटा छोटा चीज़ें थी. फिर प्लस बहुत सारे लोगों को मैं देखता था परफॉर्म करते हुए, तो मैं सोचता था कि ऐसा मुझे भी करना, मेरे भी इतने फ़ैन फॉलोइंग हो, लोग इतना प्यार करें. तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शंस बन जाते हैं, कोई ना कोई एक कहानी रहती है कि आप इमेजिन करने लगते हो कि कभी फ्यूचर में ऐसा हो कि मेरे साथ में भी लोग, मेरे पीछे भी इतने लोग, मेरा भी इतना बॉडी ऑफ वर्क हो कि ना लोग मेरे पीछे इतना भागें और इतना मुझे प्यार करें.
13: या एंड वो हो गया है अभी आज साक्षात, लाइक यू नो
15: टच वुड, ड्रीम कम ट्रू एक्चुअली में.
14: मैनिफेस्ट जो भी करते हैं आप ना, वो कहीं ना कहीं लग जाता है ना.
13: आई थिंक जस्ट नॉट मैनिफेस्ट बट ऑल्सो लाइक एफर्ट टूवर्ड्स दैट मैनिफेस्टेशन,
14: मेरा दोनों है.
13: हाँ,
14: मेरा एफर्ट्स भी है, मेरा हार्डवर्क भी है, और दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है.

0: काफी ऐसे यंग होते हैं जो गाना बनाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि यू नो कैसे आगे बढ़ा जाए. तो कोई अगर ऐसे फेज में है जहाँ पे दे हैव नो आइडिया एंड स्पेशली लिविंग इन ओवरसीज, इट्स वेरी डिफिकल्ट, सो उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे, या फिर अपने यंगर सेल्फ को आप क्या सलाह देना चाहोगे जो जिसने अभी शुरू किया था ये जर्नी को?
1: क्योंकि आजकल तो डिजिटल ज़माना है, तो काफ़ी चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, लोगों तक पहुंच सकते हैं, आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, अपने अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, अपना कंटेंट क्रिएट करके आप वो कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें अभी आजकल आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, आप अकेले एक कोने में बैठ के कहीं भी पहुँच सकते हैं. तो बड़ा आपका कॉन्टेंट में दम होना चाहिए
2: और एल्गोरिदम में,
1: है ना?
0: एल्गोरिदम अभी स्केरी भी हो चुका है.
2: बट मैं उसके ऊपर ही मैं पूछना चाह रहा हूँ, अभी आजकल इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट्स का जमाना है जहाँ पे यू नो छोटे छोटे बिट्स एंड बेसिकली हुक्स और वो सब
1: 15 seconds 20 seconds
0: ये सब. या
2: हाउ डू यू फील अबाउट दैट, आपको क्या लगता है कि ये सस्टेनेबल है म्यूजिक के लिए?
1: नहीं, लेकिन लोगों के पास टाइम नहीं है, लोगों के पास और इतना बॉडी ऑफ वर्क इतना है ना, और इतना सारा म्यूजिक है, तो लोग ना इमीडिएट, लोगों के पास पेशेंस नहीं है, इमीडिएटली क्लिक करते हैं कि वो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है. कुछ अच्छा लगेगा तभी उनका यू नो रुकेंगे वो कि ये क्या है, कुछ
0: अटेंशन स्पैन
1: तो वो. हाँ, तो उस वजह से ये जो रील्स और सोशल मीडिया पे जो, पर फिर आपके कंटेंट में दम होना चाहिए फिर, ताकि आप होल्ड कर सकें उस चीज़ को ना.
0: गानों को लेके आपको क्या लगता है कि आजकल जैसे छोटे छोटे गाने आते हैं 2 minutes के 3 minutes के 4 minutes के,
1: यही वजह है लोगों के पास पेशेंस नहीं है. लोगों को 5 minute के गाने नहीं सुनने, आपको 2-3 stanzas नहीं सुनने लोगों को. कभी कभी किसी गाने में सिर्फ एक वर्स में ही पूरा गाना 1.5 minute में ख़त्म हो जाता है. कभी एक दो वर्स होते हैं गाने के, तो डिपेंड करता है कि पर मुझे लगता है 2-2.5 minute से ज़्यादा गाना नहीं होना चाहिए, बिकॉज क्या होता है कि लोगों को इमीडिएटली दूसरा क्लिक करना होता है. तो अगर वो जम गया उस पे, देन आपकी जीत हो गई.
0: आपको पर्सनली क्या टेक है इसके बारे में कि गाने बड़े बनाने चाहिए या फिर कैसे?
1: नहीं, मुझे लगता है कि गानों का जो अगर है ना, हम शॉर्ट गाने बनाने में या छोटे गाने बनाने में ना, वो क्या होता है ना, वो उसका जो असर है ना वो कम होता है.
0: इवन
1: असर जो है ना, असर तभी होगा वो पहले इंट्रो स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद में ना मुखड़ा आएगा, मुखड़ा कहते हैं हमें ना उसको, फर्स्ट वर्स को, फिर उसके बाद में ना उसका हुक लाइन आएगा, उसके बाद में ना फर्स्ट म्यूजिक आएगा, देन उसके बाद में सेकेंड वर्स आएगा, यानी अंतरा जिसको हम कहते हैं, उसके बाद सेकेंड म्यूजिक आएगा, फिर उसके बाद में ना सेकेंड अंतरा आएगा. तो ये एक कॉमन प्रोसीजर है जिस तरह से गाना बनता है. अभी उस चक्कर में क्या हो गया, मुखड़े पे गाना, मुखड़ा जो होता है फर्स्ट वर्स, उसमें सिमट जाता है पूरा गाना, है ना, फिर वो आगे नहीं जाता. बट क्या होता है कि उस वजह से गानों की लाइफ भी तो कम हो जाती है.
2: That's right.
1: और इतना म्यूजिक मार्केट में है तो कहीं ना कहीं वो सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है.
2: एंड सॉरी, आई कैन कंप्लीटली रिलेट टू दिस, बिकॉज एक आपका ये गाना है कुन फाया कुन, काफी स्लो स्टार्ट होता है, एंड देन इट प्रोग्रेसेस एंड इट गेट्स अस टू वन स्टेज,
0: एक स्पिरिचुअल लेवल पे लेके जाता है वो.
1: उस गाने का ड्यूरेशन आप देखिए,
2: 6 minute का गाना है वो.
1: अर्जिया का ड्यूरेशन देखिए आप,
0: 8 minute
2: का गाना
0: है.
1: रहमान सर ने सोचा ही नहीं कि ना, उन्होंने सोचा ही नहीं, जो आ रहा है जैसा आ रहा है ये मेरा थॉट है.
0: पर पता है वो अर्जिया हम प्ले करते हैं, फुल 8 minute का गाना हम प्ले करते हैं, पीपल लव इट.
2: एंड लिरिक्स इसलिए उसकी याद भी रहते हैं ना हमें, नए गानों के लिरिक्स किसको याद है, मतलब जो 2-3 minute के गाने, भले 3 minute के गाने हैं, बट
1: क्या हो गया ना, इनसिक्योरिटी हो गया गाने को लेकर के, लोग ना कितनी दिन तक वो होल्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. तो वो क्या होगा कि फिर
2: ये ट्रेंड करेगा कि नहीं करेगा,
1: ट्रेंड करेगा कि नहीं करेगा. बट ये सोच के अगर गाना बनाते हैं या हम कुछ भी काम करते हैं, तो वो फिर उसका लाइफ ज़्यादा नहीं रहता.
0: तो कई बार ऐसा बड़ी स्ट्रक वाली फीलिंग होती होगी ना कि भाई अपनी मर्जी का करें या फिर मार्केट के हिसाब से करें.
1: देखिए, मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, मैं सिंगर हूँ, आई एम नॉट अ कंपोजर. तो मुझे कंपोजर बोलता है आप एक मुखड़ा एक अंतरा 2 verse गाइए, कभी 3 verse गाइए, तो मेरा काम तो गाना है. और उसको कितना मैं बेस्ट कर सकता हूँ, मैं वो करने की कोशिश करता हूँ. अदरवाइज मैं ये हाँ अगर मैं इंडिपेंडेंट म्यूज़िक करता हूँ तो फिर इंडिपेंडेंट म्यूज़िक मतलब मैं अपने लिए अपने यूट्यूब चैनल के लिए नहीं करता बिकॉज मुझे उतना टाइम नहीं मिलता. बहुत सारे ऑफर्स आते हैं कि आप इंडिपेंडेंट म्यूज़िक में बहुत किया बीच में अभी तीन चार साल आप देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे गाने किए मैंने बहुत

0: Show with Sandy and Rizvi.
1: Hamesha saath dene wale dost.
2: Brought to you by Beds R Us, Manuko and Pukekohe. With Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from 449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku. Accurate traffic.
3: New Zealand runs on fibre.
4: Fine spells tonight, the low 17 degrees. Inside the Victoria Park Tunnel, so heading onto the northernmost way and the Harbour Bridge, we've got a breakdown and that's causing delays to start backing up. If you're coming citybound on the southern, it's also really heavy from about Penrose through to Green Lane. Out of town, there's a bit of traffic through to Mount Wellington, and on the northwestern, it's busy before to after two.
3: Traffic jams should be contained to the roads and not your internet. Ask for fibre.
5: Arey Babita, thank you so much for giving me Guru's number, yaar.
6: Kyun? Kya hua?
5: Mujhe urgent kaam se Fiji jana tha. $20,000 chahiye the. Bank gayi, to itne documents maange ki bas poochho hi mat. Ek hafta ho gaya, no response. Fir tumne Guru ka number diya, aur bas agle din paise mere account mein. Guru to ho ja shuru wala kaam hai.
2: Guru Kandola of Logic Finance, a household name in finance and insurance industry. Call 0800 Logic G. That's 0800-564-424.
7: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
2: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
7: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today.
2: Available at selected branches. T's and C's apply.
8: Real South Indian taste ka craving hai? Try karo Kashish Foods Dosa Batter. Freshly made in New Zealand, stone ground for that authentic texture. Soft, fluffy idlis or perfectly crispy dosas. Har bar. Classic ho ya ragi. Multigrain ya medu vada batter. Sab milega. Aur haan, buy any Kashish Dosa Batter, any size or pao 250 grams ginger garlic paste bilkul free. Limited time offer 31st May tak. Kashish Foods. Eat better, live better.
9: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
10: Indelible Homes, your building expert.
11: Want to go halvesies with Mercury? Just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.
12: The Hutch Wilco New Zealand Boat Show is back. See the latest boats and fishing gear. Be in to win a massive Surtees Yamaha Grand Prize. Auckland Showgrounds, May 14 to 17. Tickets at boatshow.co.nz. You gotta
13: Trend makers.
14: I understand, and you can decline to answer also. But ऐसा होता है Bollywood में कि you सब singer से song गवाते हैं and then they decide one ऐसा मतलब
15: we heard. किसका गाना रखना है?
16: कभी-कभी ऐसा होता है इसलिए क्योंकि ना बहुत सारे लोगों के decisions होते हैं. इतना बड़ा canvas रहता है film का. तो किसका voice उस कैरेक्टर पे जा रहा है या किसका वॉइस ज्यादा अपीलिंग लग रहा है ऐसा कुछ गानों में होता है
15: ओके
16: तो इट्स अ पार्ट ऑफ आवर जॉब सो मुझे कोई उसमें कोई इतना दोहराई नहीं लगता है
15: एक और इस पे सिमिलर मुझे पूछना था कि पहले 90s के टाइम पे क्या होता था लाइक प्रीवियस एज वेल एक सिंगर है पूरी एल्बम गा रहा है
16: आज मुश्किल है वो
15: आज के टाइम पे ऐसा नहीं है ना
16: बिल्कुल नहीं है अगर किसी ने एक फिल्म में दो गाने भी गा दिए बिकॉज गाने भी तो कम हो गए चार गाने हैं फिल्म में चार या पांच गाने होते हैं तो उसमें और सिंगर्स हैं 50,000
15: या
16: तो आपको कितना अच्छा होना पड़ेगा तब जाके आपको मौका मिलेगा ना 50,000 सिंगर्स हैं और आपको एक फिल्म और आप चाहते हैं कि आप फिल्म में गाएं
15: फुल एल्बम में
16: बहुत मुश्किल है 50,000 और पांच गाने एक फिल्म में किसको मिलेगा 0.1 कितना रेशो कितना है
15: या
17: इट्स
15: डिफिकल्ट
16: बहुत डिफिकल्ट है तो पहले ऐसा होता था क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले टेक्नोलॉजी भी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, तो जो प्लेबैक कर रहे हैं वो गिन चुन के 4-5 सिंगर्स होते थे. और आज क्या हो गया कि बहुत सारे सिंगर्स हैं, और उसमें भी टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी चीज़ें करेक्ट की जा सकती हैं, जिसकी वजह से अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि क्या ठीक की जा सकती है.
15: वी नो, वी ऑल नो,
16: हम सभी जानते हैं.
14: इसलिए स्टूडियो सिंगर अलग होता है और रियल लाइफ
15: कॉन्सर्ट सिंगर,
14: क्या बोलते हैं, कॉन्सर्ट सिंगर, जो लाइव सिंगर.
15: हर एक स्टूडियो सिंगर,
16: ऐसे सिंगर्स होते हैं कि जो स्टूडियो में भी अच्छे हैं और लाइव में भी अच्छे हैं.
15: एग्जैक्टली, हर स्टूडियो सिंगर कॉन्सर्ट्स नहीं कर सकता.
16: हाँ,
15: ये है.
16: कई बार ऐसा होता है कि लोगों के एक्सपेक्टेशंस वही होते हैं कि उन्होंने फाइन सुना होता है उनको रिकॉर्डिंग में, क्योंकि आप है ना काफ़ी सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं. लेकिन जब वही सिंगर लाइव गाते हैं और लोग कहते हैं ओ माय गॉड, ही इज नॉट साउंडिंग सिमिलर जो हमने सुना था, तो फिर वहाँ से ना फिर उनका माइंड डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है. ऐसे बहुत कम सिंगर्स हैं कि जो रिकॉर्डिंग में भी वही साउंड करेंगे और लाइव स्टेज पर भी आपके सामने बैठा हुआ है.
15: हाँ, 100%. 100%. 100%.

0: दावत इश्क गाना मुझे याद है, ईद से एक दिन पहले मुझे कॉल आया था इस गाने को, और वो भी इसके जो डायरेक्टर हैं फैसल, अभी फैसल साहब का, वो गाना ईद से एक दिन पहले मुझे कॉल आया और कि ये गाना रिकॉर्ड करना है दावत इश्क। तो पता नहीं मैं कुछ बिज़ी था उस टाइम पे, जैसे मुझे कॉल आया तो मैं सारे काम छोड़ के रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचा और दावत इश्क गाना रिकॉर्ड होने से पहले इस फिल्म का टाइटल भी नहीं रखा गया था।
1: ओके
0: फिल्म का टाइटल नहीं रखा गया था। तो मुझे इस गाने की कंपोज़र है साजिद वाजिद और कौसन मुनीर जी ने लिखा है ये गाना, और हबीब फैसल जिनका इशक ज़ादे गाना गाया था मैंने, टाइटल सॉन्ग गाया था वो भी मैंने,
1: राइट।
0: अब तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर ये गाना अच्छा रिकॉर्ड हो गया, बहुत अच्छा साउंड किया, तो हम इस फिल्म का भी टाइटल दावत इश्क रखने वाले।
2: वाह।
0: तो इस तरह से दावत इश्क इसका फिल्म का नाम रखा गया।
2: सो ब्यूटीफुल,
1: दैट्स सच अ कूल स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट विद अस, एंड ऑनेस्टली गूज़बम्प मोमेंट था ये, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स दावत इश्क। मेरे को मूवी भी एक्चुअली बहुत पसंद आई थी,
2: इट डिडंट वर्क
1: बट दिस वाज ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू।

0: accurate traffic.
1: Sell or loan against your gold at Cash Converters.
2: Fine spells tonight, the low 17 degrees. Inside the Victoria Park Tunnel, so heading onto the northernmost way and the Harbour Bridge, we've got a breakdown and that's causing delays to start backing up. But if you're coming citybound on the southern, it's also really heavy from about Penrose through to Green Lane. Out of town, there's a bit of traffic through to Mount Wellington, and on the northwestern, it's busy before to after 2.
1: Visit your local store and turn your gold into sold. Valid ID, lending criteria and terms apply.
3: Professional Financials has साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
4: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
3: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यहीं अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
4: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846993434 सर्च PFSL

ठोकरें खा खा पता चला, फिदा जिस पे होते थे, एक सांप हमारा यार था, हम सांप के साथ सोते थे।

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।
1: एक सपना है, सपना कुछ अपना करने का, सपना एक अपने बिजनेस का।
2: हम है क्रू केयर, सिर्फ $15,000 ऑनवर्ड्स की इन्वेस्टमेंट में हम बनाएंगे आपके सपने को एक हकीकत।
3: Crew Care offers commercial cleaning franchise, which caters to after and before hours cleaning services for offices and schools. Crew Care also has tie-ups with many cleaning sites, like offices, schools, gyms, medical centres and hospitality sites. Finance options available for approved purchases. Call Crew Care on 0800 800 209.
4: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल।
5: Trade Depot brings you MyDia, the world's number one air conditioning company. Introducing the MyDia Inverter Heat Pump. It looks elegant and sophisticated, features innovative smart technology, and superb energy efficiency. Shop now for your MyDia Inverter Heat Pump, including installation anywhere in New Zealand, from only $1,299 with Trade Depot. T's and C's apply.
6: Menikau Charitable Club in association with Bhakti Satsang Boys ला रहे हैं भक्ति कीर्तन संध्या Friday 8 मई को रात 7 बजे से Vedic Center 32 Glasgow F Papatoetoe में, जिसमें कलाकार रहेंगे फिजी के नितिन निलेश प्रकाश और न्यूजीलैंड के दविन नाथ। दो पहुंचे हुए कलाकारों को एक साथ देखने का अनोखा मौका। टिकट्स सिर्फ $20 हैं। तैयार हो जाइए भक्ति कीर्तन संध्या के लिए Friday 8 मई को रात 7 बजे से Vedic Center Papatoetoe में।
7: How many deals can you get in a day? Hurry into Briscoe's today and find out with one day store-wide savings for, you guessed it, one day only. So hurry in and bag the savings. Stores open till 9 today only at Briscoe's. See online for T's and C's.

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: You're listening to Night Cafe, playing Rhythm and Romance. आपके लिए जितने भी हमारे romantic lovebirds हैं, आपको याद करते हैं. अगर आप किसी के साथ अभी फिलहाल बाहर है, someone special, या अगर आप दूर है किसी से, वो विदेश में और आप यहाँ पर है, I'm sure it must be difficult, क्योंकि बेटा हाफ से दूर रहना या किसी से आप बहुत प्यार करते हैं, बेइंतहा और बेपनाह प्यार करते हैं, उनसे दूर रहना बहुत मुश्किल होता है. लेकिन hopefully ये टाइम जल्दी पास हो जाए और आप अपने लव्ड वंस के साथ reunite हो जाए बहुत ही जल्दी. आपके लिए प्यारे गाने हम पेश करते रहेंगे, रोमांटिक सॉन्ग्स ओनली ऑन हम, जबकि अभी रिदम एंड रोमांस आपके लिए जारी है.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: Night Cafe on Hum. जज्बात की नरमी, मोहब्बत की राज.
2: Whispers of इश्क.
3: You're listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. चेडल के बारे में तो आपने सुना होगा, ये कीवी विजर्ड है. अगर आप एक कीवी विजर्ड है तो आपको दिया जाएगा कीवी वर्ड सेइंग या फ्रेज जो आपको क्रैक करना होगा टू बी इन द ड्रॉ. क्विकर और शापा होते हैं तो बेटर आपके चांसेस होते हैं ऑफ विनिंग. $100 अ डे जीतने का मौका रहेगा. एवरी डे आप खेलते हैं तो आप ड्रॉ में शामिल हो पाएंगे. एक खेल यानी ईच गेम इक्वल्स वन एंट्री, और अगर आप आंसर फास्ट देते हैं तो बोनस एंट्री आपको मिल सकता है. $7,000 जीतने का मौका है, और द मोर डेज यू प्ले द बेटर योर ऑड्स. ओजा मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. रोवर डाउनलोड नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक और कॉम्पिटिशन के बारे में आपको बताऊँगा जिसमें रिटर्न एयर टिकट टू फीजी जीतने का मौका रहेगा बहुत ही जल्दी. सुनते रहो, आपके लिए नाइट कैफे जारी है रिदम एंड रोमांस में, और भी बहुत सारे रोमांटिक सॉन्ग्स एक एक करके आपको सुनाऊँगा.

0: का मोमेंट क्रिश का मैजिक ओनली ऑन हम.
1: You're listening to all your favorite songs only on हम. एक एक करके आपके फेवरेट सॉन्ग्स हम पेश करते रहेंगे. रोमांटिक गाने अभी चल रहे हैं और एक के बाद एक योर फेवरेट सॉन्ग्स भी हम पेश करते रहेंगे जो आपके फेवरेट आर्टिस्ट ने गाया है, या कुछ 90s के गाने, या सेमी गोल्ड जो गाने हैं, जो 80s के गाने हैं, वो भी आपके लिए हम शामिल करते रहेंगे. हम फ्लाई अवे फ्रेंजी. अगर आप फीजी के लिए रिटर्न एयर टिकट जीतना चाहते हैं तो फिर सुबह 8 बजे, दिन में 11 बजे, 1 बजे और शाम 5 बजे आपको स्पेशल कोड वर्ड्स के लिए रेडियो के नज़दीक आ जाना है, क्योंकि ये हम स्पेशल कोड वर्ड्स आप जैसे ही सुनते हैं 60 मिनट्स के अंदर आपको ये कोड एंटर करना होगा रोवा में टू बी पार्ट ऑफ द ड्रॉ, और एक रिटर्न या टिकट जीतने का मौका रहेगा फॉर अ सन सोक्ड एस्केप दैट यू बीन ड्रीमिंग ऑफ, दैट आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ, जो हर कोई चाहता है. स्ट्रेस से दूर सनसेट्स का मज़ा लो, सनराइज़ का मज़ा लो, ट्रॉपिकल क्लाइमेट का मज़ा लो. तो टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे वेबसाइट पर आपको मिलेगा, और जल्दी से इस कॉम्पिटिशन में आपको भाग लेना होगा. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी, हाँ किसी ने बनाया, वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत हो?
2: आए आए बताओगे यार।
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from 449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल, हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
5: कुकिंग का असली फ्लेवर चाहिए? स्विच टू कशिश फूड्स जिंजर गार्लिक।

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: You're listening to number one, I'm playing Bollywood's biggest hits. Main Krish aapka saath de raha hoon. Aur jitne bhi humare pyare listeners humara saath de rahe hain. Thank you so much for your great company. Achha lagta hai jab aapka saath hume milta hai. Mother's Day promotion ke liye abhi bhi aapke paas mauka ho sakta hai. Agar humare saathiyo dwara jaise hi aap sunte hain ki live on air game ke liye aapko invite kiya ja raha hai. Aur hoga yun ki aapko guess karna hoga aapke mom का रिएक्शन किस तरह से वो रिएक्ट करेगी इन अ सिनेरियो फनी या क्विकी या स्लाइटली ट्रिकी सिचुएशंस में. और ड्रो में शामिल होकर आप जीत सकते हैं फर्स्ट प्राइज में $300, सेकंड प्राइज में $200 और थर्ड प्राइज में $100 जीतने का मौका रहेगा. ब्रेकफास्ट शो यानी फ्राइडे यानी कल ड्रो होने जा रहा है 8 मई को. और इनफैक्ट मुझे नहीं लगता कि आपके पास टाइम है अभी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन इतना मैं आपको बता दूँ कि ड्रो कल सुबह ब्रेकफास्ट शो में और आपको भी सुनना है क्योंकि आप भी लकी विजेता हो सकते हैं. और थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन इन दिस अमेजिंग कॉम्पिटिशन जो हुआ है आपके लिए.

0: करके दें चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी've got the spotlight for your brand. Call me Kashika on 021-769-755. Media Works. Media that works.
1: एक सपना है, सपना कुछ अपना करने का, सपना एक अपने बिजनेस का।
2: हम है क्रूकेयर, सिर्फ $15,000 onwards की इन्वेस्टमेंट में हम बनाएंगे आपके सपने को एक हकीकत।
3: Crewcare offers commercial cleaning franchise, which caters to after and before hours cleaning services for offices and schools. Crewcare also has tie-ups with many cleaning sites like offices, schools, gyms, medical centres and hospitality sites. Finance options available for approved purchases. Call Crewcare on 0800 800 209.
4: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
5: क्यों, क्या हुआ?
4: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
6: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424.
7: Kick off the winter season with these winning deals from Rebel. Like 20% off all women's Puma, New Balance and Under Armour clothing and running shoes. And 20% off football, rugby and netball equipment. These deals and so much more are now at Rebel Sport. See online for T's and C's.
8: Get into Bunnings today and get cooking, because you can pick up a Mistral 6.5 litre digital air fryer for just $69. But hurry, only while stocks last. Shop online or in-store at Bunnings Warehouse.
9: बिग बॉस देखा है ना? अब घर से बाहर निकलो और विनर को लाइव देखो। मुन्नावर फारूकी आ रहे हैं ऑकलैंड विद हिज स्टैंड अप कॉमेडी शो धंदो।
10: छोटा तो मेरे को नहीं समझ में आता, तो मैंने अपने चाचा से पूछा, कुबुले कुबुले कुबुले क्यों होता है ऐसा तीन बार? तो मेरा चाचा बोलता है, औरतों को एक बार में समझ में कहा आता है।
9: सैटरडे 23rd में ब्रूस मेसन सेंटर ताकापुना, 7 PM onwards. Book your tickets now on ticketmaster.co.nz.

0: की नरमी, मोहब्बत के राज,
1: Whispers of इश्क।
2: You're listening to number one, humping Bollywood's biggest hits, Night Cafe जारी है और midnight तक ये चलता रहेगा, 8 to midnight, weekdays में हम लेकर आ जाते हैं आपके लिए। Ultimate Mother's Day voucher create करने का मौका है, I'm not sure आपके पास समय होगा, लेकिन you may want to try, क्योंकि draw कल सुबह होने जा रहा है, Friday, the drive show में, और कल शाम को infect होगा, तो शायद आपके पास थोड़ा मौका हो सकता है, personalized voucher for your mom बनाते हैं, तो draw में आप शामिल हो पाएंगे। Firstly, तो आपको Mother's Day gift list बनाना होगा और फिर वाउचर क्रिएट कीजिए, ड्रॉ कीजिए या डिज़ाइन कीजिए ऑनलाइन, और हमारे फेसबुक पेज पर आपको शेयर करना है, हम 104.2 FM पर, और अपने फैमिली मेम्बर्स को टैग करना है। ड्रॉ में $200 जीतने का मौका है और कल ड्रॉ होगा ड्राइव शो में। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, और भी इंटरेस्टिंग बातें और लवली सॉन्ग्स मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस बार अरिजीत सिंह को सुनाते हैं लवली सॉन्ग्स जो मैं लेकर आया हूँ आज नाइट कैफे रिदम एंड रोमांस में, एक एक करके आपको सुनाने की पूरी कोशिश रहेगी, राइट टिल मिडनाइट।

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: Night Cafe जारी है and you're humming along with Krish on your number one hum playing Bollywood's biggest hits. Final reminder है कि कल जावेद अली शो होने जा रहा है और it is going to happen right in front of us जब जावेद अली perform करेंगे. रफ़ी और मैं टाइमलेस क्लासिक्स ऑफ मोहम्मद रफ़ी आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट जो फाइनली कल होगा. जावेद अली के खुद के गाने, मोहम्मद रफ़ी जी के गाने, सोल स्टेरिंग सॉन्ग्स टू जावेद अलीज ओन चार्ट टॉपिंग हिट्स, ये कल होने जा रहा है विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में. आई विल बी देयर और आप भी आ सकते हैं. टिकट्स फ्रॉम $59, फूड स्टॉल्स और इजी ऑन साइट पार्किंग रहेंगे. जल्दी से टिकट्स ग्रैब कीजिए starlionsentertainment.com से. टिकट्स यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. एक जावेद अली का बहुत ही प्यारा गाना आपको सुनाते हैं.
0: You're listening to Krish.
1: Let's go!

0: नाइट कैफे आपका मोमेंट क्रिश का मैजिक ओनली ऑन हम.
1: Welcome back everyone. You're listening to number one Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. नाइट कैफे जारी है, मिडनाइट तक चलता रहेगा, लेकिन खास बात यह है कि आपके लिए रिदम एंड रोमांस जारी है इन दिस नाइट कैफे. जो ये सेगमेंट 8 टू मिडनाइट पूरा चलता है, जिसमें सारे रोमांटिक सॉन्ग्स हम पेश करते हैं, लवली जो प्यार की बातें हैं, जहाँ मौका लगता है वो आपके साथ शेयर करते हैं. इनफैक्ट अभी तो बहुत कुछ आपको बताने को है, अभी भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देना बाकी है, जो एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करूंगा. और गाने तो आपको सुनाता ही रहूंगा, बैक टू बैक सॉन्ग्स भी लाया हूं. जैसे अभी 30 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप म्यूजिक रहेगा, जिसमें बैक टू बैक सॉन्ग्स आप सुन पाएंगे. कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गाने लगभग आप सुनेंगे, और फिर मुलाकात होती है. एंजॉय.

0: सरगर्मी मोहब्बत के राज Whispers of इश्क.
1: Welcome back everyone. You're listening to number one Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. Online listeners और night shift workers आपको याद करते हैं, जितने भी हमारे लव बर्ड्स हैं. अगर आप किसी को याद करना चाहते हैं तो आप शौक से हमारे पास 5599 पर मैसेजेस भेज सकते हैं. लेकिन जितने भी हमारे प्यारे listeners हैं, अगर कोई रोमांटिक डेट पर आप जा रहे हैं या किसी के साथ आप प्यार में हैं, एंड दिस लवली फीलिंग जो आपको आ रहा है और हमारे म्यूज़िक आप इन्जॉय कर रहे हैं, रोमांटिक सॉन्ग स्पेशली, तो खास स्वागत मैं आपका करता हूँ. एनजेड म्यूजिक मंथ जारी है मई महीने में. बैक योर बैक एट बीट्स इज आवर थीम और लोकल आर्टिस्ट को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. सिंगर आप है, ओरिजिनल ट्रैक्स आपके पास है. बायो के साथ अपना बेस्ट सॉन्ग buzz@humfm.com पर आप भेजना, क्योंकि शॉर्टलिस्टेड आर्टिस्ट के गाने रेडियो पर प्ले किए जाएंगे. कोलैब करने का मौका रहेगा विद हम ऑन इंस्टा और आपके गानों को वोट किए जाएंगे बाय हमारे लवली लिसनर्स बोथ ऑन एंड ऑनलाइन. टॉप 3 आर्टिस्ट के गाने रोवा ऐप पर फीचर होंगे और एक्साइटिंग हैम्पर प्राइज जीतने का मौका रहेगा. टोटल एंगेजमेंट विच मीन्स वोट्स और शेयर्स अक्रॉस रेडियो एंड सोशल मीडिया के तहत के आधार पर विनर की घोषणा होगी. तो मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, आप बस हमें सुनते रहो और भी ऐसे प्यारे गाने और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको सुनाते रहेंगे.

0: Bro, look at you. Blue light screen को इतना घूर रहा है जैसे वो तुझे promotion दे देगा. और ये coffee? Lukewarm. A taste बिल्कुल heartbreak जैसा. Please sir, तू cubicle के लिए नहीं बनाए. तू beach के लिए बनाए. तू life को enjoy करने के लिए बनाए.
1: Listen to Hum on Rover every weekday at 8 a.m., 11 a.m., 1 p.m. and 5 p.m. Hum denge ek special code word. You've got 60 minutes to enter it in the Rover app and go in the draw to win a trip to Fiji. So what are you waiting for? Download the Rover app now. Win a trip to Fiji. Only on Hum on Rover. T's and C's apply.
2: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
0: क्यों, क्या हुआ?
2: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
1: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.
3: Stuck for dinner ideas? Faro Kitchen has you covered with fresh, chef-created meals that are ready in no time. Feed the family with classic lasagna, silky pasta, rich ragu and cheesy bechamel. Or tuck into beef enchiladas, tender pulled beef, soft tortillas and bright tangy sauce. Faro Kitchen's oven-ready meals make wholesome dinners quick and stress-free. Available online or at your local Faro store. Just pop it in the oven and relax. Faro Kitchen, dinner made deliciously easy.
4: बिग बॉस देखा है ना? अब घर से बाहर निकलो और विनर को लाइव देखो. मुन्नावर फारूकी आ रहे हैं ऑकलैंड विद हिज स्टैंड अप कॉमेडी शो धंदो.
5: छोटा तो मेरे को नहीं समझ में आता था, मैंने अपने चाचा से पूछा. कुबुले कुबुले कुबुले क्यों होता है ऐसा तीन बार? मेरा चाचा बोलता है औरतों को एक बार में समझ में कहा आता है.
4: सैटरडे 23rd में ब्रूस मेसन सेंटर ताकापुना, 7 p.m. onwards. बुक योर टिकट्स नाउ ऑन ticketmaster.co.nz.
6: Menikau Charitable Club in association with Bhakti Satsang Boys ला रहे हैं Bhakti Kirtan Santhya Friday 8 May को रात 7 बजे से Vedic Center 32 Glasgow F Papatoetoe में, जिसमें कलाकार रहेंगे Fiji के Nitin Nilesh Prakash और New Zealand के Davin Nath. दो पहुंचे हुए कलाकारों को एक साथ देखने का अनोखा मौका. टिकट्स सिर्फ $20 हैं. तैयार हो जाइए Bhakti Kirtan Santhya के लिए Friday 8 May को रात 7 बजे से Vedic Center Papatoetoe में.
7: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा? स्विच टू लीप मोटर C10 और B10 अल्ट्रा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सिर्फ 44,990 प्लस ऑन रोड से शुरू. विजिट आर्मस्ट्रॉन्ग्स लीप मोटर ग्रीन लेन और बॉटनी. टीज एंड सीज अप्लाई.
8: द बीट ऑफ बॉलीवुड
9: वर्ल्ड्स बेस्ट. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
8: नाइट कैफे, जज्बात की नरमी, मोहब्बत के राज.
10: व्हिस्पर्स ऑफ इश्क.
11: नाइट कैफे जारी है. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूं और मुनावर फारूकी के बारे में आपको बता दूं कि ये जो इंडियाज़ बोल्डेस्ट कॉमिक मुनावर फारूकी ओकलैंड में परफॉर्म करेंगे धंधो. इनका जो शो का नाम है ब्रूस मेसन सेंटा में होगा 23 मई को. रो रियल एंड अनफिल्टर्ड कॉमेडी यहां पर होने जा रहा है. वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट कॉमेडियंस है और इनको मैं देखना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत सुर्खियों में रह चुके हैं और फियरलेस स्टोरी टेलिंग इनका होता है, शार्प विट और ह्यूमर इनका होता है. ticketmaster.co.nz से आप टिकट्स ले सकते हैं. हमारे फेसबुक पेज पर जाए, एक पोस्ट मिलेगा फारूकी मुनावर फारूकी पर. अपने फ्रेंड को टैग करने पर आप ड्रो में शामिल होकर डबल पास जीत सकते हैं. 11 मई को ड्रो होगा जो कुछ ही दिनों में होने जा रहा है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स हम लेकर आते हैं हम पर, और आज सारे रोमांटिक गाने के प्यारे प्यारे गाने जो है मेलोडी सेंसुअल सॉन्ग्स वो भी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि रिदम एंड रोमांस आपके लिए जारी है और ये चलता रहेगा ऑल द वे टिल मिडनाइट। आप बस हमारे साथ अपना फेवरेट गाने को एंजॉय करें और आपको भी हम याद करते रहेंगे। नाइट शिफ्ट वर्कर्स को भी याद कर रहे हैं, फैक्ट्री वर्कर्स को याद कर रहे हैं, ऊबर ड्राइवर्स, साथ में टैक्सी ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स दूर दूर तक आप ड्राइव करते हैं और हमारा साथ देते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा कि आपका साथ हमें मिल रहा है। कुछ ही देर में राहत फतेह अली खान लाइव इन ओकलैंड पर जानकारी आपके साथ रहेगा। अगले घंटे पर टॉप ऑफ द आवर पर 11 PM न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए।

0: बेटा मेरा फोन किधर है?
1: अभी बताया तो फ्लाइट चप्पल कंफर्म है।
2: इस मदर्स डे क्या आप जानते हैं अपनी मम्मी का रियल रिएक्शन? From broken flower vases to लौकी की सब्जी experiments, guess कीजिए मम्मी का मूड और जीतिए ढेर सारा कैश। हम पेश करेंगे quirky scenarios on air और आपको बताना होगा मम्मी चिल करेगी या किल करेगी। Guess and enter the lucky draw to win big cash prizes. तो तैयार हो जाइए for the ultimate game show, Mom's Mood Swings on Hum. Brought to you by Indelible Homes, PFSL, Amma's Food and Malabar Gold and Diamonds.
3: गाड़ी चलती रहे, टेंशन बिल्कुल नहीं। ऑकलैंड का ट्रस्टेड नाम RPS टायर्स, कार SUV ट्रक या फोकलिफ्ट, हर व्हीकल के लिए टॉप क्वालिटी टायर्स, पार्ट्स एंड टूल्स, डायरेक्ट इंपोर्टर्स ऑफ रोड वन एंड अदर क्वालिटी टायर्स विद अ सॉलिड प्राइस बीट गारंटी। 4x26 ईस्ट तमाकी रोड पापा टोटोए प्लस 24 आवर मोबाइल सर्विस। फॉर बल्क ऑर्डर्स कॉल रॉन ऑन 0221753941 और विजिट rpstyres.co.nz और देयर फेसबुक पेज RPS टायर्स। ड्राइव सेफ, ड्राइव स्मार्ट।
4: So you're trying to eat less meat, but you're no Jamie Oliver? Before you spend 45 minutes trying to make a can of lentils taste like dinner or turn a cauliflower into steak, listen to the sound of a BK plant-based Whopper patty sizzling on a flame grill. Mmm, smoky, juicy, and effortlessly tasty. Tofu who? Burger King, king of plant-based. See burgerking.co.nz for details on our plant-based range.
5: Now's the time to send Mum something she'll love this Mother's Day. With over 560 stores across the country, it's easy to make Mum's Day with NZ Post. Find your local at nzpost.co.nz.
6: हम सभी सही तरह से रिसाइकल करना चाहते हैं, तो याद रखिए प्लास्टिक 125 को रिसाइकल करें और धरती को जीवित रखें। सही तरह से रिसाइकल करना आपके हाथों में है। सर्च करें ओकलैंड काउंसिल रिसाइकलेबल आइटम्स, तमकी तुरुकी, ऑल टुगेदर ओकलैंड।
7: Check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
8: Good evening. With the latest at 10, I'm Alexander Goldsmith. Emergency responders are urged to coordinate and practice in case another ferry incident arises. An investigation into the Kaitaki's Cook Strait stranding in 2023 found an ageing part ruptured and engines cannot be restarted. David Clark from the Transport Accident Investigation Commission.

0: Murphy on Hum. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
1: वेलकम बैक एवरीवन. रिदम एंड रोमांस आपके लिए जारी है और स्वागत है एक बार फिर आपका हमारा फाइनल आवर में. और इस घंटे पर भी आपके लिए सारे रोमांटिक सॉन्ग्स हम लेकर आते रहेंगे. आप सुनते रहो हमें. स्वागत है आपका रिदम एंड रोमांस में.

All right, everyone, welcome to the show. Rhythm and Romance में एक बार फिर आपका स्वागत है. Back to back 30 minutes of non-stop music, जिसमें बहुत सारे romantic गाने आपके लिए हम एक एक करके शामिल करने जा रहे हैं. Welcome to the show. और ये segment आखिरी segment है of this program, क्योंकि 12 तक ही आपका साथ हम देंगे. स्वागत है आपका.

0: You're listening to number one, humping Bollywood's biggest hits, Rahat Fateh Ali Khan ko 25th July ko dekhne ka mauka rahega live in Oakland, jahan par powerful vocals, soul-stirring kawali aur timeless hits ye perform karenge. Jab ye Bollywood mein aaye the, inke gaane itne mashhoor hue the, and I loved his songs. All of his songs are so evergreen, jo aaj bhi sunne mein bahut acha lagta hai. Trust Arena par ye perform karenge. Greatest voices in the world live aap sunne ka mauka rahega, ek rare musical experience rahega. To JK Star Productions, Goat Live, Dreams Entertainment, Simran Productions और सहजादा Production द्वारा ये लेकर आया जा रहा है. DryTickets.com पर टिकट्स आपको मिल सकता है. डबल पास जीतना है तो जब हमारे साथ ही आपके लिए कंपटीशन रचाएंगे तो उसमें आप ज़रूर भाग लीजिएगा, जिसमें गाने के कुछ सेकंड्स आपके लिए प्ले किए जाएंगे, बाकी का लिरिक्स आपको टेक्स्ट कर 5599 पर बताना होगा. ओनली करेक्ट एंट्रीज को ड्रो में शामिल किया जाएगा डबल पासेस के लिए. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूं और कुछ गाने आपके लिए शामिल करने जा रहे हैं.
1: लाइट कैफे ऑन हम. May month is NZ Music Month. Ye sirf music nahi, ye hai emotion, passion aur thoda sa desi swag. Presenting Back Your Backyard Beats, jahan har gali, har corner se nikalta hai ek naya superstar. Aaj ka local artist, kal ka global sensation. To kyun na aaj se hi unka saath de? Tune in karo aur apne Backyard Beats ko do full support. Back Your Backyard Beats, brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. And Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love.
2: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है. जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है. हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है. We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations, 11 Boulderwood Place, Beery. Call 24/7 on 0927-88600.
3: Welcome to Kebab's Kitchen. I am Chef Alex and this is my guest, Sarah.
4: क्या बनाते हैं कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स?
3: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स. हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन.
4: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग. स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो ज्यूसी.
3: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट. अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स.
4: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव.
5: Tiger Bar and Restaurant in Soho Hotel Mount Roskill. Aaye aur enjoy kare inka sophisticated dining experience jahan par aapko tarah tarah ke flavors milenge. Creative Asian fusion dishes se lekar zesty seafood tak, saath mein refreshing cocktails. Sab kuch ek bahut hi elegant aur stylish andaaz mein. Ye open hai for breakfast, lunch and dinner. Close to Auckland CBD and minutes away from the airport. Tiger Restaurant Bar in Soho Hotel, Stodart Road, Mount Roskill. Visit Tiger at soho.co.nz.
6: Adore your floor for less with Flooring Extra's Walk Into Winter Sale. Here's your chance to save on their range of best-selling carpet and hard flooring. Discover the sale at your local Flooring Extra today.
7: Flooring Extra. Adore your floor.
8: Want to go halvesies with Mercury? Just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.
9: Night Cafe on Hum. Jazbaat ki narmi, mohabbat ki raaz.
10: Whispers of Ishq.
0: कुछ देर तक और मैं आपका साथ दूंगा. नाइट कैफे जारी है. रिदम एंड रोमांस में काफ़ी और भी रोमांटिक सॉन्ग्स अभी आपको सुनाएंगे और फिर 12 तक हमारा साथ रहेगा. एनजेड म्यूजिक मंथ जारी है. आपसे निवेदन है कि आप हमारे लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करें, सेलिब्रेट करें. उनके गाने इनफेक्ट प्ले किए जाएंगे 8 AM, 11 AM, 2 PM, 5 PM और 10 PM वीकडेज. आप अगर गाना सुनते हैं, क्या आप उन गानों से मोहब्बत करते हैं, आपको अच्छा लगता है वो गाने, आपको रिपीट पर सुनना है वो गाने, या फिर नहीं अच्छा लगता है और स्किप करने का मन करता है, ऐसे ही वोट्स आपको देना होगा ताकि आपके वोट्स के आधार पर डिसाइड हो टॉप 3 आर्टिस्ट. और 5599 पर कीवर्ड MM के साथ आप भेज सकते हैं अपने वोट्स. और हमारे सोशल्स पर आप जाएं, फेवरेट आर्टिस्ट के वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें और ऐसे ही आप अपना सपोर्ट शो करें ताकि विनर की घोषणा हो थ्रू योर टोटल एंगेजमेंट रेडियो वोट्स प्लस सोशल लव के जरिए. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, कुछ ही देर तक और हमारा साथ रहेगा.

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: नाइट कैफे में रिदम एंड रोमांस यहीं पर ख़त्म होता है दोस्तों. आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा लगा. अब हमारी मुलाकात होती है अगले हफ्ते. अपना बहुत ही ख्याल रखें. नाइट कैफे मंडे टू थर्सडे हम लेकर आ जाएंगे. हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर नाइट. और कल फ्राइडे अच्छी तरह बीते, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, और वीकेंड अच्छी तरह बीते. कृष्ण का बहुत सारा प्यार.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या मैसेज
3: कर रहा है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
2: मेरे को समझ में नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा
0: है। 6 to 10 a.m.

0: Night Flight on Hum.
1: Breakfast show with VJ and Pooja.
2: Puri planning se aaye hain. Shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
3: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या मैसेज कर रहा
4: है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
3: मेरे को समझ भी नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने
4: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
1: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
0: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस। फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून।
1: वीकडेज 6 to 10 AM।
3: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
5: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
6: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09 27 99 439 और विजिट लीगल एसोसिएट्स डॉट को डॉट NZ।

0: चाहे आप हम के दिन चैट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट, squirrel.co.nz।
2: The Hutch Wilco New Zealand Boat Show is back. See the latest boats and fishing gear. Be in to win a massive Surtees Yamaha Grand Prize. Auckland Showgrounds, May 14 to 17. Tickets at boatshow.co.nz.
3: You gotta go to the boat show.
4: The beat of Bollywood.
5: World's best, hamari good brands nahi hai.

0: लपट झपट जल हट बाजू हट नट खट हट जा। मैंने देखा जब तेरी नजरों के थ्रू,
1: कभी 101 कभी 102,
0: उस दिन से हुआ फीवर ये शुरू,
1: कभी 101 कभी 102।

0: Get money, get cash.
1: New Zealand's meanest word game is here. Think you're a Kiwi word wizard? Put it to the test with Turtle and be in to win $100 a day. Each day, guess a Kiwi word, saying or phrase. Every game equals one entry, and if you answer fast and avoid the hints, you'll score a bonus entry. With $7,000 up for grabs, the more days you play, the better your odds. So what are you waiting for? Jump in and have a crack. Only on Rover.
2: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
3: क्यों, क्या हुआ?
2: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
1: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424.
4: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है.
5: हाँ. अच्छा
4: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस, साडा कुछ नहीं.
5: मिसेस सिंह.
6: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
1: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू. कॉल 0928130 और विजिट focuskitchens.co.nz.
7: The beat of Bollywood.
8: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
7: Night flight on Hum.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
2: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
1: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
3: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
4: The beat of Bollywood.
5: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: Flight on Hum. हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: गाड़ी चलती रहे, टेंशन

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
2: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक,
1: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
2: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।

0: ऑफ मई को दिन में 11 से 4 बजे तक 378 अररिमू रोड रमारामा में, जहां पर एंट्री, सॉफ्ट ड्रिंक्स और खाना आपके लिए फ्री होगा। बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह होंगे, आप जाकर इसमें हिस्सा ले सकते हैं और इस टेंपल प्रोजेक्ट को अपना सपोर्ट दे सकते हैं।
1: और इसके साथ साथ नेक्स्ट वीक आपके लिए एक और एक खास इवेंट जो है ये होने जा रहा है 16th of May को, नेक्स्ट सैटरडे। ये स्पेशली रहेगा एट मलायोला कम्युनिटी सेंटर एंड दिस इज द 147th गिरमिट रिमेम्बरेंस डे। गिरमिट दिवस क्या होता है, गिरमिट इटसेल्फ क्या है, द पीपल ऑफ फिजी वेरी वेल नो इट, बट अगर आप इस शब्द से वाकिफ नहीं हैं और आपके जहन में ये बात हमेशा रही कि भाई दिखते तो बिल्कुल हम जैसे ही हैं लेकिन बोलचाल हमारी जैसी नहीं है, उतनी नहीं है, या फिर ये भारत के नहीं है, ये फिजी से है, ये एक्चुअली हुआ कैसे, तो ये कुछ इतिहास ऐसी है जिसमें आंसू भी है, दर्द भी है, तकलीफ भी है और साथ ही साथ पेशेंस भी है, हिम्मत भी है, द पावर टू चेंज एन एंटायर नेशन, ये कैसे हुआ एंड व्हाट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ फिजी इंडियंस, ये 147th गिरमिट रिमेम्बरेंस डे के तहत आप जरूर जान सकेंगे। फिजी गिरमिट फाउंडेशन न्यूजीलैंड द्वारा ये हो रहा है नेक्स्ट सैटरडे 16th of May को मलायोला कम्युनिटी सेंटर, 16 वायुकारी प्लेस मैंग्री, 4:30 PM टू 8:30 PM आप यहां पर पहुंच सकते हैं। डोर्स आर ओपन फ्रॉम 4 PM और आपको यहां पर मौका मिलेगा यू नो टू गेट दिस फ्री एंट्री एंड एंजॉय दिस नाइट, जहां पर कैंडल कमेमोरेशन, आर्टिफैक्ट डिस्प्ले, सीनियर्स रिकॉग्निशन अवार्ड रहेगा, कल्चरल परफॉर्मेंसेस रहेंगे, लाइव सिंगिंग रहेगा, बहुत सारे क्वीज होंगे, स्पॉट प्राइजेस भी जीतने का मौका रहेगा और स्पीचेस जिसके तहत आपको गिरमिट रिमेम्बरेंस डे यानी गिरमिट दिवस का भी जो महत्व है ये पता चलेगा।
0: साथ ही में वाइब मिक्स इवेंट्स आपके लिए ला रहे हैं ग्रैंड मस्ती नाइट, और ये खास प्रोग्राम आपके लिए होने जा रहे हैं मनोरेवा नेटबॉल हॉल में, जिसमें आ रहे हैं फिजी से एसएन और जय भैया जी, और यहाँ न्यूजीलैंड और साथ में फिजी के डांसिंग लेजेंड चर्फर आफ्टर 17 इयर्स ये आ रहे हैं। बहुत सारे कॉमेडी स्टिक्स जो कॉमेडी स्किट्स है ये रहेंगे, मस्ती मैडनेस डुअल वॉइस सिंगर मनी डिसूजा और साथ में मोंटो मोनिका युवा डांस ग्रुप, हमारे अपने केतन भी यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं 23rd of May को, एंड टॉप डीजेज, बहुत सारे गिवअवेज जो है आपके लिए होंगे मलबा गोल्ड एंड डायमंड की ओर से, रॉयल गोल्ड हैम्पर्स, ग्रीन हॉर्न गिफ्ट पैक्स, विकेट चिकन बॉटनी डांस की ओर से फूड वाउचर्स, फूड ड्रिंक्स, ये सब कुछ अवेलेबल भी रहेगा आपके लिए, फ्री पार्किंग भी है, टिकट्स हंटर्स फूड टाउन पापा टोयटोए, जेस फ्रेश मार्ट पापा टोयटोए, गेट फ्रेश मैंग्री, कैसे एंड ब्यूटी मनुरेवा, साथ में विकेट चिकन बॉटनी डांस, जेंडर हे एंड ब्यूटी सलून, कैवेंडिश ड्राइव में अवेलेबल हैं जो आप जाकर ले सकते हैं। डोर्स ओपन एट 6 PM ऑन 23rd of May, तो इसके लिए भी बस 2 हफ्तों का टाइम अब बाकी रह गया है और इसका हिस्सा आप जाकर बन सकते हैं।
1: तो अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत सारी हैं इन सारे इवेंट्स का हिस्सा बनने के लिए, और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज जहां पर खास यहीं ऑकलैंड में हो रहे हैं ये, और कुछ ऐसे भी हैं जो पहली बार हो रहे हैं, तो एक्सपीरियंस ज़रूर कीजिए इन चीज़ों को और इनको अपने मेमोरी में ऐसे समा कर रखिए कि जब कई सालों बाद जब आप उन पल को वापस जिए तो आपको याद रहे कि यार ये भी हुआ था एंड आई वॉज पार्ट ऑफ इट। वैसे अगर आपके आसपास आपकी कम्युनिटी में भी कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, यूड लाइक अदर्स टू नो अबाउट इट, आप हमारे पास इन्हें ईमेल कर सकते हैं buzz@humfm.com पर, buzz@humfm.com पर सेंड एन ईमेल और अपने जो इवेंट से रिलेटेड डिटेल्स है प्लस अपना कॉन्टेक्ट डिटेल, ये सारी चीजें आप हमारे पास भेज सकते हैं।
0: और हमने आपको बताया कि आज रात 7 बजे से वैदिक सेंटर 32 ग्लेसगो एफ पापा टोयटोए में भक्ति कीर्तन संध्या ये प्रोग्राम होने जा रहे हैं, तो ऐसे में ऑकलैंड के हमारे अपने जो आर्टिस्ट हैं दविंद्र नाथ ये अब हमारे साथ लाइंस पर हैं और इनसे जल्दी से कुछ बातें भी कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग दविंद्र।
2: गुड मॉर्निंग विजय भाई, जय श्री सीताराम।
0: जय सियाराम, जय सियाराम, कैसे हैं आप?
2: चल रहा है बस, ठीक है।
0: चल रहा है
2: आज के बस थोड़ा तैयारी है। हाँ। अपन सुनाओ भाई।
0: एकदम ठीक, बढ़िया। तो बताइए कैसी रही अभी तक की तैयारियां आज की भक्ति कीर्तन संध्या के लिए?
2: तैयारी तो बहुत जोर से चल रहा था, तो अब तो वो टाइम आ गया और बॉयज का प्रिपरेशन भी और शो का जो होल अप सेट करना है वो सब हो गया है, तो बस आज शाम का सबका मिलना है ना, इंतजार है कीर्तन का और लेजेंडरी कलाकार के साथ जब शेयर करेगा

0: स्टेज तो एक डिफरेंट सा फीलिंग होगा ना. तो आई एम होपिंग ऑल द फैंस ऑफ ओकलैंड न्यूजीलैंड के भी एक अच्छा रात रहेगा कीर्तन का.
1: या इससे पहले जिन लोगों को पता नहीं, इससे पहले क्या आपने कभी एक ही मंच पर नितिन नीलेश के साथ परफॉर्म किया है?
0: जी हाँ, 2018 में हम लोग एक साथ यहाँ पर करा था. वो लास्ट स्टेज शो था, तो एक बार गा चुका है नितिन के साथ.
1: ओके. And I believe Pooja is also a big fan of your talent. आपके कीर्तन जो है ये बहुत पसंद करती है.
2: मैं तो इनकी आवाज ही सुन रही थी और जो स्विच हो रहा था ना बीच बीच में, I hope all my fans जो हिंदी और इंग्लिश का वेरी नाइस मिश्रण, बहुत अच्छा है और आवाज तो वैसे भी इनकी बहुत अच्छी है.
1: You know, Devin, ये बात आपको शायद पता नहीं हो, लेकिन what I found out last night, कुछ बातें जो है गेम कर रहे थे, there are some people who are traveling from as far as Dunedin tonight.
0: Wow.
1: Yeah, Dunedin से लोग आ रहे हैं कुछ, and there are many others traveling from out of Auckland. तो that is the gist of it कि इस ये जो event है इसका असर कहाँ तक पहुँचा है. How much people are looking forward to seeing you? आज कुछ special तैयारी आपने की है to surprise the people who come down to Vedic Center?
0: जी हाँ, ढेर से special surprises है. तो आना तो पड़ेगा, तो मिलेगा वो सरप्राइज ना भाई.
1: जी बिल्कुल,
0: अभी बता दूंगा. बट ढेर सा कोशिश है, ढेर सा ट्रेनिंग किया है और टीम तो अपन पूरा फॉर्म पर है. तो आज रात के मिलेंगे सबसे ना.
1: बिल्कुल मिलेंगे. थैंक यू सो मच
0: भाई.
1: थैंक यू सो मच देवेंद्र, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुनाइट. थैंक यू. तो ये थे दविन नाथ, इन्हें आज रात नितिन नीलेश प्रकाश के साथ आप देख सकेंगे वैदिक सेंटर 32 ग्लासगो एफ पापाटोई में.
3: मॉर्निंग्स मेड बेटर,
4: दो फ्रेंडा, चार टोस्ट, बटर जैम और एक स्पेशल चाय.
3: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. कीप काम बिकॉज़ पंजाबी स्वैग इज ऑन.

0: radio.
1: Streaming on Rover.
2: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं. फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडो जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है. इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम. परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV. जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स. आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले. फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन socials.
3: रियल साउथ इंडियन टेस्ट का क्रेविंग है? ट्राई करो कशिश फूड्स डोसा बैटर. फ्रेशली मेड इन न्यूजीलैंड, स्टोन ग्राउंड फॉर दैट ऑथेंटिक टेक्सचर. सॉफ्ट फ्लफी इडलीज और परफेक्टली क्रिस्पी डोसास हर बार. क्लासिक हो या रागी, मल्टीग्रेन या मेदू वड़ा बैटर, सब मिलेगा. और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम्स जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री. लिमिटेड टाइम ऑफर 31 मई तक. कशिश फूड्स, ईट बेटर लिव बेटर.
4: Get Mum a gift, she'll love the bunnings.
5: We've got plants, the hanging baskets, the seedlings. We've got a really good range of coloured pots as well. This year, give a Mother's Day gift that keeps on growing.
6: 14-centimetre Calathea prayer plant, only $26.87. Fisker's Ruby Bypass Pruners, $36.95. Northcote Pottery 20-centimetre Paloma egg pot, just $19.98.
5: Pop into Bunnings and find something she'll love.
7: Bunnings Warehouse.
5: Lowest prices are just the beginning.
8: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले. जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट. squirrel.co.nz.
9: Join the great big balance check at New World. Check your balance in the New World app or ask a check out to spend your New World dollars today. Only with Club Card. Only at New World. T's and C's apply.
10: Beating pump prices is easy with Auckland Transport. Simply use your hop card, credit or debit card, smartphone or smartwatch to tag on and off buses, trains and most ferries. Search AT Journey Planner and save when you mix your go with AT.
11: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
12: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
13: What's going on?
14: 27 मिनट हो रहे हैं अभी 9 बजकर ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. एंड जो यूरोपा लीग के सेमीफाइनल्स खेले जा रहे थे, द टेबल्स हैव टर्न्ड. एस्टन विला ने आज नॉटिंगम फॉरेस्ट को 4-0 से हराया एंड हैव मेड इट टू द फाइनल्स. एग्रीगेट 4-1 पर दे हैव क्वालिफाइड. उसके अलावा फ्रेबेग और ब्रागा के बीच जो मैच हो रहा था, इट एंडेड इन विन टू फ्रेबेग 3-1. तो अब जो यूरोपा लीग का ग्रैंड फाइनल है, ये एस्टन विला और फ्रेबेग के लिए फ्रेबेग के बीच खेला जाएगा. ये साल इंटरेस्टिंग है क्योंकि चैंपियंस लीग फाइनल में भी इंग्लैंड की एक टीम है और यूरोपा लीग के फाइनल में भी इंग्लैंड की एक टीम है. और अब देखना है कि किसकी जीत होती है. वैसे आपकी जीत भी हो सकती है प्रोवाइडेड आप रूवर पर जाकर चैटल खेले.
15: एब्सोल्युटली, क्योंकि टोटल ऑफ $7,000 जो है रोवर पर चैडल खेल कर आप जीत सकते हैं. मतलब यो शेयर आप उसमें से जीत सकते हैं क्योंकि हर रोज $100 जो है ये गिव अवे किया जा रहा है. व्हेन वी सेइंग हर रोज वी मीन इट लिटरली, लाइक मंडे टू संडे एवरी सिंगल डे समवन इज विनिंग $100 ईच. तो आपने अगर अभी तक रोवर पर चैडल नहीं खेला है, इतना आपको बता दें, आप जरूर खेल लीजिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी. रीजन बींग क्योंकि इसका भी फिनिशिंग टाइम जो है बस बहुत ही जल्द आने वाला है, वेरी सून. एंड इफ यू वांट टू ट्राई योर लक एंड विन सम मनी, देन व्हाई नॉट गो फॉर इट. रोवा नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए रोवा ऐप, ROVA. इस ऐप के जरिए एनी टाइम एनी वे आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं और वहीं दूसरी ओर ऐसे बहुत से अमेजिंग कॉम्पिटिशन खेलते हुए विजेता बन सकते हैं. चैडल इज बेसिकली अ कीवी वर्ड विजिट गेम, बेसिकली जहां पर आपको कुछ कीवी वर्ड्स, सेइंग्स और फ्रेजेस जो है ये पूछे जाते हैं. यू हैव टू क्रैक इट, यू हैव टू गेस कि उसका क्या मतलब होता है. बिना किसी हिंट का इस्तेमाल किए या फिर बिना ज्यादा टाइम गवाए अगर आप सही जवाब दे देते हैं, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, मतलब बोनस एंट्री, विच मींस चांसेस ऑफ विनिंग कैश गेट्स इवन हायर.
14: तो अगर अभी तक आपने नहीं खेला है, टाइम बहुत कम है अब आपके पास. गो ऑन टू रोवा और चैडल आप खेलने की कोशिश कर सकते हैं. क्या पता किस्मत कब आपके आपके साथ हो. और अगर रोवा ऐप नहीं है तो वो भी आप बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं. बस ROVA. ये लिखकर 5599 पर आप हमारे पास टेक्स्ट करें. रिमेम्बर ROVA ये लिखें और 5599 पर हमारे पास भेजें. यहाँ से एक लिंक हम आपको भेजेंगे, उस लिंक पर क्लिक करते हुए वेरी इजीली आप हमारा ऐप जो है ये डाउनलोड कर सकते हैं.
0: Bollywood's most wanted.
16: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ.
17: मैं लाऊं अपना A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Bunnings gift card is a great gift for Mother's Day because it unlocks the whole warehouse for Mum. She's in for a treat. She'd be like, oh my gosh, yes, now I can buy all those extra plants that I was looking for the front garden. Perfect. Bunnings
2: Warehouse. Get your sleep essentials sorted at Beds R Us with great deals on selected sleepy head beds. Save 3,100 on the queen size chiropractic HD limited edition. Now 2,499. Upgrade your sleep today at Beds R Us Manukau or Pukekohe, where dreams begin.
3: When you're finishing off that DIY project this weekend, remember to have a hmm and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
4: Macca's weekly deals are back. That means more of your favourites for less every week. Jump on the Macca's app and check out this week's offer. Macca's weekly deals, only on the app. T's and C's apply. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Pacific Electrical Services presents Javed Ali live in Auckland performing his blockbuster hits and a special tribute to the legendary Mohammed Rafi Saab in Rafi Aur Main, promoted by Star Alliance Entertainment at Victory Convention Center, 8 May, 7 p.m. onwards. Proudly supported by Key Contractors. For tickets, visit staralliancentertainment.com or call Edwin on 0211-382184.
5: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
6: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
7: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994939 और विजिट legalassociates.co.nz.
8: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
9: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
10: What's going on?
11: आपको हम हर दिन बताते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन, और इसी वक्त पर ये आपके लिए होता है ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। इस साल का मदर्स डे कंपटीशन जो है बहुत इंटरेस्टिंग था। मम्स मूड स्विंग्स, जहां पर आपने बहुत ही क्रिएटिवली अपने मम का जो रिएक्शन है ये प्रेजेंट किया है।
12: अरे भाई, हमारी भी तो क्रिएटिविटी थी ना, इतने सारे सिचुएशन ऐसे सोचना आसान बात नहीं होती। But the good thing was ki we got people, you know, getting those reactions out there because that was the main point. Agar aap reaction na dete, to fir competition to wahi pe thap ho jata. Aur fir aap vijeta bhi to nahi bante na.
11: हाँ भाई, थैंक यू सो मच। जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कुछ कुछ टाइम तो ऐसा भी था कि इतने सारे कॉल्स, कि हम सारे कॉल्स आंसर भी नहीं कर पाए, सो थैंक यू। अब वो मोमेंट आ गया है जब एक के बाद एक मम्स मूड स्विंग्स जो है उसके विनर्स का जो अनाउंसमेंट है ये किया जाए। तो
12: किसने क्या जीता है, मतलब कितना जीता है?
11: हाँ, आप में से कितने लोग हैं और किसने क्या जीता है ये बताएंगे। तो मम्स मूड स्विंग्स में $100 कैश, $200 कैश और $300 कैश जो प्राइस है ये है। सो वेयर आर वी स्टार्टिंग फ्रॉम?
12: लेट्स स्टार्ट विद $100 फर्स्ट एंड लेट्स सी कि आज हमारे जो मम्स मूड स्विंग कंपटीशन है इसके लिए $100 कैश किसने जीता है। सो नंबर हमारे पास है और हमें पता है विजेता कौन है, बट वी आर जस्ट बिहेविंग लाइक हमको नहीं पता, बट जस्ट टू कीप दैट सरप्राइज एलिमेंट ना। एनीवे, सो कांग्रेचुलेशंस टू समवन जिनका डेडिकेशन यार सच में काम आया, बिकॉज नॉट इन जस्ट वन और टू, इन्होंने हर एक शो में कोशिश जरूर की, हर एक सिचुएशन में अपना जो मम्मी का रिएक्शन है ये जरूर शेयर किया। सो थैंक यू सो मच। 7214 आपके मोबाइल नंबर के लास्ट फोर डिजिट से आपने जीता है $100 कैश एंड आपका नाम है अंजू।
11: अंजू जी बहुत सारी बधाइयां, कांग्रेचुलेशंस आपको, एंड इट्स गुड टू नो कि अलग अलग शोज में आपने ट्राई आउट किया, जहां भी जब भी आपको मौका मिला कंपटीशन में आपने हिस्सा लिया, तो $100 कैश इस मदर्स डे के मौके पर आपको मिल रहा है। और अब बारी है पता करें $200 किसको मिल रहा है।
12: मजा नहीं आपका म्यूजिक
11: आज मदर्स डे कंपटीशन के ड्रो में। और मदर्स डे कॉम्पिटिशन मम्स मूड स्विंग्स $200 कैश जिनको मिल रहा है, आपके मोबाइल के लास्ट फोर डिजिट्स
12: 0546 आपके मोबाइल के लास्ट फोर डिजिट्स है। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सनब, आप हुई हैं विजेता सनब, $200 हुए आपके,
11: तो $300 अब अनाउंस हो चुके हैं। अंजू $100 कैश, सनब $200 कैश, और अब पता करें कि जो टॉप प्राइस है ऑफ $300 ये इस मदर्स डे के मौके पर आप में से किन को मिलने वाला है।
12: ऐसी फीलिंग आ रही है कि ऑस्कर मिलेगा किसी न किसी को।
11: आप बड़ी खुश लग रही है।
12: मुझे लग रहा है किसी न किसी को ऑस्कर मिल ही जाएगा आज हमारे जाने से पहले। बट या आई एम वेटिंग, आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी, रीजन बीइंग क्योंकि जब हम ऐसे कॉम्पिटिशन्स करते हैं तो उसके पीछे का एक कारण होता है, कारण ये कि आप हमारे साथ बने रहें और मज़ा उठाएं ऐसे सेलिब्रेशंस का। यू नो मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं हम, फादर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, वी सेलिब्रेट दिवाली, वी सेलिब्रेट होली, वी सेलिब्रेट ईद, देयर आर सो मेनी सेलिब्रेशंस वी डू ऑल द टाइम, रक्षाबंधन भी सेलिब्रेट करते हैं हम। और इन सेलिब्रेशंस के साथ जब आप हमारे साथ जुड़े होते हैं तो हमारे पास लिमिटेशंस बहुत होती है ना, वी फिजिकली कांट सेलिब्रेट दीज थिंग्स विद यू, तो इसी तरीके से तो मना सकते हैं आपके साथ। एंड व्हेन यू आर पार्ट ऑफ इट एंड यू व्हेन यू बेनिफिट आउट ऑफ इट, व्हेन यू विन समथिंग, वी फील बेटर, वी फील गुड अबाउट इट। सो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन सो फार टू अंजू एंड सनब, हमारे दो विजेता जिन्होंने $100 और $200 रेस्पेक्टिवली जीता है। एंड द फाइनल वन $300 कैश, 5678 आपके मोबाइल नंबर के लास्ट
11: कमाल के लास्ट फोर डिजिट्स हैं इनके।
12: हाँ एक लाइन में ना 5678
11: एकदम ऑर्डर में 5678।
12: मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ओमकार, आप हमारे विजेता हुए हैं जिन्होंने $300 कैश जो है ये जीता है मम्स मूड स्विंग्स कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेकर मदर्स डे के तहत। एंड एक और एक कमाल की बात ये है कि ये विजेता हमारे जो है इन्होंने वीकेंड जस्ट चिल में हिस्सा लिया था।
11: अच्छा, ऑन अ संडे,
12: ऑन अ संडे, या
11: सो चलो भाई मेक श्योर आप कॉम्पिटिशन जब हो रहे हो आपको ये नहीं देखना है कि कब हो रहा है या किस दिन हो रहा है। And maybe Omkar, Sunday is your lucky day.
12: Lucky day, हाँ, don't be selective with days and time. ना, जब जब मौका मिले तब तब पार्ट लो. You never know कौन सा दिन कौन सा टाइम आपके लिए लकी साबित हो. So once again, many many congratulations to all three of our winners, Omkar, Sanab and Anju. हमारे विजेता आप हुए हैं और आपके पैसे आपको आज तो नहीं मिलेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा प्रोसेसिंग में, बट मिल जरूर जाएंगे इतना वादा है आपसे। एंड डोंट फॉरगेट, अभी भी $200 कैश जीतने का मौका है क्योंकि हमारा जो मदर्स डे अल्टीमेट या फिर अल्टीमेट मदर्स डे वाउचर ये आपको क्रिएट करना है और उस ड्रो में भी शामिल होना है। इसका ड्रो वैसे आज ड्राइव शो में होगा और फेसबुक पर जाकर आपको अपना मदर्स डे वाउचर जो है ये पोस्ट करना है। जस्ट विजिट आवर फेसबुक पेज हम 104.2 FM विद द ब्लू टिक, आपको फीचर्ड फोल्डर में सेकंड पोस्ट दिखेगा क्रिएट द अल्टीमेट मदर्स डे वाउचर फॉर मम। आपको बस एक सिंपल सा वाउचर डिजाइन करना है, आप AI का यूज कर सकते हैं, आप यू नो वो वाउचर जो है, बाय द वे मैं ये शेयर करना चाहती हूँ, अंशर मेरे ख्याल से अंशर सू दैट्स द नेम, इन्होंने पूरा का पूरा वाउचर डिजाइन किया अपने हाथों से, लाइक लिटरली ड्रू एवरीथिंग, कलर्ड एवरीथिंग,
11: वाओ दैट्स अमेजिंग,
12: रोट एवरीथिंग ऑन इट विद हर विद द हैंड्स, लाइक इन्होंने AI का या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया, मैनुअल तरीके से इन्होंने इसे तैयार किया है। सो दैट्स लाइक एन एक्स्ट्रा एफर्ट एंड एक्स्ट्रा लव। और इन्होंने लिखा है टू द वुमन हु बिल्ट माई वर्ल्ड, अस्मा आई थिंक इनकी मम्मी का नाम है प्रोबेबली, एंड सच अ ब्यूटिफुल वाउचर इन्होंने डिजाइन किया है। If you haven't seen, go and check it out. Amit Sharma, इन्होंने अपनी बेटियों के बिहाफ, शनाया और अनाया इनके बिहाफ में जो वाउचर है ये सबमिट किया है। कमाल की बात ये है कि इनका एंट्री जो है एक घंटे पहले ही आया है और सनाया नाया ने इतने खूबसूरत कार्ड्स जो है ये बनाए हैं एंड वाउचर जो है ये भी तैयार किया है सेम वे ड्रॉ किया है कला किया है और हैंड रिटन नोट्स जो है ये लिखे हैं इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल सो सी यू कैन यूज व्हिचएवर मेथड वर्क्स आउट फॉर यू अगर आपको वाउचर डिजाइन करना है डिजिटली गो फॉर इट अगर मैनुअली तैयार करना है गो फॉर इट बट गेट इट डन बिकॉज वंस यू गेट इट डन एंड पोस्ट इट अप हमारे कॉम्पिटिशन के पोस्ट के कॉमेंट सेक्शन में तभी आपका नाम जो है ये ड्रॉ का हिस्सा बनेगा

0: आज की पहली बात कहते हैं कि अगर शब्दों का रेंज अच्छा हो तो लोगों का नेटवर्क कभी नहीं टूटता।
1: अरे वाह, क्या टेक्नोलॉजी भरा दो बातें था ये।
0: हाँ, लेकिन दूसरी बात का ख्याल रखें कि समाज एक ऐसा बाजार है, जहां सलाह मुफ्त में और सहयोग ब्याज पर मिलता है।
1: Very true. ये तो जब मुश्किल की घड़ी आती तो वैसे ही इंसान को पता चली जाता है। But keep this in mind. और चलिए इन्हीं बातों के साथ अब आपसे चाहेंगे इजाजत जाने की। अपना अपनों का ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे आपसे अब एक बार फिर ऑन मंडे ठीक सुबह 6 पर द ब्रेकफास्ट शो विद विजयन पूजा लेकर जुड़ेंगे तो आपके साथ बेशक। पर आप इस बात का ख्याल रखें कि आपका वीकेंड बढ़िया गुजरे, आप इंजॉय करें, सेफ रहें और मंडे को वापस से हमारे साथ जरूर जुड़े।

0: Eat better, live better.
1: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithiye, kyunki aa rahi hai
2: My Time with Kashika.
3: गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम, क्योंकि थोड़ा मौसम हवा वाला हो गया है इसलिए वार्म वेलकम. 8 मई का दिन है, फ्राइडे है और आज आपका बर्थडे एनिवर्सरी है, तो हैप्पी हैप्पी बर्थडे. वैसे आज का दिन खास तौर पे हम क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि फ्राइडे का दिन है और आपने अपना पूरा वीकेंड जो है प्लान कर रखा होगा. भाई इस वीकेंड में क्या आपने आज पता है ना आपको जावेद अली जो है अपना शो देने वाले करने वाले हैं विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में, तो $59 की टिकट्स हैं, बहुत कम रह गई हैं. जाइए जाके फटाफट इन्हें आप खरीद लीजिए StarAlliance.com के entertainment.com के जरिए. अच्छा ये तो सॉर्ट आउट कर ही लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी के इवेंट्स हैं आज जो आप मैं चलते बताती चली जाऊंगी आपको. हाँ डोंट फॉरगेट अनदर थिंग, क्योंकि आप रोवा के जरिए अगर सुन रहे हैं तो इससे कितने फ़ायदे हो सकते हैं, चाहे फ्लाई अवे फ्रेंजी हो या फिर आपके लिए चर्डल हो जिसके ज़रिए $100 आप जीत सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं ना. तो अच्छा लोरोवा की बात कर रहे हैं, चर्डल्स की बात कर रहे हैं, तो कोई भी की भी वर्ड सेइंग या फ्रेज अगर आपने क्रैक कर दिया, समझ लीजिए आपका नाम $100 कैश के लिए चला गया. ओके मदर्स डे के मौके पे हमारे पास कितनी एंट्रीज आई, लेकिन विनर्स कौन थे, अच्छा चलो थोड़ी देर बाद मैं आपको जरूर बताती हूँ. स्टे ट्यून्ड, कीप हमिंग ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. रोवा ऐप के जरिए सुन रहे हैं, एलेक्सा के जरिए सुन रहे हैं, गूगल के जरिए सुन रहे हैं, किसके जरिए सुन रहे हैं आप, 104.2 FM के जरिए सुन रहे हैं, तो भी अ वार्म वेलकम फ्रॉम मी काशिका. कशिश फूड्स की ओर से आपके लिए मुमकिन हो जाता है कशिश फूड्स, जिनका नाम घर घर में आप सुनते ही चले जाते हैं, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स हैं भी इतने रीजनेबली प्राइस्ड, अफोर्डेबल एंड ऑल फ्रेशली हाइजीनिकली पैक्ड इन न्यूजीलैंड.
0: बचाओ क्या,

0: मदर्स डे के मौके पे आप लोगों ने बहुत कुछ यू नो प्लान किया होगा अपनी मम्मी के लिए, भले ही शायद उन्हें कॉल करना हो, यहाँ हो तो उनके लिए, उनको स्पेशल डे बनाना उनके लिए। लेकिन एक ही चीज़ है, आप में से एक लिसनर हमारे जो है, उन्होंने एक बहुत प्यारी कविता मुझे भेजी थी और मैंने सोचा मैं इसे आज ज़रूर पढ़ूंगी। ऑफकोर्स विनर्स के नाम ज़रूर अनाउंस कर देती हूँ, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट शो में एज़ प्रॉमिस्ड हमने आपको बताया था कि हम ड्रॉ करने वाले हैं और इस ड्रॉ के ज़रिए हम बताने वाले थे कि विनर्स कौन है। सो अंजू, सनब एंड ओमकार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और बताएगी कि किस तरह से ये कैश प्राइज आप यहाँ से जीत सकते हैं, लेके जा सकते हैं, कह सकती हूँ। अच्छा, अब बात आ रही है अबाउट माँ के बारे में। तो माँ, तू एक पेड़ है, तेरी छाँव में मैं रहूँ उम्र भर, तेरी डाली से निकला हूँ मैं, तुझे से जिंदा हूँ मैं, कभी सूख जाऊँ पत्तों सा तो फिर टूट कर तेरी गोद में रहूँ, धूप हो बारिश हो तुझसे लिपट जाऊँ मैं, हवा जब मुझे उड़ा ले जाए तुझी से मैं चिपक जाऊँ मैं, तेरी जड़ में समा जाऊँ मैं, तुझसे शुरू हूँ तुझे पर खत्म हो जाऊँ मैं, तेरे आंचल सब फैला है विस्तार तेरा, मुझसे तू तुझसे है पूरा संसार मेरा। बहुत खूबसूरत, वेरी वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप में से किसी को भी कोई छोटा सा अगर यू नो कपलेट है, कुछ बात करनी है, तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। आई वुड लव टू टुडे सेलिब्रेट ऑल द मदर्स हु आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ। ऑल राइट, थोड़ी देर बाद आ रही है आपके लिए ऑफिस शाउट आउट। तो अगर आपके पास कोई भी ऑफिस से आप सुन रहे हैं, किसी का कुछ आपको स्पेशल डे करना है, बनाना है, डेडिकेशन देना है, तो डेफिनेटली आप मुझे 5599 पे टेक्स्ट कर सकते हैं, नहीं तो 0800 पे कॉल करें।
1: May month is NZ Music Month. ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, ये है इमोशन, पैशन और थोड़ा सा देसी स्वैग। Presenting Back Your Backyard Beats, जहां हर गली हर कॉर्नर से निकलता है एक नया सुपरस्टार। आज का लोकल आर्टिस्ट कल का ग्लोबल सेंसेशन, तो क्यों ना आज से ही उनका साथ दे। ट्यून इन करो और अपने Backyard Beats को दो फुल सपोर्ट। Back Your Backyard Beats, brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. And Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love.
2: एक सपना है, सपना कुछ अपना करने का, सपना एक अपने बिजनेस का।
3: हम है क्रू केयर, सिर्फ $15,000 onwards की इन्वेस्टमेंट में हम बनाएंगे आपके सपने को एक हकीकत।
4: Crew Care offers commercial cleaning franchise, which caters to after and before hours cleaning services for offices and schools. Crew Care also has tie-ups with many cleaning sites like offices, schools, gyms, medical centers, and hospitality sites. Finance options available for approved purchases. Call Crew Care on 0800 800 209.
5: In this final hour, when the lives and well-being of your fellow country folk hang in the balance, is it you here that rise?

0: सो ऑफिस शाउट आउट में अभी यूनिक ब्यूटी सलोन से आप सुहास मुझे सुन रही हैं, और इसी के साथ साथ नीलिमा वेंकट जी, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप एल्डर्स होम को लुक आफ्टर करती हैं, वहाँ के सीनियर्स के लिए बहुत सारी सेवा करती हैं, और आप इस समय मैनकाव जा रही हैं, तो आपके लिए भी ये गाना मैंने एक्चुअली डिसाइड किया है. बट बिग शाउट आउट टू ऑल ऑफ यू हार्ड वर्किंग पीपल.
1: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

मैंने कहा था ना आज एक खास चीज और हो रही है, जैसे कि मैंने कहा था कि जावेद अली का शो है आज, और इसके साथ साथ एक और खास चीज हो रही है, और वो है देवेंद्र नाथ एंड नितिन निलेश आज परफॉर्म करने वाले हैं भक्ति कीर्तन संध्या। मैंने कहा चैरिटेबल क्लब आपके लिए भक्ति सत्संग बॉयज के साथ मिलकर इसे लेकर आ रही है आज वैदिक सेंटर में शाम 7 बजे से। $20 की टिकट है, जाइए फटाफट ये टिकट्स जाकर खरीद लीजिए। इट विल बी अ मेमोरेबल नाइट।

0: माइग्रेंट रेजिडेंट्स जो है ना वो अभी से सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना शुरू कर चुके हैं. अब ये क्यों हुआ है? बिकॉज ये वेडनेसडे को जो न्यू सिटीजनशिप का टेस्ट है 2027 से वो लगता है वो भरना नहीं चाहते. लेट नेक्स्ट ईयर ये इनको क्विज किया जाएगा ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रिविलेजेस ऑफ बीइंग एन सिटीजन ऑफ न्यूजीलैंड. उसमें से कम 15 क्वेश्चन आपको आंसर करने पड़ेंगे आउट ऑफ 20 क्वेश्चन करेक्टली इन ऑर्डर टू पास फॉर द सिटीजनशिप. अब ये टॉपिक्स हो सकते हैं बिल्स ऑफ राइट एक्ट, क्रिमिनल ऑफेंसेस, वोटिंग राइट्स, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स या स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट. अब हुआ ये है कि एक पर्टिकुलर केस है जिनके बारे में अभी न्यूज़ में आया है. ये वेलिंगटन में रहते हैं, 14 साल से रह रहे हैं और जस्ट ही इज़ अ रेजिडेंट, परमानेंट रेजिडेंट. अब वो हेजिटेट कर रहे थे कि क्या वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करें या ना करें, तो क्योंकि ही वॉज अ चाइनीज बाय सिटीजनशिप. अब चाइना इज सम ऑफ दीज एशियन नेशंस जो डुअल सिटीजनशिप अलाउ या नेशनैलिटी अलाउ नहीं करते, तो काफ़ी टाइम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे. और जब उन्होंने देखा कि एक नई पॉलिसी सामने आ रही है तो इट्स लाइक ही फोर्स्ड के हिमसेल्फ के अच्छा चलो मैं अप्लाई कर ही देता हूँ. डू यू ऑल्सो गेट इन टू दिस के एक चीज़ है जो हमें एक्चुअली अगर हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, दिस आर कंट्री इज़न्ट इट, तो हम जब क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हमें यहाँ के बारे में पता होनी चाहिए बहुत सारी बातें. एक जागरूक हमें कहते हैं ना कि न्यूजीलैंडर होना चाहिए, तो वो हमें कई सवालों के जवाब पता होने चाहिए. बच्चे भी पूछते हैं, कोई भी सवाल जवाब होते तो वी शुड बी एबल टू आंसर ऑल दीज थिंग्स. तो आपका क्या कहना है? आपके पास अगर रेजिडेंटशिप हो गई है, रेजिडेंट हैं आप, फटाफट अप्लाई कर रहे हैं या आप 2027 तक का वेट करेंगे?
1: Bro, look at you. Blue light screen को इतना घूर रहा है जैसे वो तुझे प्रमोशन दे देगा. और ये कॉफी lukewarm, a taste बिल्कुल हार्टब्रेक जैसा. प्लीज सर, तो क्यूबिकल के लिए नहीं बनाए, तो बीच के लिए बनाए, तो लाइफ को एंजॉय करने के लिए बनाए.
2: Listen to Hum on Rover every weekday at 8 a.m., 11 a.m., 1 p.m. and 5 p.m. Hum denge ek special code word. You've got 60 minutes to enter it in the Rover app and go in the draw to win a trip to Fiji. So what are you waiting for? Download the Rover app now. Win a trip to Fiji. Only on Hum on Rover. T's and C's apply.
3: Fall in love with your home again with an ANZ Reno Loan. A home loan top-up of up to $50,000 at just 2.5% per annum, fixed for 3 years. Minimum 20% equity eligibility. Lending rules, terms and fees apply. Available for a limited time. ANZ, we do how.
4: The Hutch Wilco New Zealand Boat Show is back. See the latest boats and fishing gear. Be in to win a massive Surtees Yamaha Grand Prize. Auckland Showgrounds, May 14 to 17. Tickets at boatshow.co.nz.
5: Gift instant joy this Mother's Day with Instant Kiwi. Whether you've got flowers, chocolates, or a good book, Instant Kiwi is the perfect something extra to spoil her with. Get a $10 gift pack from your local Lotto NZ store. R18.

0: Get a $100 digital Visa card with AMI. Buy a new comprehensive car policy online before the end of September. Visit ami.co.nz. T's and C's apply. AMI. On your side.
1: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
2: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
1: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
3: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर Gold.
4: Capture the impossible with Spark and the new Samsung Galaxy S26 series with huge deals on now. Heading to Spark Arena? Put the latest nightography to the test and capture the best details of the night. Then with Photo Assist, easily say goodbye to the dancing photo bombers in the back. Buy from Spark for huge deals on the Galaxy S26 series now. T's and C's apply. Delivery times may vary.

0: with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
1: So Dream Diary में मेरे पास कल का टेक्स्ट आया हुआ था, तो मैंने सोचा चलो मैं पूछ ही लेती हूँ। उन्होंने कहा था इनको हमेशा सपना आता है कि यू नो ये भाग रहे हैं, और यू नो या तो इनके पीछे कोई भाग रहा है, ऐसा ही कुछ था। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको लगता है, पूरा उनको याद नहीं था एग्जैक्टली, थोड़ा धुंधला था, सो माई सजेशन वुड बी, कभी ऐसे ड्रीम्स आप देखते हैं और सुबह उठते हैं और आपको लगता है कि यू नो ये ड्रीम कहीं मैं भूल ना जाऊँ। मेरे साथ हो जाता है कि कई बार मैं कुछ ड्रीम्स को भूल जाती हूँ। सो वॉट आई डू इज आई राइट इट डाउन क्विकली, इंक्लूडिंग उसमें अगर कोई कलर है, कोई इमोशन है, जैसे ही आप सोकर उठते हैं। कोशिश कीजिए इसको ट्राई करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए, और फिर कुछ सिंबल्स जो होते हैं ना आपके करंट लाइफ के साथ, उनके साथ आप अपने इमोशंस को और एक्सपीरियंस को रिलेट कर पाते हैं, उस ड्रीम को रिलेट कर पाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो सीन आपको बार बार आने लगता है। ये जो है आपके लिए एक एनालिसिस, कभी कभी यू नो सही जाता है, कभी कभी कोई इंटरप्रिटेशन सही जाती है, और कभी कभी कोई मैसेज जो इंटरप्रेट करता है कि यू नो इट्स गॉट सम काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल गाइडेंस, किसी में होता है कोई साइकोलॉजी की तरह से अगर हम उसको देखते हैं। तो नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कोई किसी के पीछे भाग रहा है, या उनको लग रहा है कि वो भाग रहे हैं, उनके पीछे कोई पड़ा हुआ है, तो बेसिकली ये सिम्बलाइज करता है कि आप किसी चीज़ से डर रहे हैं और डर के भागने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई इमोशनल सिचुएशन है। तो ऐसा कई बार हो भी जाता है दैट आप उन चीज़ों से, उन हालातों से, उस सिचुएशन से यू नो डर जाते हैं, आप भागने की कोशिश करते हैं, अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, और फिर वो आपको सपने में इस रूप में आता है क्योंकि आपके माइंड में वो बातें चल रही होती हैं। मोस्टली कहा जाता है ना, जब आप रात को सो रहे होते हैं ना, तो फ़ोन मत देखिए, फ़ोन को आप कम से कम एक घंटा पहले छोड़ दें अगर, और उसके बाद आप यू नो सोने की तैयारी करें, तो प्रॉब्ली इट विल बी बेटर फॉर यू। दैट्स व्हाट आई कैन से।

मैं थ्रोबैक की तरफ तो पहुंच गई हूं, मगर आज मेरे पास सिक्स वर्ड स्टोरी में सुनील आपने टेक्स्ट किया है। मुझे लगता है कि मैं कशिश फूड्स को बोलूंगी कि भाई हमें कुछ हैम्पर्स दे दें ताकि हमारे सिक्स वर्ड स्टोरी में आप लोग पार्टिसिपेट भी कर सकें। अच्छा चलो, ये तो बात होगी जब मैं कशिश से बातें करूंगी। ओके, अभी के लिए मैं जो गाना आपके लिए लेकर आ रही हूँ ना, इस पर्टिकुलर मूवी के लिए सलमान खान जी को बुलाया गया, पूछा गया, और उनके फादर ने उनसे कहा नहीं आप ये फिल्म नहीं करो, ये ब्रिटेन नेगेटिव सा कैरेक्टर है, आप इसमें वो नहीं लगेगा। अरबाज़ खान से पूछा गया और उन्होंने कहा क्योंकि उन्होंने दरार में एक नेगेटिव कैरेक्टर का रोल अदा कर लिया था तो ही रियली डिडंट वांट टू गो फॉर इट। फिर अक्षय कुमार से भी पूछा गया कि क्या आप इस रोल को कर सकते हैं, उन्होंने कहा नहीं एक प्रोटैगनिस्ट का रोल है, किस तरह से मैं ये कर सकता हूँ। फिर अनिल कपूर ने भी इस प्रोजेक्ट को रिफ्यूज़ कर दिया। अल्टीमेटली दिस रीच्ड आउट टू नन अदर दैन द किंग खान, जिससे उनकी ज़िंदगी ही बदल गई थी। और जैसे ही इस पर्टिकुलर फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड मिला और उनको इतना रिकग्निशन मिला, तो वो ढूंढते ढूंढते डायरेक्टर के पास पहुंच गए कि वो डायरेक्टर कहाँ है, अब्बास बर्मा वाला एंड मस्तान बर्मा वाला, यानी अब्बास मस्तान के पास। मालूम पड़ा भिंडी बाज़ार में वो एक कमरे के अंदर 12 लोग फैमिली में रह रहे थे। वो वहाँ पहुँचे, उनके पैर छुए, और उसके बाद उन्होंने क्योंकि वो होली मंथ ऑफ रमादान था, उनके साथ सहरी भी उन्होंने की। और साथ साथ बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने उनको बहुत सारी चीज़ें जो थी उससे नवाजा, उनको बहुत सारी चीज़ों के साथ उनको हेल्प भी की थी शाहरुख खान ने। अब जब बात ही कर रहे हैं तो इस बाजीगर की, तो ये बाजीगर का गाना।

0: आजकल तो चल रहा है बहुत न्यूज में, आप ही तो नहीं।
1: Breakfast show with VJ and Pooja.
2: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
3: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब क्या मैसेज
4: कर रहा हूँ? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
3: मेरे को समझ में नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने
4: किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
1: The Breakfast Show with VJ and Pooja,
5: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels everyone, big or small. Bring home the fortune.
1: Weekdays 6 to 10 a.m.
6: Woolworths has savings in every aisle. Get Cadbury Roses, Milk Tray or Favourites 312 to 470 gram for $9.90 each. And Dove Body Wash 1 litre for $10.99 each. Woolworths Weekly Specials. Now that feels good. T's and C's apply.
7: Introducing Pizza Hut's new Tikka and Paneer range. Rich Tikka base, creamy paneer, bold flavour. Get the first taste from $10.99 pickup at Pizza Hut. Limited time only. T's and C's apply.
8: Trade Depot brings you MyDia, the world's number one air conditioning company. Introducing the MyDia Inverter Heat Pump. It looks elegant and sophisticated, features innovative smart technology, and superb energy efficiency. Shop now for your MyDia Inverter Heat Pump, including installation anywhere in New Zealand, from only $1,299 with Trade Depot. T's and C's apply.
9: Manukau Charitable Club in association with Bhakti Satsang Boys ला रहे हैं Bhakti Kirtan Santhya Friday 8 मई को रात 7 बजे से Vedic Center 32 Glasgow F Papatoetoe में, जिसमें कलाकार रहेंगे Fiji के Nitin Nilesh Prakash और New Zealand के Davin Nath। दो पहुंचे हुए कलाकारों को एक साथ देखने का अनोखा मौका। टिकट्स सिर्फ $20 हैं। तैयार हो जाइए Bhakti Kirtan Santhya के लिए Friday 8 मई को रात 7 बजे से Vedic Center Papatoetoe में।
10: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
11: हाँ। अच्छा
10: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
11: मिसेस सिंह
12: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
13: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
1: हम टाइम चेक, हम न्यूज, ब्रॉट टू यू बाय लॉजिक फाइनेंस लिमिटेड, चेंजिंग लाइव्स विद लॉजिक।
14: Morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 11. An impending storm is set to hammer the South Island. Many areas are under orange warnings with gales of up to 140k per hour and hundreds of mils of rain predicted. Met Service meteorologist Lewis Ferris says it's likely further warnings will be issued.
15: We might see a few more issued by the severe weather team as this front and low pressure system wraps over the country tonight.
14: Taranaki and Wellington also in the firing line. Two ISIS brides who returned to Australia from Syria have been charged with crimes against humanity. A third has been detained on terrorism-related offences. The women had returned from Syria, where they're accused of keeping a Yazidi woman as a slave in their home. US forces have carried out strikes on Iran. They've targeted military facilities in retaliation to attacks on three US warships through the Strait of Hormuz. And world-famous conservationist Sir David Attenborough is completely overwhelmed by messages for his 100th birthday. He's been a staple in nature documentaries for decades and turns 100 tomorrow. He's been flooded with birthday wishes from right around the globe.
16: From preschool groups to care home residents and countless individuals and families of all ages. I would like to thank you all most sincerely.
14: In sport, Kiwi golfer Dame Lydia Ko is tied for second place after her opening round at the LPGA Tour event in New Jersey in the US. Her 5-under-par round of 67 included an eagle, 5 birdies and 2 bogeys. Ko one shot behind the clubhouse leader. And Dame Lisa Carrington won't compete at the Canoe Sprint World Cup in Hungary, which gets underway tonight. She's been replaced in the K4 boat by Amy Fisher.
1: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
17: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं, एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस। सूचित किया जाता है कि ताबो फिजी के स्वर्गीय मोनसामी के पुत्र ऑकलैंड के शारदा मनी के पति रोनिल कृष्ण पुजारी और मेलबर्न की शालिनी कृष्णा के पिता मानुरीवा के श्रीकृष्ण उर्फ हैरी की मृत्यु हो गई है। अंतिम संस्कार आज दोपहर 1 बजे मैनिकाओ मेमोरियल गार्डन में किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 2102926578 पर आप संपर्क करें। सूचना दोबारा सुने, ताबो फिजी के स्वर्गीय मोनसामी के पुत्र ऑकलैंड की शारदा मनी के पति रोनिल कृष्ण पुजारी और मेलबर्न के शालिनी कृष्णा के पिता मानुरीवा के श्री कृष्ण उर्फ हैरी की मृत्यु हो गई है। अंतिम संस्कार आज दोपहर 1 बजे मैनिकाओ मेमोरियल गार्डन्स में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि देने के लिए 2102926578 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सनीवेल के स्नेहलता सोमेश्वर तथा स्वर्गीय डॉक्टर नीरज सोमेश्वर के पुत्र ऋषि सोमेश्वर यादव की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार कल सुबह 11 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रीमेशंस में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए 2108171497 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचना दोबारा सुने, सनीवेल के स्नेहलता सोमेश्वर तथा स्वर्गीय डॉक्टर नीरज सोमेश्वर के पुत्र ऋषि सोमेश्वर यादव की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार कल सुबह 11 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रीमेशंस में किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 02108171497 पर आप संपर्क कर सकते हैं। फिजी के भूतपूर्व निवासी स्वर्गीय गोपाल की पत्नी ऑकलैंड के मास्टर अशोक विनेश कुमार शैलेशनी देवी अंजिला देवी तथा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया की विजयंती देवी की मां ग्लेंडीन ऑकलैंड के गंगा माता की मृत्यु हो गई है। अंतिम संस्कार रविवार के दिन 10 मई को सुबह दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा। जानकारी श्रद्धांजलि के लिए आप अशोक से संपर्क करें 02117944459 पर। सूचना दोबारा सुने, बाफीजी के भूतपूर्व निवासी गोपाल की पत्नी ऑकलैंड के मास्टर अशोक विनेश कुमार सैलिशनी देवी अंजिला देवी तथा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया की विजयंती देवी की मां ग्लेंडीन ऑकलैंड की गंगा माता की मृत्यु हो गई है। अंतिम संस्कार रविवार के दिन दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 02117954459 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचित किया जाता है कि लंबासा फिजी के स्वर्गीय देवी प्रसाद की पत्नी ऑकलैंड के डाउनर वर्क्स के कर्मचारी हेमंत कुमार और रवीन कुमार उर्फ बॉबी सिडनी ऑस्ट्रेलिया के नरेन कुमार और कुसुम देवी तथा फिजी के अनीता देवी और सविता देवी की माँ लंबासा फिजी के भूतपूर्व निवासी की चित्रावती की मृत्यु हो गई है। अंतिम संस्कार फिजी में बाद में किया जाएगा। सूचना दोबारा सुने, लंबासा फिजी के स्वर्गीय देवी प्रसाद की पत्नी ऑकलैंड के डाउनर्स वर्कर्स के कर्मचारी हेमंत कुमार और रवीन कुमार उर्फ बॉबी सिडनी के नरेन कुमार और कुसुम देवी तथा फिजी के अनीता देवी और सविता देवी की माँ लंबासा की भूतपूर्व निवासी ऑकलैंड की चित्रावती की मृत्यु हो गई है। अंतिम संस्कार की सूचना अंतिम संस्कार बाद में फिजी में किया जाएगा।
18: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
1: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर
19: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा।
1: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
17: The highs of 21, overnight temperature of 15. आज का फॉरकास्ट बताया जा रहा है, ये क्लाउड्स धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे, हैवी रेनफॉल होने की संभावना है और हवा भी तेज चल सकती है। फील्स लाइक 19 डिग्रीज, 5:30 बजे सनसेट बताया गया है।
1: My time with Kashika brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
20: Mid-morning Mazza.
21: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithe, kyunki aa rahi hai.
20: My time with Kashika.
17: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल। स्टूडियो की घड़ी में 6:03 हो चुके हैं। आपका साथ निभा रही हूँ मैं काशिका। 12 बजे तक मेरा आपका साथ रहेगा, फिर केतन यहाँ आपका साथ निभाने के लिए आ जाएंगे। वैसे इस घंटे में मेरे पास बहुत सारी जिम्मेवारी है। पहली बात, मुझे आपको कोड देना है, ठीक है। इस कोड को जब मैं आपको दे दूंगी तो आप रूबा ऐप के जरिए जाके फ्लाई वे फ्रेंजी में भाग ले सकती हैं। और हमारे बैक योर बैक यार्ड बीच में हम आज एक और सिंगर को आपसे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, वो भी बात करेंगे। मुनव्वर फारूकी हमारे सुपर सिटी में आ रहे हैं, उनके लिए कुछ डिटेल्स है वो लेकर आई हूँ। राहत फतेह अली खान जी भी हमारे सुपर सिटी में आ रहे हैं, उनसे रिलेटिव भी मेरे पास कुछ बात करने के लिए है। और आज तो ऑफ कोर्स जावेद अली परफॉर्म करने वाले हैं द विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर। आई थिंक लास्ट फ्यू टिकट्स आर लेफ्ट एंड डेफिनेटली जाइए फटाफट जाके टिकट्स आप खरीद सकते हैं। ओके नाउ कशिश फोर्स की ओर से जब मैं कहती हूँ मैं आपके लिए अब ढेर सारी चीज़ें लेके आती हूँ, बातें लेकर आती हूँ, मेरी सिक्स वर्ड स्टोरी जो है। सुनील जी आपने आज सुबह सुबह ही मैसेज कर दिया, मैंने कहा चलो ये लाइन में लगा ही देती हूँ, तो ठीक है मेरी सिक्स वर्ड की स्टोरी भी तैयार है। और रेस्क्यू मी रिसाइकल मी में भी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अभी के लिए जहाँ कहीं से भी आप सुन रहे हैं इतना ही कहना चाहती हूँ, हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स में आपका साथ निभा रही हूँ मैं काशिका। एंड मदर्स डे के मौके पे मैंने पिछले घंटे पर अनाउंस किया था विनर्स के नाम, सो ये फाइनल टाइम है जब मैं आप लोगों को शाउट आउट दे रही हूँ बताने के लिए कि अपना पर्सनलाइज वाउचर जो है आप तैयार कर लीजिए फॉर मम। आज ये ड्रॉ शाम को ड्राइव शो में होने वाला है, हमारे फेसबुक के पेज पे पहुंच जाए, अपनी फैमिली मेंबर्स को टैग करें, डिजाइन करें इस वाउचर को एंड गेट इनटू द ड्रॉ। दिस इज माय फाइनल कॉल टू यू हियर।

0: इट्स जस्ट सो ब्यूटिफुल दैट कभी किस तरह से आप उसे चीज़ को लेकर आते हैं. लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, हम जब आर्टिस्ट को आपके लिए लेकर आते हैं जो हमारे लोकल आर्टिस्ट हैं तो वो बहुत ही अच्छा लगता है. डीजे चिल, वेल इन्होंने कमाल का चिलिंग सा एक अब ज़बरदस्त वो बनाया. लेकिन मैं चाहती हूँ कि इनको अगर आपने पसंद किया, इनके इस ब्यूटीफुल से मिक्स को पसंद किया है, तो आपको क्या करना है, इनके लिए वोट करना है. 5599 पे MM लिखना है, डीजे चिल लिखना है. और बताइए अगर आप इसे रिपीट सुनना चाहते हैं या आप इसको स्किप करना चाहते हैं. तो ये पूरे महीने भर में हम आर्टिस्ट को प्ले करने वाले हैं आपके लिए, जो लोकली यहाँ इनको एक प्लेटफॉर्म देने वाले हैं. जो टॉप 3 विनर्स होंगे, दे आर्टिस्ट विल क्लाइम अप टू दी टॉप 3 कैटेगरीज. लाइक कमेंट कीजिए, विनर्स जो है इनका इंगेजमेंट जो है पता चलेगा, इनके रेडियो के वोट्स, सोशल लव जो इनको मिल रहा है उस पर डिपेंड करेगा. सो अगर आप भी अगर गाना गाते हैं या आप भी कोई ओरिजिनल ट्रैक है आपके पास, अपना बायो और अपना बेस्ट ट्रैक हमें buzz@hamfm.com पे आप ईमेल कर सकते हैं.
1: New Zealand's meanest word game is here. Think you're a Kiwi word wizard? Put it to the test with Chortle and be in to win $100 a day. Each day, guess a Kiwi word, saying or phrase. Every game equals one entry. And if you answer fast and avoid the hints, you'll score a bonus entry. With $7,000 up for grabs, the more days you play, the better your odds. So what are you waiting for? Jump in and have a crack. Only on Rover.
2: एक सपना है, सपना कुछ अपना करने का, सपना एक अपने बिजनेस का.
3: हम है क्रू केयर. सिर्फ $15,000 ऑनवर्ड्स की इन्वेस्टमेंट में हम बनाएंगे आपके सपने को एक हकीकत.
4: Crew Care offers commercial cleaning franchise, which caters to after and before hours cleaning services for offices and schools. Crew Care also has tie-ups with many cleaning sites like offices, schools, gyms, medical centres and hospitality sites. Finance options available for approved purchases. Call Crew Care on 0800 800 209.
5: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
6: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
5: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today.
6: Available at selected branches. T's and C's apply.
7: For the mum, stepmum, grandma or auntie who says, don't get me anything, then totally expect something, give a Prezi card. Use it anywhere Visa's accepted and add it to Apple Pay or Google Pay. Easy win. PreziCard.co.nz.
8: Welcome to Kebab's Kitchen. I am Chef Alex and this is my guest, Sarah.
9: क्या बनाते हैं कबाब को स्पेशल, शेफ एलेक्स?
8: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स. हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन.
9: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग. स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो जूसी.
8: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट. अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स.
10: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव.
11: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Fly to Fiji from just 300

0: for $9 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations like Samoa from $305 one way, Tonga from $319, Tokyo from $635, Singapore from $699, and Hong Kong from $669 one way. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
1: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Six word story
2: में आज सुनील जी आपने बाजी मार दी है. 5-4-5-3 आपका कहना है. Rise early, work hard, stay humble. I love it. Rise early, work hard, stay humble. All right, I am just loving this 6 word story. Thank you whoever suggested this. क्योंकि भी थोड़ा हम लोगों को अलग हट के सोचना होता है, करना होता है, और उस समय हम चाहते हैं आपका इंगेजमेंट बढ़े, आप लोग हमसे बातचीत करें. लेकिन एक इंगेजमेंट हमारी रुक रही है. अब आप सोच रहे होंगे क्यों, अब ये क्या इंगेजमेंट है. दुबई बेस्ड एमिरेट्स एयरलाइंस जो है, इन्होंने अपनी 96% जो है ग्लोबल नेटवर्क स्टार्ट कर दिया है, एक्सेप्ट ऑकलैंड सर्विसेज. अब ये एक बहुत रिड्यूस लेवल पर चला रहे हैं, क्योंकि एक जो डिसरप्शन ऑफ कोर्स यूएई में हुआ है अंडर द अटैक बाय द इरानियन ड्रोन्स एंड मिसाइल्स, उससे क्या हुआ है कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद हो गया था, राइट. 75% जो है एयरलाइन के ट्रैवलिंग के लिए वॉर के बाद, इट्स ओनली रनिंग ऑन 75% राइट नाउ. तो ये जो इनकी दुबई ऑकलैंड की डायरेक्ट फ्लाइट थी, सर्विस जो थी, ये ऑपरेट करती थी 4 days अ वीक. अब ये दुबई सिडनी क्राइस्ट चर्च सर्विस ये ऑपरेट रोज़ करती है. लेकिन इन्होंने अभी ये बताया है कि इट वुड बी एक्चुअली नॉट वर्किंग आउट सो मच. तो जिन लोगों ने, जो कस्टमर्स ने बुक किया है फ्रॉम April 2nd, दे विल बी अलाउड 1 free date change अक्रॉस ऑल कैबिन क्लासेस. और उनको ये बताया जा रहा है उनका फेयर 24 hours तक एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट रखा भी जाएगा. वॉर के पहले दुबई एयरपोर्ट वॉज द सेकेंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, जहाँ 2025 में इन्होंने कैरी किया था 95.2 मिलियन पैसेंजर्स. हाउएवर ये ट्रैफिक काफ़ी हद तक कम हो गया. अपने फर्स्ट क्वार्टर में इन्होंने देखा ओनली 18.6 मिलियन और उसके बाद नाउ इज डाउन बाय 21%. वी विल वेट एंड सी कि ये फ्लाइट दोबारा कब रिज्यूम होती है.
1: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: time with Kashika.
1: Wow.
2: How?
1: Adbhut.
3: तो भाई अद्भुत बात यह है कि एक खूबसूरत सी जगह है, द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ फिजी इज कॉल्ड विटिलेवू. अब कोड वर्ड इज समवेयर हियर जहां लेवू आपको बताना है. लेवू यानी कि मैंने जो आपको अभी भी एक्सप्लेन किया, द लार्जेस्ट आइलैंड द बिगेस्ट, और लेवू का मतलब है बड़ा, बहुत, मतलब बड़ा साइज. तो लेवू इज द कोड वर्ड जहां पे आप फ्लाई अवे फ्रेंजी में भाग ले सकते हैं. ये कोड LEVU ये आपको ऐड करना है और फिर आपको डेफिनेटली आपका नाम ड्रॉ में चला जाएगा. इन ऑर्डर टू गेट अ रिटर्न टिकट टू फिजी एंड बैक अ टर्म्स एंड कंडीशन ज़रूर समझ लीजिएगा. वैसे विटिलेवू जो है मेजॉरिटी ऑफ द फिजी की जो पॉपुलेशन है वो रखते हैं जहाँ पे अर्बन लाइफ, ट्रांसपोर्टेशन, कॉमर्स सब बहुत बढ़िया होता है. टॉप एक्टिविटीज़ में वहाँ पर जो जगह है वहाँ पे गार्डन ऑफ द स्लीपिंग जायंट होता है, स्नॉकल डाइव भी होता है, और एक मड बाथ है सम्बेटो में जहाँ आप जा सकते हैं, और शायद एक वहाँ पे कोलोल सोवा फॉरेस्ट पार्क भी है. मैं वहाँ नहीं गई, बाकी इन जगहों पे मैं डेफिनेटली जा चुकी हूँ. तो यस, विटिलेवू इज़ अ प्लेस, और विटी मतलब शायद आइलैंड ही होता होगा. लेकिन अब ये आइलैंड में एक बहुत बड़ा आइलैंड है, और विटी का हमें जो एक्चुअली देखा जाए कोड इज़ नॉट विटिलेवू, द कोड इज़ लेवू, LEVU. लेवू का मतलब फिजी में होता है बिग. हाँ, और विटी आई थिंक इज फिजी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. करेक्ट मी अगर मैंने कहीं पे भी गलत प्रोनाउंस किया है या गलत मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, तो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करके उसमें ऐड किया. तो अब आपका टाइम शुरू हो जाता है फॉर द नेक्स्ट 1 आवर. ये कोड लेवू मैंने आपको दे दिया है, रोवा में आप एंटर कीजिए इन ऑर्डर टू विन द एटिकेट टू फिजी.

0: better, live better.
1: सो जब बात आती है कि कुछ दिग्गज ऐसे कलाकार होते हैं जो आने वाले होते हैं, ऐसे में राहत फतेह अली खान जी पधार रहे हैं हमारी सुपर सिटी में और ये 25 जुलाई के दिन ट्रस्ट अरीना में परफॉर्म करने वाले हैं. इन्हें लेकर आ रहे हैं नन अदर देन जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव एंड ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस, शहजादा प्रोडक्शंस, और ये एक डबल पास जीतने का सुनहरा मौका है. मैं गाने का आपको पार्ट बजाने वाली हूँ, आपको उसे कंप्लीट करना है, और जब आप कंप्लीट कर ले, पहचान गए कि गाना कौन सा है, कंप्लीट कर दीजिए. आपको RFK लिखना है, RFK लिखना है 5599 पे, गाना कंप्लीट करके वो लाइन कंप्लीट कर दीजिएगा. और इसके साथ साथ आपको अपना नाम लिखना है, आपका नाम ड्रॉ में चला जाता है एंड डेफिनेटली देर इज़ अ चांस दैट आप ये जीत सकें. लेकिन अगर आपको टिकट खरीदनी है तो आप dryticketsco.nz के ज़रिए जाके ये टिकट भी खरीद सकते हैं. तो मेरे आज की लिस्ट का गाना है ये,

ऑल राइट, अब आपने पहचान ही लिया कि मैं कौन सा गाना जो है ये बजा रही हूँ। एक बार और आपके लिए ध्यान से 5599 पे आरएफ के लिखना है, ओके? गाना कंप्लीट और अपना नाम। ऑल राइट, अब आपको रब से मिलाना है। 5599 पे आपको टेक्स्ट करना है, ठीक है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।

0: दें चैट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी कशिका ऑन 021-769-755 मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: With local grants, anytime you play a Lotto NZ game, it's a win for your local community. Because 100% of profits go back into wins across Aotearoa. Cheers, Lotto NZ players.
2: At Woolworths, whether it's a Sunday roast or midweek wraps, we've got chicken for every occasion. Now you can grab our fresh chicken thighs, bone-in, skin-on, on special for just $5.90 a kg. That's the fresh food feeling at Woolworths. T's and C's apply.
3: Pacific Electrical Services presents Javed Ali, live in Auckland performing his blockbuster hits and a special tribute to the legendary Muhammad Rafi Saab in Rafi Aur Main, promoted by Star Alliance Entertainment at Victory Convention Center, 8 May, 7 p.m. onwards. Proudly supported by key contractors. For tickets, visit staralliancentertainment.com or call Edwin on 0211-382184.
4: Ek din tera ho jaunga.
5: Get it sorted with Cheap As Deals. Grab a hot deal with over 30% off selected Nuvo hot water bottles, now just $9. And 10 centimetre Floraviva flower plants, now only $2.50 each. Limited stock, Cheap As Deals. In Sunday at Mitre 10.
6: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा? स्विच टू लीप मोटर C10 और B10 अल्ट्रा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सिर्फ 44,990 प्लस ऑन रोड से शुरू। विजिट आर्मस्ट्रॉन्ग्स लीप मोटर ग्रीन लेन और बॉटनी। T's and C's apply.

रेस्क्यू मी, रिसाइकल मी में आप क्या कर सकते हैं? बहुत सिंपल है. कल आई थिंक आई वाज टॉकिंग टू समबडी, उन्होंने कहा ये अच्छा आइडिया है जो आप आइडियाज़ बताते हैं किस तरह से हम चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं. तो कभी कभी जो डेनिम होती है ना, आप डेनिम को आप क्या कर सकते हैं, कुछ लोग आई हैव सीन उसके पाउचेस या पर्सेस बना लेते हैं काट के उसको. अब बच्चों के साथ आप बैठ के जब ये एक्टिविटी करेंगे ना, तो डेफिनेटली इट विल बी वर्किंग आउट वेल. एंड सम पीपल, आई मीन शी सजेस्टेड दैट शी इज मेड कोस्टर्स आउट ऑफ इट. अब वो कोस्टर्स किस तरह बनाए वो मुझे नहीं पता, बट ओल्ड जीन्स से उन्होंने कोस्टर्स बनाए थे. अब क्या पता उसमें उन्होंने क्या क्या किया ऐड, लेकिन शी सेड शी इज गोइंग टू सेंड अ पिक्चर अक्रॉस टू मी. है तो बात क्रिएटिविटी की, है तो बात बहुत अच्छी, लेकिन देखिए आप खुद को देखिए, कमाल. वैसे लेवू नहीं लिख के भेजना था 5599 पे, आपको रोवा ऐप पे जाना था, लेवू लिखना है वहाँ पर, और उसके बाद आपका नाम ड्रॉ में चला जाता है. अभी के लिए मैं मितेश आपका नाम ड्रॉ में ऐड करना चाहती हूँ फॉर राहत फ़तेह अली खान जी के डबल टिकट को जीतने के लिए. 2080 आपने जो कीवर्ड है आरएफके नहीं लिखा. शोहेब आपका नाम मैंने ड्रॉ में ऐड कर लिया. आशीष वेलिंगटन से फ्लाई करके आओगे क्या? अच्छा आ जाओ. और साथ साथ स्वप्निल आपका भी आंसर सही है, एंड निशा आपका आंसर भी बिल्कुल सही है. तो चलो आप सबके नाम मैंने ड्रॉ में ऐड कर लिए हैं. दिल्स-

तो भाई इससे पहले कि मैं पटपट पट करके यहाँ से निकल जाऊँ, आपको मैं बताना चाहती हूँ अगले वीक भी मैंने आपको सॉर्ट आउट कर दिया है। तो 16 तारीख को होने वाला है 147 गिरमिट रिमेम्बरेंस डे, और आप मलायोला कम्युनिटी सेंटर में पहुँच सकते हैं 4:30 से 8:30, ये फ्री इवेंट है, और आप फिजी गिरमिट फाउंडेशन NZ के पेज पर भी जा सकते हैं। इसके साथ साथ श्री वेंकटेश्वर देवस्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट मंदिर के सपोर्ट के लिए, टेम्पल के प्रोजेक्ट के लिए आप सबको निमंत्रण देना चाहते हैं। फ्री एंट्री, फ्री खाना पीना, और साथ साथ आप वहाँ पे एंटरटेनमेंट वगैरह होगा, खाने पीने के स्टॉल के अलावा वहाँ पे शॉपिंग करने के चांसेस है ना, फेस पेंटिंग, बाउंसी क्लास कासल, बच्चों के लिए भी बहुत सारा एंटरटेनमेंट होगा। सो 378 अरारीमू रोड रामारामा आप पहुंच भी सकते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और ख़ास हो रही है, और वो है वाइब मिक्स इवेंट के ज़रिए ग्रैंड मस्ती नाइट, ये होने वाला है SN जय भैया जी, राउडी नमन के साथ मिलकर, जहां डांसिंग लेजेंड्स जो 17 साल के बाद न्यूजीलैंड पधार रहे हैं ये भी होंगे, मसाला स्किट एक्सेट्रा है, सिंगर मनी डिसूजा जो है ये बोथ मेल फीमेल की आवाज़ में गाते हैं, वाओ क्या बात है, ये भी होने वाले हैं। बहुत सारे गिवअवेज हैं, DJ हैं, युवा डांस होगा, मोंटू मोनिका भी होने वाली हैं, और हमारे अपने केतन भी वहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। तो जाइए फटाफट जाके ये टिकट्स आप खरीद सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ साथ कीजिए स्वीकार का शिक्का का नमस्कार। आज का दिन कहलाता है फ्राइडे वार, यानी कि शुक्रवार। मेरी मुलाकात आपके साथ होने वाली है वो दिन कहलाएगा सोमवार। वीकेंड पर अपना ख्याल रखिएगा, थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम जरूर निकालेगा। एंड विशाल क्या बात है, आपने तो पूरे गाना लिख डाला, मजा आ गया। अच्छा चलो अभी के लिए चलती हूँ, मंडे की सुबह 10 बजे मिलती हूँ। एंड डू लुक आफ्टर योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज काशिका साइनिंग ऑफ फ्रॉम द हम स्टूडियोज।

0: driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहाँ पे किसने बनाया? वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत तो
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Bedzora's Manuko and Pukekohe, with Sleepy Head Queen Mattress Range starting from 449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
5: क्यों, क्या हुआ?
4: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
0: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424।
6: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
0: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
6: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-4626-26 today.
0: Available at selected branches. T's and C's apply.
7: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
8: Busy subah ho ya shaam ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.